FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र. आज गुरुवार है. शक संवत 1948 के अश्विन मास के 23वीं तिथि तदनुसार 15 अक्टूबर सन 2026. इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं और हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं.

हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर एक सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री लेह स्थित कोशुक बकोला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निमो पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दाह हनु खालसी ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के अंतर्गत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की।

0: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे, टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते SIOFA में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि समिति किसानों के प्रतिनिधियों, चीनी मिल संघों, राज्य सरकारों और अन्य विशेषज्ञों सहित सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श करेगी। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ₹1,370 की सहायता राशि देने की घोषणा की। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5,00,000 से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए ₹70 करोड़ से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरुआत की। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित ना करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अभी भी निलंबित है, वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी हैं। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज के 248 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर 123 रन ही बना सका। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने मात्र 50 गेंदों में 102 रन बनाए, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल में भारत चौथे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

chân tận. शास्त्रों में कहा गया है, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती, विद्या के बिना मनुष्य धन नहीं कमा सकता, धन के बिना व्यक्ति के मित्र नहीं होते और मित्र के बिना जीवन में सुख नहीं मिल सकता। ये था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6:30 हुए हैं। झरोखा में हमारे आज के कार्यक्रमों का लेखा जोखा

अब से कुछ ही देर में 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। 6:45 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम संगीत सरिता। इसमें इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला राग समय चक्र। सात बजे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम, 7:30 हम हेरा ही प्यार के। इस कार्यक्रम में फिल्मों से लिए गए युगल गाने। समाचार प्रभात हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 8:00 8:15 पर प्रोग्राम आप सुनेंगे त्रिवेणी, और यही प्रोग्राम एक बार फिर से दोबारा से आप सुनेंगे दोपहर 2:00। चित्रलोक प्रोग्राम आप सुनेंगे 8:30 पर सुबह। सुबह 9:30 आज का अखबार प्रोग्राम, अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स। दस बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार लिखे जाएंगे। 10:05 पर सफर

0: झरोखा में ये तो था लेखा जोखा हमारे आज के कार्यक्रमों का, कुछ हमारे और कुछ विविध भारती मुंबई से जो हम आपके लिए रिले करते हैं। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अगला प्रोग्राम कोची पलों में।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 342। आज आप सुनेंगे लंका कांड।

युद्ध में जांबवान के पद प्रहार से मूर्छित होकर रावण धरती पर आ गिरता है। रात हो गई देख सारथी उसे रथ में डालकर युद्ध स्थल से दूर ले जाकर उसकी मूर्छा दूर करने के उपाय करता है। भयभीत राक्षस वहां आतंकित खड़े हैं। त्रिजटा अशोक वाटिका में सीता को युद्ध की गति का विवरण सुनाती है। वाणों से कटने के बाद भी रावण के सिर और भुजाएं बढ़ने की बात सुनकर सीता उदास हो जाती हैं और माता के समान स्नेह देने वाली त्रिजटा से पूछती हैं कि किस प्रकार रावण का वध हो पाएगा। त्रिजटा कहती हैं कि हृदय में बाण लगने से वो मर सकता है, किंतु श्री रघुनाथ उसके हृदय को लक्ष्य इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वहां उसने तुम्हारी छवि बिठा रखी है, लेकिन बार बार सिर कटने से उसका ध्यान तुम्हारी ओर से हट जाए।

आएगा और तब श्री राम वहां वाण मारेंगे। उधर मूर्छा टूटने पर रावण युद्ध भूमि से अपने को दूर पाकर सारथी पर क्रुद्ध होकर उसे धिक्कारने लगता है।

0: राग समय चक्र। नमस्कार श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला राग समय चक्र। आमंत्रित कलाकार जानी माने शास्त्रीय गायिका विदुषी मंजरी आलेगांवकर आपसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने। लीजिए आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं विदुषी मंजरी आलेगांवकर जी।
2: नमस्ते।
1: मंजरी जी, कल की कड़ी में जयपुर घराने की विशेषता को उजागर करने वाली बंदिश हमने सुनी जो सावनी राग में थी
2: जी।
1: आज समय चक्र में पहला प्रहर है दिन का, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है
2: जी।
1: उस समय कौन कौन से राग गाए जाते हैं और इसमें किस राग की विशेष रूप से चर्चा हमें करनी है, उस राग के चलन के बारे में, आरोह अवरोह के बारे में?
2: बिल्कुल बिल्कुल, बताती हूँ। यह राग समय चक्र हम सुबह के 4 बजे से यानी ब्राह्म मुहूर्त से शुरू करते हैं
1: जी।
2: सुबह

0: चार बजे से सात बजे तक गाए बजाए जाने वाले रागों को प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग कहते हैं। वह सुबह शुरू होने का पहला जो समय होता है उसको संधि प्रकाश कहते हैं। इसमें शुद्ध मध्यम सागमा यह शुद्ध मध्यम है
1: जी।
0: यह शुद्ध मध्यम का ज्यादा महत्व है और इस समय भैरव, कालिंगड़ा, जोगिया, ललित, रामकली, विभास और भैरव के सब प्रकार गाए जाते हैं। राग भैरव एक प्रमुख रागांग राग है, यानी भैरव के अनेक प्रकार होते हैं
1: जी।
0: नट भैरव है, प्रभात भैरव है, बैरागी भैरव है, शिवमत भैरव, बहुत सारे प्रकार है, इसीलिए उसको रागांग राग कहा है। थाट पद्धति के अनुसार यानी 10 थाट होते हैं
1: जी।
0: व्यंकट मखी जी ने 72 थाट मेल करता है वो, और भातखंडे जी ने 10 थाट
1: हैं।
0: वो 10 थाट के पद्धति के अनुसार यह भैरव थाट का राग है। ये थाट भी भैरव है और राग भी भैरव है, इसीलिए उसको आश्रय राग भी कहते हैं। और राग रागिनी पद्धति के अनुसार 6 रागों में से एक पुरुष राग है। इसमें ऋषभ धैवत कोमल लगते हैं। सा रे रे रे ये कोमल ऋषभ है। हाँ, सा रे रे ये शुद्ध ऋषभ होता है। और ये ऋषभ और धैवत वादी संवादी है और आंदोलित आंदोलित यानी

0: यानी दादा ये आंदोलन है। मैंने ऐसा नहीं बताया सारे दा ये खड़ा सुर है।
1: अच्छा
0: दादा इसमें गोलाई है इसीलिए उसको आंदोलित सुर कहते हैं। ये ऋषभ और धैवत वादी संवादी है और दोनों आंदोलित है। ये उत्तरांग प्रधान राग है यानी पंचम के

ये पंचम के बाद आने वाले सुर है वो उत्तरांग होते हैं। राग का उत्तरांग पूर्वांग सारे गामा ये पूर्वांग है, पारानी सा ये उत्तरांग है। ये उत्तरांग राग है, उत्तरांग प्रधान है, लेकिन इस राग पूर्वांग उत्तरांग यानी तीनों सप्तकों में इसका विस्तार मंद्र मध्य और तार तीनों सप्तकों में किया जाता है। और भैरव राग के लिए तानसेन जी कहते हैं, कहे मिया तानसेन सुनो शाह अकबर सब राग नमे प्रथम राग भैरव। उसको प्रथम बताया है, पहला राग बताया है। भैरव का स्वरूप वैराग्य भक्ति एवं शांत रसों को व्यक्त करने में समर्थ जरूर है। इस भैरव राग में मैं एक पारंपरिक संदेश सुनाने वाली हूँ जो तीन ताल में निबद्ध है। भैरव राग का आरोह अवरोह है

0: क्या बात है मंजरी जी, ये बंदिश जो आपने सुनाई, इसको सुनकर के याद आ रहा है राग परछाई के बारे में चर्चा हुई
1: थी। जी बिल्कुल,
0: इसी राग की परछाई कलिंगड़ा में देखने को मिलती है। इसके बारे में आप क्या बताएंगी?
1: कलिंगड़ा भैरव के सम प्राकृतिक राग है
0: जी।
1: यह भक्ति रस प्रधान भैरव थाट का सुपरिचित राग है। भैरव के ही सुर इसमें लगते हैं, लेकिन उसका चलन अलग होता है। वो सीधा सरल है और भैरव जैसा वो गंभीर नहीं, थोड़ा चंचल है। तो हम कालिंगड़ा को भैरव राग की परछाई कहेंगे। यहाँ रागों के बारे में परछाई शब्द का प्रयोग किया है। हर राग का अपना एक ढंग होता है, स्वरूप होता है
0: जी।
1: और जैसे जैसे राग गाया जाता है तो आपके दिल में उसकी तस्वीर उभर आती है। उस राग की छवि हमारे मन में बन जाती है और यही छवि जब अलग रूप से किसी दूसरे राग में भी नजर आने लगती है तो हम उसे उस राग की परछाई कह सकते हैं। तो इसमें कालिंगड़ा राग भैरव राग की परछाई है
0: जी। जी,
1: तो कालिंगड़ा राग का चलन कैसा है देखिए, वो ही सुर है भैरव के सब।
0: हाँ,
1: लेकिन चलन अलग है। सारे गा रे सा, वो आंदोलित नहीं है ऋषभ धवत, बिल्कुल आंदोलित नहीं।

0: कलिंग देश में गाया जाने वाला भैरव यानी कलिंगड़ा, और आज भी लोक समाज में प्रातःकालीन भजन गायन में इस राग का अधिकतर प्रयोग होता है।
1: क्या बात मंजरी जी, आपने कहा कि भैरव के सुरों को सुनकर के जो तस्वीर मन में उभरती है, ऐसा ही हुआ है कि एक गाना दिल में उभर रहा है और सुनाई दे रहा है। ये दिव्य स्वर लता जी का है,
0: हाँ?
1: और खूबसूरत रचना शैलेंद्र जी की, संगीतकार सलील चौधरी। जागते रहो फिल्म का ये गीत राग भैरव पर आधारित है, अपने श्रोताओं को सुनाते हैं।
0: जरूर जरूर।

0: राग समय चक्र। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जानी माने शास्त्रीय गायिका विदुषी मंजरी आलेगांवकर आपसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। तबले पर इनका साथ दिया बाल कृष्ण अय्यर ने और हारमोनियम पर शुभांगी भावसार ने। तकनीकी सहयोग गणेश शिंदे का।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनेगा थोड़ी ही देर में।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे,
5: SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
6: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है,
7: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है,
8: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
9: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
10: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आवारा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे हसरत जयपुरी, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं
1: और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।

छोटी सी ये जिंदगानी रे चार दिन की जवानी तेरी आह फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में सुन रहे थे शब्दकार शैलेंद्र थे संगीतकार थे शंकर जयकिशन और इस गाने के पहले आपने सुना था दाग फिल्म का गाना तलत महमूद की आवाज थी बोल शैलेंद्र ने लिखे थे और शंकर जयकिशन ने धुन बनाई थी आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चलिए इस भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं

0: Biles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Biles से मुक्ति पाएं।
1: फिर से उपस्थित हैं हम भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में।

0: पतिता फिल्म का गीत आप भी अभी आपने सुना। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में इसे गाया तलत महमूद ने, बोल शैलेंद्र ने लिखे थे।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
2: पेंटर बाबू
1: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम।

0: गदर एक प्रेम कथा,
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान, बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से

0: बजते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

लपक झपक तू वार बदर मरण मरत तू कार बदर लपक झपक लपक झपक लपक झपक तू आगे।

0: लबक झपक तू लबक झपक तू आर भगर।
1: मन्ना डे की आवाज में बूट पॉलिश फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। शब्दकार थे शैलेंद्र, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में हलाकू फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: हलाकु फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरी गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए सविता सिंह को नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे उसे कोमल सौम्य और उज्जवल बनाए वीको टर्मरिक क्रीम मैंने चुनी खूबसूरती
1: मैं तो टीका ला लिया हुण तू भी ला ले
2: नहीं यार मैं नहीं लाना
1: ए तो फिर यार मार वाली गल होगी
2: नशा करन ली मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनु एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097 पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी
4: पीसीपीएनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में फांसी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इसे संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: गीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।

किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित की आवाजों में फारूक कैसर का लिखा हुआ ये गीत अभी आपने सुना, बप्पी लहरी का संगीत था, फिल्म का नाम लहू के दो रंग।

0: मैं राजी हूँ गुजरिया, मैं राजी हूँ गुजरिया।
1: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार आरटी बर्मन थे, फिल्म का नाम हीरालाल पन्नालाल। हमें राही प्यार के ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS Care App। सोना खरीदने से पहले BIS Care App पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: भाई हर दिन 6-7 करोड़ व्हीकल्स पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल भरवाते हैं। देश में लगभग 20 करोड़ टू व्हीलर्स और 3 करोड़ कार्स पिछले 2.5 साल से E20 पर चल रहे हैं।
4: सब तो बढ़िया चल रहे हैं।
3: वही तो, अगर E20 से वाकई कोई वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम होती तो अब तक सामने आती, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। इसलिए रूमर्स पर नहीं, फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए।
5: भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

0: जानी दुश्मन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल की, वर्मा मलिक के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
2: पेंटर बाबू
1: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
3: दिल तो पागल है,
1: दुश्मन
4: चिट्ठी न कोई संदेह,
1: गदर एक प्रेम कथा,
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
1: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
6: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
1: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। 20 सितंबर से हर रविवार

0: बजते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे वहां रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना

0: पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता बारीकियां रागों की श्रृंगार सुरों का समय बीता दौर बदले कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: बनफुल फिल्म का गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत की धुन बनाई। अब आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। समाचार प्रभात के लिए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मंत्रिमंडल ने 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी। सरकार ने गन्ना किसानों के मुद्दों की जांच और उचित उपाय सुझाने के लिए समिति गठित की। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश की संभावना। और वेस्टइंडीज ने चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हराया, श्रृंखला 2-2 से बराबर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। वे इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
3: प्रधानमंत्री लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नई यात्रा टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। लेह के निम्मू को हिमाचल प्रदेश के दारचा से सुदूर जांस्कर घाटी के माध्यम से जोड़ने वाली यह सड़क लद्दाख के लिए एक वैकल्पिक संपर्क गलियारा प्रदान करती है, जिससे श्रीनगर लेह और मनाली लेह मार्गों पर आवागमन और आसान हो जाएगा। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालसी टर्मिनेशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेल कर्मियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस PLB को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सरकार ने इसके लिए 2009 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है। पात्र कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए अधिकतम 17,951 रुपए का बोनस दिया जाएगा।
4: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ

0: कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
1: इसमें रेलवे लाइन रखरखाव कर्मचारी, लोको पायलट गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, पॉइंट्समैन और मंत्रालय के कर्मचारी सहित ग्रुप सी के रेलकर्मी शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भी 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है।
0: दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटका और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: समिति गन्ने के किसानों के लिए लाभकारी मूल्य में वृद्धि की मांग की समीक्षा करेगी, जिसमें खेती की लागत और अन्य प्रासंगिक विषय शामिल होंगे। यह चीनी उत्पादन लागत, बाजार में मिलने वाले दाम और चीनी मिलों की वित्तीय क्षमता के संदर्भ में चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में संशोधन की मांग की भी समीक्षा करेगी। जांच के अन्य प्रमुख बिंदुओं में शुगर रिकवरी की टेस्टिंग और रिपोर्टिंग के लिए मौजूदा तंत्र और चीनी मिलों में गन्ने का वजन करने के मौजूदा तरीके भी शामिल होंगे। समिति मशीन से काटे गए गन्ने के वजन में से कटौती से संबंधित मौजूदा तरीकों की भी जांच करेगी और कटाई से होने वाले वास्तविक नुकसान यदि कोई हो तो उसका आकलन करेगी। यह किसानों के देय गन्ने के मूल्य पर वर्तमान तरीकों के वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन करेगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में सहायता मिलेगी। ये समझौता समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने में भी सहायक होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा के पुन्नमी घाट पर राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय स्तर का ये मेला पहली बार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5,00,000 से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरुआत की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 18 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री सिंधिया विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हमारी इस विशेष श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे इस संकल्प को रियल एस्टेट विनियम

0: सूचना विकास अधिनियम जैसी संस्थाओं के माध्यम से साकार किया गया है, जो रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों के लिए काम कर रही है।
1: वर्ष 2016 में संसद ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पारित किया। इसके तहत राज्य रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज की स्थापना की गई। रेरा लागू होने के बाद से किसी भी फ्लैट के बेचने से पहले प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना जरूरी है। इसके तहत डेवलपर्स और खरीदारों के बीच के विवाद प्राधिकरण के पास जाते हैं और तय समय सीमा के भीतर सुने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेरा के माध्यम से ग्राहक और डेवलपर्स के बीच का भरोसा बढ़ा है।
2: इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद। इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है। हमने शहरों में अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया।
1: गौतम बुद्ध नगर निवासी अनिल तिवारी ने बताया कि रेरा के आने से डेवलपर्स और उपभोक्ताओं के बीच आपसी समझ बढ़ी है। उन्होंने कहा कि रेरा के कारण बिल्डर समय से प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और समय पर लोगों को कब्जा मिलना शुरू हो गया है।
3: डेवलपर और क्लाइंट के बीच में पारदर्शिता होती है। जो पैसे हम लगाते हैं डेवलपर के साथ वो हमारा सुरक्षित पाया जाता है और हमें कोई भी आपत्ति यदि रियल एस्टेट के माध्यम से होती है तो हम किसी और के पास न जाके हम सीधा रेरा के पास अपनी शिकायत लेके जाते हैं और पूरी तरह से रेरा हमें संतुष्ट करता है।
1: रेरा ने डेवलपर्स और क्लाइंट के बीच के संबंधों को बेहतर बनाया है और खरीदारों के अधिकारों को वैधानिक रूप दिया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: देश भर में आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण विभाग इस अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना है। पुदुचेरी का लीसे फ्रांशे इंटरनेशनल डी पॉन्डिचेरी आज 200 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। ये स्कूल अन्य देशों में अभी भी संचालित सबसे पुराने फ्रेंच स्कूलों में से एक है। एक रिपोर्ट।
4: इस आयोजन में 400 से अधिक पूर्व छात्र हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें कई फ्रांस से आए हैं। आज शाम होने वाले मुख्य समारोह में 1000 से अधिक मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, फ्रांसीसी शिक्षा एजेंसी के महानिदेशक अलेक्जेंडर मोरोइस, पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री एन रंगसामी भी शामिल होंगे। इस स्कूल की स्थापना ऐसे दौर में हुई थी जब उपनिवेशिक समाज में नस्ल और जाति के आधार पर भेदभाव होता था। बाद में प्रवेश के अवसर बढ़ाए गए और पाठ्यक्रम में तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली जैसी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: और अब कुछ और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी फरहत, शुरुआत करते हैं रियाद स्थित भारतीय दूतावास के परामर्श से। दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अब भी निलंबित है। वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी है। भारतीय विमानन कंपनियों ने इस महीने की 17 तारीख तक सऊदी अरब को आने जाने वाली उड़ानें निलंबित की हैं। उधर हुरमुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय सिंगापुर के दो मालवाहक जहाजों जीएफएस प्राइड और जीएफएस गिसेले पर अज्ञात मिसाइल हमलों से हमला किए जाने की खबर भी है। फिलहाल दोनों जहाजों के सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने पनडुब्बियों से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण भी किया है। हालांकि दक्षिण कोरिया की सेना ने परीक्षणों पर अभी तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। और कोलंबिया ने कल यरूशलम में अपने दूतावास का उद्घाटन किया। इसके साथ ही कोलंबिया के नए राष्ट्रपति अबिलार्डो डे ला एस्प्रियेला ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल कर लिए हैं। तो फरहत, ये थी अब तक की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें।
0: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए।
6: एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार शीर्ष पांच देशों में भारत की उपस्थिति विभिन्न खेल विधाओं में देश की बढ़ती सफलता को दर्शाती है। इन खेलों में भारत का रिकर्व तीरंदाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन, पुरुष और महिला हॉकी में स्वर्ण पदक और सॉफ्ट टेनिस और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पहली बार पदक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इनमें महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक, 28 वर्षों के अंतराल के बाद एशियाई खेलों की भारत

0: बैडमिंटन स्पर्धा में रजत पदक और ग्रीको रोमन कुश्ती में रजत पदक भी शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब बात खेलों की। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। दोनों टीमें श्रृंखला में 2-2 की बराबरी पर हैं। अंतिम मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

पंजाब, दिल्ली, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दिल्ली से पहले रेलवे कर्मचारियों को तोहफा देने का समाचार कई अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका लिखता है रेलवे कर्मियों को 78 दिन का बोनस, दिव्यांगों को जन्म से मिलेगी पेंशन। अमेरिका में वर्क परमिट खत्म तो 540 दिन का एक्सटेंशन नहीं, नवभारत टाइम्स सहित कई अखबारों की सुर्खी है। छठ पर बिहार जाने वालों की राह आसान करेगी 3 विशेष ट्रेनें, अमर उजाला की खबर है। दैनिक भास्कर ने श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजिला दर्रे की तस्वीर दी है।
2: धन्यवाद वैष्णवी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
5: आइए सुने त्रिवेणी।

आज की त्रिवेणी में सेहत की बातें। आज की भागम भाग वाली आधुनिक जीवन शैली में सेहत एक जरूरी मुद्दा बन गया है। दरअसल हमारे जीवन शैली में आगे निकलने की प्रतियोगिता बढ़ी है, तनाव बढ़ा है, जिसका सबसे खराब असर हमारी सेहत पर पड़ता है। लेकिन अब लोग अपनी सेहत को लेकर पहले से ज्यादा सचेत रहने लगे हैं, इसलिए अक्सर लोगों को पार्कों में घूमते, टहलते, दौड़ते और व्यायाम करते देखा जा सकता है। तो चलिए हम भी चलें।

0: फिट बने रह सकते हैं। यदि हम सुबह जल्दी उठें, ताजी हवा में टहलें और कुछ देर सूरज की किरणों के सामने बैठे रहें, साइकिलिंग करें, दौड़ लगाएं, नृत्य करें, सीढ़ियां चढ़ें और जिन बातों से स्ट्रेस होता है उनसे दूर रहें। इस तरह अपने भीतर की खुशी को अभिव्यक्त करते हुए हमारी जीवन की गाड़ी चल पड़ेगी।
1: मन्नू भाई।

सेहत का ध्यान रखना एक चुनौती जरूर है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि किया ना जा सके। कुछ छोटी छोटी बातों पर यदि ख्याल रखें तो हम हमेशा

वो बोली नाम से है काम क्या आई थी वो धमकी।

0: एक ट्रक आ रहा,
1: एक रोड मत बोल,
0: आ नहीं जा रहा,
1: देखो तुम्हारे लाल लाल सिग्नल,
0: सिग्नल को तोड़ दो, बाद गाड़ी सिंबल

0: आज हम न चाहकर भी कई प्रकार के मशीनों से घिरे हुए हैं। चाहकर भी हम मेहनत नहीं कर पाते, लेकिन स्वयं को यदि फिट रखना है तो व्यायाम के अलावा भोजन, स्वच्छता और विश्राम पर ध्यान देना होगा। रोज हमें उचित समय पर भोजन और 6 से 8 घंटे की नींद के लिए समय निकालना ही होगा।
1: एक दो चा चा चा, ऐसे बहुत अच्छा।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के CP ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
2: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स समाधान दीदी।
3: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224।
4: अरे मीहा, तू इतनी रिलैक्स लग रही है आजकल, क्या सीक्रेट है यार?
5: सीक्रेट नहीं, स्मार्ट मूव है। मैंने लिया है LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
4: ओ रियली, क्या स्पेशल है इसमें?
5: देख, छोटी बचत से बड़ी सेविंग होती है और इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसमें गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है 3 अट्रैक्टिव ऑप्शंस के साथ, और तो और ऑटो कवर भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये प्लान केवल महिलाओं के लिए है, एक्सक्लूसिव।
4: वाह, मुझे भी लेना है यार LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
5: तो अभी विजिट करें LIC.in या अपनी नजदीकी LIC शाखा में संपर्क करें। LIC, हर पल आपके साथ।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
3: जब सीलन से छुटकारा पाना हो और घर ऑफिस को सजाना हो तो आज ही आइए अरुणा प्लाई।
4: WPC, PVC, वॉल पैनल, सीलिंग, एक्शन जैसा वुडन फ्लोरिंग, HDH, MR बोर्ड, सनमाइका और प्लाईवुड के लिए अरोड़ा प्लाई वर्ल्ड एट SCO 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।

0: मधुश्री अंचल सेठी चिन्मयी और वैशाली की आवाजों में रांझणा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल के बोल थे, एआर रहमान की तर्ज थी।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य।

0: भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: बॉर्डर टू फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं विशाल मिश्रा, तुलसी कुमार की आवाजें हैं। मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा और विशाल मिश्रा का संगीत।

बॉर्डर टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की आवाजों में मनोज मुंतशिर का गीत था, विशाल मिश्रा का संगीत था।

0: धुरंधर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में एक लेते हैं बहुत छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
3: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
2: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।

0: लापता लेडीज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। श्रेया घोषाल की आवाज थी, स्वानंद किरकिरे के बोल थे, राम संपत का संगीत था।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू, वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
1: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
1: गदर एक प्रेम कथा।
4: मैं निकला

0: मुस्कान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम

रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज 15 अक्टूबर है। आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती है। उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। अब्दुल कलाम की जयंती को विश्व छात्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वे अपनी सादगी, ज्ञान और देश प्रेम के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें बच्चों और युवाओं से विशेष लगाव रहा। उनका मानना था, सपने वो नहीं जो सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। यानी सपने वो हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हम दिन रात मेहनत करने को तैयार रहें। हमें हमेशा उन्हें पूरा करने की मन से प्रेरित करे। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आइए उनकी जयंती पर उनके आदर्शों, उनके विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लें। अब चित्रलोक कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं आपको ये गीत। ये गुलाल फिल्म का गीत है। पीयूष मिश्रा ने इसे लिखा है। गीतकार और संगीतकार हैं पीयूष मिश्रा।

है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज चंद की घड़ी की तुंग हार दो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज चंद की घड़ी की तुंग हार दो आन आन शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो प्रचंड बोल

सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

माया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल

0: जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो।
1: आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड।

0: कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। आइए इस कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद फिर से हाजिर होंगे।
1: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
2: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
1: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
2: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
3: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
4: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
5: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
4: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
5: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनु HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
6: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
7: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

0: बम भोले भोले बम भोले भोले बम भोले।
1: हनुमान अंश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाज थी साधु एस तिवारी की, गीतकार और संगीतकार साधु एस तिवारी थे। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज हिंदी साहित्य के छायावादी युग के चार स्तंभों में से एक है महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आज उनकी पुण्यतिथि है, हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। महाप्राण निराला को हिंदी कविता में मुक्त छंद का जनक माना जाता है। उनका पूरा जीवन और साहित्य अदम्य साहस, विशाल हृदय और संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने जीवन में कभी हार नहीं मानी, इन्हें महाप्राण इसीलिए कहते हैं। उनकी कालजी रचना राम की शक्ति पूजा में जब रावण से युद्ध करते समय एक दिन ऐसा आया जब विजय प्राप्त करने में थोड़ी कठिनाई होने लगी, तब राम ने शक्ति की देवी जगदम्बा मां दुर्गा की आराधना करने का संकल्प लिया। विजय की कामना से 108 नील कमल अर्पित करने का संकल्प लिया था, लेकिन 108 में जब अंतिम कमल अर्पित करने का समय आया तो एक कमल रिक्त पाया। आदिशक्ति ने राम की परीक्षा के लिए उसे उठा लिया, तब राम बड़े व्याकुल हो गए कि एक कमल के बिना 108 की संख्या पूरी नहीं हो पाएगी। तभी श्री राम को अपनी माता का वो संबोधन याद आया कि माता कौशल्या उन्हें राजीव नयन कमल नयन कहती थी। तब महाप्राण निराला लिखते हैं राम की शक्ति पूजा के, ये कविता का ये अंश है। राम में जागी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन, यह है उपाय।

कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन राम में जागी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन यह है उपाय कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन दो नील कमल है शेष अभी यह पुरश्चरण पूरा करता हूँ देकर मातह एक नयन तब श्री राम अपनी आंख निकालकर शक्ति को अर्पित करने को उद्यत हुए तभी आदि शक्ति प्रकट हुई और राम का हाथ थाम लिया साधु साधु साधक धीर धर्म घन धन्य राम कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम

अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाजों में तमाशा फिल्म का गीत अभी आपने सुना है, शाद का मिलके बोल थे, ए आर रहमान की तर्ज आपने सुनी। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अब चित्रलोक कार्यक्रम में एक और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हम आपको सुनवाएंगे गाने और कुछ बातें आपसे होंगी।

0: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: मैं ता टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
3: नहीं यार, मैं नहीं लौना।
2: ऐ ता फिर यार मार वाली गल होगी।
3: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
4: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।

वो सरोज स्मृति के रूप में हिंदी साहित्य का अनमोल धरोहर बन गया। यूं तो अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषाओं में शोक गीतों की परंपरा रही है, किंतु सरोज स्मृति जैसी अभिव्यक्ति हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि पूरे विश्व साहित्य में दुर्लभ है। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति से उद्धृत ये पंक्तियां आप सुनिए। धन्य मैं पिता निरर्थक था, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने एक पिता की अत्यंत मार्मिक पीड़ा को दर्शाया है, जहां वो अपनी पुत्री के इलाज और परवरिश के लिए खुद को असहाय और विवश पाता है। और अब सुनते हैं चित्रलोक कार्यक्रम में एक और गाना।

0: का सफर शुरू हुआ बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार

दोस्तों आज है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल विमेन। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मुख्य रूप से कृषि खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास में ग्रामीण महिलाओं के अद्वितीय योगदान को सम्मान देने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मनाया जाता है। ग्रामीण महिला हमारे समाज और देश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। इसके बावजूद भी कई जगह उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते। सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई गई हैं महिलाओं के अदृश्य श्रम को प्रोत्साहन देने के लिए। ग्रामीण महिलाएं इस ओर जानकारी लें और उसका लाभ उठाएं और सुनते हैं।

सुपर फास्ट बड़ी चोरी से पर जात बड़ी बाधा इसने जूते का जो फीता फिर गीता बनी चीता इससे पहले के पपीता गिरे झाड़ से ये धाड़ से पछाड़ गई जो भी था उखाड़ना उखाड़ गई जितने टाइम में तू देख पाए पल के झपक कर लपक कर निकल जाएगी राइफल की बुलेट को भी टक्कर दे जाएगी तने चारों खाने चित कर देगी तने चारों खाने चित कर देगी।

दंगल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे रफ्तार और साथियों की आवाजों में। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और प्रीतम का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार, आप स्वस्थ रहिए, सकुशल रहिए।

0: आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी

0: भी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 9:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम आज का अखबार।
0: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
3: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
4: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
3: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
4: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
5: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
0: आज का अखबार।
2: नमस्ते साथियों, गुड मॉर्निंग। आज का अखबार प्रोग्राम में आपके साथ है आपका साथी अनिल पुंज। अब से लेकर 10 बजे तक इस प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे। अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स प्ले करेंगे इस प्रोग्राम में। तो आज का अखबार में अगर बात करें तो अखबारों के पहले पन्ने पर नवरात्रों के बारे में और ख़ास विशेष दिन के बारे में बात होती है। जैसे नवरात्रों के पावन दिनों माँ दुर्गा के 9 रूपों में आज आराधना हो रही है पंचम माता स्कंद माता की। मान्यता है कि भगवान जी बाल रूप में इनकी गोद में विराजते हैं, इसीलिए इनका नाम स्कंद माता है। इनका भक्त उपासक अलौकिक तेज और कांति से संपन्न हो जाता है। मां की कृपा सब पर बनी रहे।
6: जयकारे वाले।

है पंचम माता सकंद माता की। तो मौसम की बात करें तो शहर के मौसम की बात ही कुछ निराली है भाई। आजकल देखते ही देखते बदल गया ट्राई सिटी का मौसम। रात को घास पर ओस की बूंदें आजकल आपको महसूस होती हैं। जरा से शहर से बाहर निकलो तो हल्की धुंध, सुबह शाम ठंड की हल्की हल्की सिरहन महसूस होती है। आगमन है और आहट सर्दी की कि तैयार हो, मैं आ रही हूं। और आज सुबह सवेरे की बात करें तो 4 बजे के करीब बारिश हुई, कहीं हल्की कहीं अच्छी। ये बारिश बस सर्द हवाओं को ले आई है। पंजाब हरियाणा में आज बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट भी मौसम विभाग ने बताया है, यानी अब हमें सर्दी के लिए तैयार रहना है। नवरात्रों के इस मौसम में त्योहारों का दौर भी शुरू हो गया है और इसी में गरबा का भी अपना महत्व है। गरबा केवल सामूहिक नाच गान नहीं है, बल्कि इसका बहुत गहरा धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। गरबा जीवन का सृजन है, दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। गरबा का जो गोल घेरा होता है वो ब्रह्मांड की गति, जीवन का निरंतर चक्र दर्शाता है। सामुदायिक एकता, सद्भाव, गरबा परंपरा लोगों को आपस में जोड़ती है। एक ऐसी ही खबर है दोस्तों गरबा से जुड़ी हुई, गुजरात के सूरत की। वहां की एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर कल्पना सवाणी। बहुत छोटी सी खबर है आज के अखबार में, लेकिन इसका जिक्र करना जरूरी है कि गरबा की इस मस्ती में, धूम में, भक्तिमय वातावरण में गुजरात के सूरत में गरबा खेल रही महिला डॉक्टर कल्पना सवानी को अस्पताल से एक इमरजेंसी कॉल आती है। 55 साल के मरीज की हालत गंभीर बताई जाती है। डॉक्टर ने बिना देर किए गरबा ड्रेस में ही रैपिडो को बुक किया और रात 2 बजे वराछा स्थित माते अस्पताल पहुंच गई। लाइफ सपोर्ट दिया जिससे मरीज की जान बच गई। तो हमने कहा ना कि ये गरबा जो है ये सद्भाव की एक परंपरा है, लोगों को आपस में जोड़ती है। और ये जो डॉक्टर हैं गरबा करते हुए भी अपनी जिम्मेवारी को, अपनी ड्यूटी को नहीं भूली और तुरंत वहां अस्पताल पहुंची और डॉक्टर को लाइफ सपोर्ट देने के बाद उसकी जान बचा ली। तो ये गुजरात की डॉक्टर हैं, सूरत की महिला डॉक्टर कल्पना सवाणी की। इन्हें हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, मंगल कामनाएं देते हैं और इनके अच्छे

वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये प्रोग्राम चल रहा है।

0: और कसौली ट्रांसमीटर से आप ये हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और इसके साथ साथ प्रसार भारती की ऐप न्यूज़ ऑन ए आर और लाइव स्ट्रीमिंग पर भी ये कार्यक्रम साथ साथ उपलब्ध है। मौसम की हम बात कर रहे थे कि मौसम देखते ही देखते बदल रहा है और बदले भी क्यों ना, बदलने का वक्त शुरू हो चुका है। इसी के साथ बारिश भी हो रही है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर भी शुरू हो गया है। श्रीनगर समेत मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। कश्मीर 11,650 फीट ऊंचे जौजिला दर्रे पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। कश्मीर को ये लद्दाख से जोड़ता है यह दर्रा, इसे बर्फीले तूफानों का दर्रा भी कहा जाता है। कल सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से यहां बर्फबारी शुरू हो गई। इस तरह से दक्षिण कश्मीर में भी बर्फबारी है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, राजदान टॉप और गुरेज के तो लैल में भी बर्फबारी हुई है। आज की अखबार में बड़ी शानदार तस्वीर है जोजिला दर्रे की और जो पूरी तरह से सफेद चादर ओढ़े हुए है। आज के अखबार में ये खबर है। अब यहां लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद रीजनल हेडलाइंस। ब्रेक में जानेंगे कि इस प्रोग्राम के प्रायोजक क्या कहते हैं।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
4: क्षेत्रीय खबरें लेके मैं परवाज हाजिर हूँ। आइए पहले बात करते हैं पंजाब की। सीबीआई पंजाब सरकार खंगालेगी 15 विभागों की फाइलें, मूल रिकॉर्ड तलब। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने प्रशासनिक सचिवों को दस्तावेज देने के दिए निर्देश। झोटा की हत्या ने लाया पंजाब में उबाल, भीड़ ने फूंकी आरोपी की दुकान और मकान पर चला बुलडोजर। सीएम के इस्तीफे और डीजीपी की बर्खास्तगी पर अड़ी संघर्ष कमेटी, आज पंजाब बंद का ऐलान। बिलों से 429 करोड़ की GST चोरी और 62 फर्जी फॉर्मों का नेटवर्क पकड़ा। पंजाब में 25 फॉर्म सक्रिय, ट्रांसपोर्टर और सहयोगियों पर FIR दर्ज। पंजाब में 154 नए आम आदमी क्लिनिक जनता को समर्पित। पंजाब में एक साल में 8.95 लाख कफ सिरप जब्त। SIR में गड़बड़ी है तो साबित करे कांग्रेस, ऐसा कहा भाजपा ने। और पंजाब में निष्पक्ष तरीके से पूरी हुई प्रक्रिया। दिग्गजों के हलके में जितने वोट जुड़े उससे ज्यादा कटे, बनेगी नई समीकरण।

आइए अब पंजाब के बाद हरियाणा की ओर चलते हैं। शाहबाद में 36 बिरादरी की के लिए जीटी रोड पर तैयार होगा जाट भवन। शिक्षा मंत्री महिपाल टांडा ने बनने वाले जाट भवन का किया शिलान्यास। हरियाणा में बनेंगे 200 किलो भार उठाने व 250 किलोमीटर तक उड़ने वाले हेलीकॉप्टर ड्रोन। रूसी कंपनियों के साथ दो संयुक्त उद्योगों पर चर्चा। आज इंडिया स्वीडन इनोवेशन डे में सीएम नायब सैनी रखेंगे पक्ष। पंचायत की जमीन पर बनेंगे पशु हॉस्टल। दिन में खुले घूमेंगे गौवंश। पंचकुला आयुर्वेदा संस्थान में 14 विषयों में पीजी। 70 सीटों पर दाखिले की अनुमति।

आइए अब चलते हैं हिमाचल की ओर। कुंजुम पास के नीचे टनल बनाएगी सुखू सरकार। स्पीति में खर्च होंगे 500 करोड़। काजा में कॉलेज और हेलीपोर्ट की संभावनाएं।

0: मैं ता टीका ला लिया हुण तू भी ला ले
1: नहीं यार मैं नहीं लाउणा
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनु एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097 पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
2: और अब एक नजर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल और कारोबार से जुड़ी हेडलाइंस पर। सबसे पहले नीला ड्रम कांड की बात करें। जज ने कहा कि अपराधियों को सजा देना भी धर्म है, कम सजा की गुंजाइश नहीं मानी। मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा, सजा सुनते ही सदमे में आए। उधर सौरभ की मां बोली, आखिरकार न्याय हुआ। रेल कर्मचारियों को तोहफा, 78 दिन का मिलेगा बोनस। 500 करोड़ के सौदे की जानकारी लीक होने पर रक्षा मंत्रालय की कंपनी के अधिकारी

आरोपी समेत तीन गिरफ्तार किए गए हैं। सत्ताईस अक्टूबर से सभी ट्रेन टिकटों पर बीमा अनिवार्य। हाईजैक अलर्ट के बाद विमान जयपुर डाइवर्ट। फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान कल सुबह हाईजैक अलर्ट मिलने के बाद जयपुर डाइवर्ट कर दी गई।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत कोई मध्यम शक्ति नहीं बल्कि मध्यम स्थित महाशक्ति है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री केविन रूड और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ चर्चा में बोले विदेश मंत्री, और ये बात उन्होंने ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में कही।

अब खेलों की बात करें तो चौथा टी20 होप का तूफानी शतक सीरीज 2-2 से बराबर। विंडीज 24 रन से जीता, 248 रनों के लक्ष्य के आगे 223 रन ही बना सका भारत। और रणजी ट्रॉफी की बात करें, बंगाल ने दिल्ली को 9 विकेट से रौंद कर 6 अंक जुटाए। दिल्ली की दूसरी पारी 277 पर सिमटी, 89 रन का लक्ष्य 15.3 ओवर में बनाया। हरियाणा ने हिमाचल को 7 विकेट से हराया। आंध्र प्रदेश, सौराष्ट्र और पंजाब को 3-3 अंक मिले हैं रणजी ट्रॉफी में। यूथ ओलंपिक्स में केवल 17 भारतीय खिलाड़ी। शॉर्ट पुटर ओपी सिंह को बनाया गया शेफ डी मिशन। सात्विक और चिराग पहले दौर में बाहर हो गए हैं डेनमार्क बैडमिंटन ओपन सीरीज में।

0: और दोस्तों ये तो थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल हेडलाइंस. अब आपको जानकारी देते हैं उस्ताद योजना के बारे में. प्रधानमंत्री के जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए गए हैं उन कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम है ये उस्ताद योजना, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए और विकास के लिए. इस योजना का लाभ उठाकर तमाम हमारे बुनकर और जो कलाकार भाई हैं अपने अपने काम में उस्ताद बन सकते हैं. उस्ताद योजना में 45 वर्ष की आयु तक आने वाले लोगों को किसी भी तरह की कुशलता जो 3 से 8 महीने तक सिखाई जाती है, इसके लिए सरकार हर महीने 3,000 रुपये का स्टाइफंड देती है. 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. मास्टर ट्रेनिंग की फीस 50,000 रुपये महीना है. तो ये तो थी उस्ताद योजना, प्रधानमंत्री के अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विकास के लिए जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए गए हैं उन कार्यक्रमों में ये है एक योजना. तो साथियों अब ये तो था आज का अखबार कार्यक्रम. जाने से पहले हम यही कामना करेंगे कि आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने आसपास का ख्याल रखते जाएं. अनिल पुंज को दीजिए अनुमति. नमस्कार.
1: मैं ता टीका ला लिया, हुन तू भी ला ले.
2: नहीं यार, मैं नहीं लौना.
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी.
2: नशा करन ली मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ. नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनु एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है.
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ. बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ. वधेरे जानकारी ली डायल करो.

0: फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097 पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वालों जनहित विच जारी।
1: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक थे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
2: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
3: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4-5 घंटे का वक्त लगता है।
4: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
5: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज का अखबार, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 10 बजने को हैं अब समाचार, हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। श्री मोदी इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
7: प्रधानमंत्री लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नई यात्रा टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। लेह के निम्मू को हिमाचल प्रदेश के दारचा से सुदूर जांस्कर घाटी के माध्यम से जोड़ने वाली यह सड़क लद्दाख के लिए एक वैकल्पिक संपर्क गलियारा प्रदान करती है, जिससे श्रीनगर लेह और मनाली लेह मार्गों पर आवागमन और आसान हो जाएगा। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालसी टर्मिनेशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
6: सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। इसके साथ ही भंडार सीमा 1,000 क्विंटल निर्धारित की है, ये इस वर्ष नवंबर तक लागू रहेगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने जमाखोरी को रोकने और त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चीनी भंडार मानदंडों में संशोधन किया है। संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत कोलकाता और इसके क्षेत्रों तथा असम के लिए भंडार सीमा 2,000 क्विंटल निर्धारित की गई है। मंत्रालय ने कहा कि औसत खुदरा चीनी के मूल्य में अगस्त में अपने उच्चतम स्तर से 15% तक कमी आई है। चीनी की कीमतों में कमी सरकार के चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में इसके सुचारू संचालन को सुगम बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों के प्रभाव का असर है। थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं से ये भी आग्रह किया गया है कि वे मिल से निकलने वाली चीनी की कीमतों में आई भारी गिरावट का लाभ तुरंत उपभोक्ताओं तक पहुँचाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा के पुन्नमी घाट पर राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय स्तर का ये मेला पहली बार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर दे रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित इस मेले में देश भर के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी लगभग 1500 महिला उद्यमी और कारीगर हिस्सा ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की। सोशल मीडिया संदेश में श्री मोदी ने कामना की कि मातृत्व प्रेम और स्नेह की प्रतीक मां स्कंद माता का आशीर्वाद हर परिवार में प्रेम शांति और सद्भाव लेकर आए। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया संदेश में श्री शाह ने कहा कि डॉ कलाम ने अपनी असाधारण वैज्ञानिक प्रतिभा का उपयोग भारत को एक प्रमुख सामरिक शक्ति बनाने के लिए किया और राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखा। श्री शाह ने कहा कि भारत के मिसाइल मैन डॉ कलाम हमेशा एक आदर्श बने रहेंगे और युवा पीढ़ी को राष्ट्र की सेवा में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: प्रिया आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज के 248 रन के लक्ष्य का जवाब में भारत 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर तो 223 रन ही बना सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम है सफर सुरीला सा, कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं गीतों का ये कार्यक्रम कुछ ही पलों में।
2: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सफर सुरीला सा और ये पहला गाना है मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म है जुदाई, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है,
1: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है,
2: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
3: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: और अब बारी है नॉन फिल्मी गाने की। कलाकार हैं अंकित तिवाड़ी।

0: अभी आपने अंकित तिवारी की आवाज में ये गीत सुना, नॉन फिल्मी गीत। अब यहाँ अंतराल।
1: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224।
0: सफर सुरीला सा प्रोग्राम में आप सुनिए धड़क फिल्म से ये गीत।

अभी आपने अजय गोगावली और श्रेया घोषाल की आवाजों में धड़क फिल्म से ये गीत सुना। अजय अतुल के संगीत में ये गीत था। और अब हम आपको सुनवाते हैं धड़क टू फिल्म से ये गीत रोचक कोहली की आवाज में।

0: अभी आपने रोचक कोहली की आवाज में ये गीत सुना, धड़क टू फिल्म से।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
0: नॉन फिल्मी गाने में ये हैं गुरु रंधावा के साथ निखिता गांधी।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट मकान पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से
1: दुकान बिजनेस स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो प्रवेश सूचना टेंडर नोटिस स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी या हमें फोन करें हमारा टेलीफोन नंबर है 260-1846
1: कम खर्च बड़ी पहुंच
0: आकाशवाणी चंडीगढ़

और ये है फिल्मी गाना लता मंगेशकर सुरेश वाडकर की आवाजों में, गुलशन बावरा के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत, अपने अपने ये फिल्म है।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
2: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
3: बिल्कुल।

0: 20 भी ऐसा ही ईंधन है। वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित। भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
1: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है सफर सुरीला सा कार्यक्रम। कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं गीतों का ये कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम जारी है। फिलहाल आपको बता दें अगले कार्यक्रम के बारे में, यानी लक्ष्य प्रोग्राम के बारे में जो आप सुनेंगे 11 बजे। इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मार्केटिंग विशेषज्ञ और बिजनेस डेवलपर रणदीप सिंह सचदेवा के साथ। अपने अनुभव इस क्षेत्र में आपसे शेयर करेंगे दिन में 11 बजे प्रोग्राम लक्ष्य में। और अब बारी है नॉन फिल्मी गाने की। ध्वनि भानुशाली और जुबिन नौटियाल की आवाज में ये गाना

अभी आपने धोनी भानुशाली और साथियों की आवाजों में ये गीत सुना और अब एक और नॉन फिल्मी गाना है कैलाश खेर की आवाज में।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: और आइए अब आपको फिल्मी गाना सुनवाते हैं। ये फिल्म है जोश, आवाज है अभिजीत की, गीत को लिखा समीर ने, संगीतकार अन्नू मलिक।

अभी आपने जोश फिल्म से ये गीत सुना, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में ये गाना था, और अब बारी है नॉन फिल्मी गाने की, नेहा कक्कड़ का गाया हुआ।

0: ये आपने मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल को सुना। ये फिल्म थी राम लखन, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: जब सीलन से छुटकारा पाना हो और घर ऑफिस को सजाना हो तो आज ही आइए अरुणा प्लाई।
2: WPC, PVC, वॉल पैनल, सीलिंग, एक्शन जैसा वुडन फ्लोरिंग, HDH, MR बोर्ड, सनमाइका और प्लाईवुड के लिए अरोड़ा प्लाई वर्ल्ड एट SCO 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700। घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
0: सफर सुरीला सा प्रोग्राम के आखिर में ये रचना है माँ के नाम। कलाकार हैं जुबिन नौटियाल और इनके साथ ही

0: अभी आप सुन रहे थे सफ़र सुरीला सा, FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम लक्ष्य।
1: जिंदगी के सपने तभी सच होते हैं जब आप करते हैं स्मार्ट प्लानिंग।
2: LIC लाया है एक नया प्लान, नवजीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान। एक ऐसा प्लान जो दे आपको डुअल बेनिफिट, इंश्योरेंस भी, सेविंग्स भी। इसमें आपको मिलता है फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शंस के साथ अट्रैक्टिव गारंटेड एडिशंस एंड एनहांस्ड गारंटेड एडिशंस टू एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स।
1: अपने गोल्स के लिए चुनिए एक प्लान जो हो सिंपल, सिक्योर और स्मार्ट। LIC नवजीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान के साथ अधिक जानकारी के लिए अपने LIC एजेंट से संपर्क करें या www.licindia.in पर विजिट करें। LIC हर पल आपके साथ।
3: गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अनिल पुंज प्रोग्राम लक्ष्य में। इस प्रोग्राम में आपको मालूम है हम किसी ना किसी एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनके बारे में, उनके काम के बारे में आपको हम जानकारी दिलवाते हैं, किस तरह से उनका एक्सपीरियंस लाइफ में जो उन्होंने अचीव किया है आपके करियर में एक साथी बनकर वो साथ चल सकता है, इन तमाम बातों के बारे में बात करते हैं। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं मार्केटिंग एक्सपर्ट और बिजनेस डेवलपर रणदीप सिंह सचदेवा जी। सचदेवा जी को कॉरपोरेट सेक्टर में लगभग 28 साल हो गए हैं काम करते हुए, और ये चाहा कि जो हमारे तमाम सुनने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, करियर बनाने वाले हैं, उन्हें आप इस प्रोग्राम के माध्यम से एक गाइडेंस दीजिए। रणदीप सिंह सचदेवा जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
4: सर बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे इस कॉर्पोरेट करियर को अपना अनुभव प्रकट करने के लिए आपने आमंत्रण दिया। आकाशवाणी चंडीगढ़ के सौजन्य से हम शुरुआत कर रहे हैं।
3: जी रणदीप जी, 28 साल का आपका एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट्स में, और इसी फील्ड में घूमते घूमते हमने भी आपको पकड़ लिया और आपको इस प्रोग्राम में ले आए।
4: हाँ जी,
3: ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
4: बिल्कुल
3: लक्ष्य प्रोग्राम का कि तमाम सुनने वाले अपने घरों में बैठकर आपको सुनेंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, करियर बना रहे हैं,
4: जी जी,
3: उन्हें एक दिशा मिलेगी, हमारा ये ऐसा मानना है।
4: बिल्कुल सर, जितना मैंने अनुभव गेन किया मार्केट से मैं ट्राई करूंगा, बिकॉज मैं बिजनेस डेवलपमेंट में रहा हूँ। कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिजनेस के कारण ही जीवित है और बिजनेस करके ही जीवित है।
3: जी,
4: एम्प्लॉयमेंट भी उससे कनेक्टेड है, ठीक है, रोजगार और जो बच्चों का जो फ्यूचर है, जो बच्चे आगे देख रहे हैं कि हमें कहाँ उसकी जगह मिले, अपना बिजनेस कर पाएं, खुद एम्प्लॉयमेंट कर पाएं, या कहीं पे अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की हैं उसको कैसे हम देख पाएं, मेरा अनुभव इस प्रोग्राम के जरिए मैं अपना जाहिर करना चाहूंगा। जी,
3: यानी ये सब चीजें इंटरलिंक्ड हैं आपस में।
4: बिल्कुल इंटरलिंक्ड है।
3: अच्छा रणदीप जी, शुरुआत करें, सवाल कुछ हमने चुने हैं आपके लिए।
4: बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।
3: और पहला सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ने लिखने के बाद अपना करियर बनाने की बात करता है
4: जी,
3: तो सबसे पहले उसके मन में ये आता है कि हाउ टू गेट द आइडिया।
4: बिल्कुल, बहुत
3: है ना,
4: बहुत
3: इतना कुछ उसके आसपास है। हाँ। कोई उसको कहता है कि ये कर लो, इसमें बहुत अच्छा रहेगा, ये कर लो, यहां मत जाना।
4: हाँ जी,
3: तो कुछ कंफ्यूज रहता है वो।
4: बिल्कुल,
3: उसको ये समझ नहीं आती कि किस राह पर वो चले।
4: बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। पहले अगर मैं इसको रिलेट करूं बिजनेस को, तो थोड़ा बताना चाहूंगा कि जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, बिजनेस भी उसी तीनों तीनों पार्ट में, मैंने इसको लैंड,

0: वाटर और
1: एयर,
0: एयर इनसे कनेक्ट किया है। जिस समय मैं आपके सामने रेडियो स्टेशन में बैठा हूं तो ये एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, जो एक कमर्शियल बिजनेस भी है जिसमें आप एफएम कहते हो, एविएशन है,
1: एयर के माध्यम से,
0: एयर के माध्यम से है, टेलीकम्युनिकेशन हो गया,
1: मूलभूत चीजें ये जीवन की हैं।
0: हाँ, और अगर आप लैंड पे देखो, किसी ने भी आज तक जो व्यापारी बना है जिंदगी में, बिजनेस किया है चाहे वर्ल्ड वाइड, तो उसने पहले सबसे पहले लैंड से चीजें ढूंढी हैं। आयरन है लैंड में, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, बड़े बड़े जो व्यापार कर रहे हैं आज व्यापारी बने हैं दुनिया में, जो इन लोगों ने इसी धरती से वो चीजों को प्राप्त करके अपने बिजनेस का सेटअप्स किया है।
1: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: और अगर आप वाटर में, अगर आप उसमें चले जाओ, तो आज आप देखोगे कि आप फिशिंग का बिजनेस है, किसी का शिपिंग का बिजनेस है, तो वो माध्यम बने। या तो यही तीन चीजें, हमें बिजनेस को पहले इस एंगल से सोचना चाहिए जब हम स्कूल्स में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कि जब उनको पढ़ाते हैं कि एटमॉस्फेयर की जानकारी दे रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन से आप देखो, जो गैसेस का बिजनेस कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल में गैसेस आती हैं, तो ऑक्सीजन के थ्रू, तो कोई भी बिजनेस अगर बिजनेस भी हो रहा है इस युग में, तो इसी यूनिवर्स के थ्रू हो रहा है।
1: जी जी, वही हवा पानी और
0: जमीन के थ्रू हो रहा है। आ जाते हैं कि बिजनेस को अगर किसी ने अपना शुरुआत करनी है तो बिजनेस को कैसे सोचे,
1: इन तीनों में से कौन सा आइडिया ले,
0: कौन सा आइडिया ले, ये बड़े। और उस इसी तीनों के बीच में सर्विसेज का बिजनेस छुपा है, कि किसी ने अगर शिपिंग, अपनी शिपिंग कंपनी खोल ली है, तो उसको आगे सर्विस कैसे बेची जाए। कोई आईटी की सर्विस दे रहा है, कोई दूसरी सर्विस उसको प्रोवाइड कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड कर रहा है। तो
1: वही बात मैं आपसे कह रहा हूं ना, कि आज किसी भी विद्यार्थी के लिए किसी चीज के बारे में जानकारी लेना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है।
0: हाँ, पर मेरा एक अंदाजा,
1: लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है वो है फील्ड का।
0: हाँ, फील्ड का एक्सपीरियंस है सर, और उसी से ही मैं इस तरह से देखता हूँ। आज का रुझान करें यूनिवर्स की ओर, हम यूनिवर्स में कैसे रह रहे हैं और यूनिवर्स के अंदर बिजनेस कैसे हो रहा है। उसके बाद आ जाती है बात कि आपने सपोज अपना स्टार्टअप खोलना है आज, ठीक है, आज आप नया बिजनेस कर रहे हो या पैरेलली आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई करने वक्त ही आपको साथ में, जब आपने अगर आईटी में पढ़ाई कर रहे हो, अकेडमिक्स आपके वो हैं, तो साथ ही आपको ये अपने माइंड में लेके आना है कि क्या मैं टेक्नोलॉजी बेस कुछ कर सकता हूँ, बिजनेस शुरुआत कर सकता हूँ, या मेरे किसी पेरेंट्स के कोई बिजनेस है उसको मैं आगे एक्सपेंड करूँ। तो ये आइडियाज आपको साथ के साथ, आपको जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आने चाहिए। तो बेसिकली
1: मतलब इन पे काम शुरू कर देना चाहिए। हाँ, जब आप पढ़ाई कर रहे हो,
0: हाँ,
1: ड्यूरिंग द लास्ट लेग ऑफ योर
0: एजुकेशन, उसी समय आपको सोचना चाहिए। और आजकल बिजनेस इतना एडवांस हो चुका है कि इतना कंपटीशन है, तो आपको आज शुरुआत में पहले ये सोचना चाहिए कि मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। मैं हेल्थ सेक्टर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, तो मुझे हेल्थ सेक्टर के बिजनेस की और अपना रुझान लेके जाना चाहिए। अगर मेरे को एजुकेशन सेक्टर में कुछ करना है, तो एजुकेशन सेक्टर में क्या उसमें क्या क्या बिजनेसेस छुपे हैं जिनमें मैं कोई सर्विस कर सकता हूँ या प्रोडक्ट कोई ऐसे डेवलप करके दे सकता हूँ।
1: यानी जिस फील्ड में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो,
0: हाँ,
1: कि यहाँ मैं समझता हूँ, इसमें मुझे कुछ और गाइडेंस मिलेगी तो मैं आगे बढ़ूंगा।
0: हाँ, वो भी है सर, और थोड़ा इंटरेस्ट और पैशन भी हो साथ में। हाँ, कि अगर मेरे को टूरिज्म, अगर मैं ट्रैवलर हूँ, मैं टूरिज्म, मेरे को वो, तो आजकल मैं कैसे टूरिज्म कैसे प्रमोट हो रहा है सोशल मीडिया को यूज करते हुए, ठीक है, कौन से इलाके हैं। अब काफी आप देखोगे इंडिया में लोग काफी ट्रैवलिंग का बहुत अच्छा स्कोप है, वो टूरिज्म से आप उसको रिलेट कर सकते हो।
1: मेडिकल ट्रेवलर्स हैं,
0: मेडिकल टूरिज्म है, बहुत चीजें, इको टूरिज्म है, बहुत लोग कर रहे हैं। अब जगह जगह आप देखोगे आजकल सोशल मीडिया को यूज करते हुए रील्स बनती हैं, लोग प्रमोट।
1: रणदीप जी, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप्स को लेके बहुत काम किया है, और दुनिया में मुझे लगता है कि हमारे काफी अच्छे स्टार्टअप्स हैं और अच्छा उन्होंने काम किया है।
0: जी,
1: तो ये स्टार्टअप जो है
0: जी,
1: इसे शुरू करने के लिए, जैसा अभी आपने अपनी बातचीत में भी स्टार्टअप की बात की, इसे शुरू करने के लिए बेसिक टिप्स क्या हैं?
0: बेसिक टिप्स ऐसे है कि देखो, आपकी एक, आपको सबसे पहले तो एक ऑर्गेनाइजेशन आपको स्टार्टअप में आपको रजिस्टर करवाना है। स्टार्टअप इंडिया, DPIIT आपको रिकॉग्निशन देता है। स्टार्टअप आप रजिस्टर कराओगे तो उसमें फायदा ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको या स्टेट गवर्नमेंट आपको जो बेनिफिट्स दे रही है अंडर स्टार्टअप इंडिया, टैक्स एग्जेम्पशन है कुछ है उसमें, बेसिकली आपको साथ में डिस्क्रिप्शन में भी बताना है कि आप आपका आइडिया क्या है। फिर आपको उसको, अगर आपको आइडिया यूनिक आइडिया लगता है, आप उसको पेटेंट कराएं, ठीक है। काफी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आजकल आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या आपका आइडिया को पेटेंट करती हैं।
1: जी,
0: ठीक है। फिर आपको उसके आगे आपको देखना है कि आप अकेले समर्थ हो, कि आपको कोई टेक्नोलॉजी फील्ड में कोई चाहिए। आजकल लोग पार्टनरशिप की तरफ भी देख रहे हैं इसको। या उसके बाद फिर आप इसको देखते हो कि आपको फंडिंग कहाँ से आएगी स्टार्टअप पे। फंडिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी काफ़ी संस्थाएं

0: गवर्नमेंट की जो आपको इसमें फंडिंग देती हैं, अदरवाइज प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो सीड फंडिंग करती हैं। इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं,
1: जी
0: आपको स्टार्टअप एंजल इन्वेस्टर्स कहते हो, आप इनमें
1: हाँ,
0: वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हो।
1: जी, सबसे पहले मतलब आपको अपने बारे में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने क्या करना है,
0: हाँ
1: और वो आइडिया आपने लेके मार्केट में जाना है,
0: बिल्कुल,
1: जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के अपने आइडिया को शेयर करना है।
0: जी
1: वो अगर कन्विंस होते हैं
0: हाँ।
1: तो फिर ये उसमें पहला कदम क्या होगा?
0: देखिए, सबसे पहला कदम स्टार्टअप में तो ये है कि आप अपना आइडिया को चूज करने के लिए स्टार्टअप की स्टेट की पॉलिसीज देखें कि आपको
1: अच्छा
0: किस में आपको बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप
1: जी
0: रूरल बैकग्राउंड से हैं, आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आपको ये देखना है कि एग्रीकल्चर बिजनेस से आपको कौन से बेनिफिट्स जो है स्टेट दे रही है, कौन सी स्कीम्स में आपको फंड मिल रहे हैं। क्योंकि स्टार्टअप करने के लिए यहाँ पे कई जगह पे बच्चे आके रुक जाते हैं कि अब फंड कहाँ से आएगा। आइडिया आ जाता है, कंपनी फर्म
1: हाँ,
0: भी
1: सबसे बड़ी
0: रजिस्टर हो
1: बात तो
0: जाती
1: फंड की
0: है,
1: होती है।
0: पर कहानी आ जाती है कि अब मेरे को फंडिंग कहाँ से मिलेगी, मैं फैमिली से उसको करूँ। क्योंकि आपको 6 महीने से 12 महीने तक सबसे पहले सोच के चलना है कि अगर मेरा ये आइडिया या उसकी मार्केट सेंस आपको करके चलना है कि जो मैंने आइडिया सेलेक्ट किया है इसका मार्केट साइज कितना है, ठीक है, और ये कहाँ बिकेगा, अपनी ज्योग्राफी में मेरे है कि मेरे को आउट ऑफ मेरी ज्योग्राफी जाके इसको अपने आइडिया को करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा।
1: तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ भी आइडिया है, कोई भी सोच है, उसे धरातल पर उतारने से पहले आपको किसी ऐसे एक्सपर्ट के पास बैठना चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: उसकी
0: काउंसलिंग
1: सलाह
0: होगी
1: लेनी चाहिए,
0: जी, जो
1: काउंसलिंग।
0: ऑलरेडी कर चुका है, जो आपका
1: हाँ
0: मेंटर बन सके।
1: हाँ
0: ये बहुत अच्छी बात आपने कही सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि विदाउट मेंटरशिप स्टार्टअप में आप बिल्कुल अकेले
1: हाँ
0: मत लीजिए,
1: अकेले
0: क्योंकि
1: नहीं
0: आपको
1: चलना है।
0: मेंटरशिप
1: हाँ
0: चाहिए
1: अच्छा,
0: आपको।
1: मेंटर कैसे चुना जाए? मान लीजिए मैंने कुछ आइडिया अपना डेवलप कर लिया,
0: हाँ
1: अब मेंटर चुनने के लिए मुझे किन किन बातों का ख्याल रखना है?
0: सर, मेंटर चुनने के लिए देखो सबसे पहले आप केस स्टडीज चुनिए, ठीक है, जो जो ऑलरेडी स्टार्टअप खड़ा कर चुके हैं लोग, जिनका हो चुका है। आज के युग में आपके पास डिवाइसेस हैं, कुछ है, आप पिछले 5 साल में स्टार्टअप्स देखिए कौन से सक्सेसफुल हुए हैं इंडिया में, और किस उनकी परसेंटेज कितनी है, कितने रुझान में किस फील्ड में लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपने हेल्थ सेक्टर में चुन रहे हो अपना आइडिया, तो आपको नेचुरली कोई ना कोई मेंटर चाहिए जो
1: उस फील्ड का
0: उस
1: हो।
0: फील्ड का
1: हाँ
0: एक्सपर्ट हो,
1: जी जी जी
0: जिसने कुछ बिजनेस किया हो, जो
1: हाँ
0: आगे टेक्नोलॉजी भी जानता हो। आज आप कुछ भी आइडिया ले लो, विदाउट टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं चलता, तो टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन बहुत जरूरी है।
1: टेक्नोलॉजी वाइज तो हमारी जो नई जनरेशन है वो
0: हाँ
1: बहुत आगे है,
0: बहुत
1: और
0: आगे
1: सोशल मीडिया पे सब कुछ उनको हासिल हो जाता है,
0: जी,
1: लेकिन सही दिशा तभी मिलती है जब सही मेंटर मिले और सही गाइडेंस मिले,
0: बिल्कुल
1: आमने सामने बैठ के बात हो,
0: बिल्कुल, तो
1: जहां आपके जितने भी किंतु परंतु हैं वो सब क्लियर हो जाएं,
0: बिल्कुल
1: उसके बाद आप अपने सफर पर निकलें।
0: बिल्कुल, तो अगर आपने टूरिज्म अपना फील्ड चूज करना है, आपको लगता है कि मैं टूरिज्म में कुछ कर सकता हूं, तो आप प्रॉब्लम देखिए टूरिज्म में क्या है आपकी। आप एक टूरिस्ट से स्टेट से हो, अगर हिमाचल से हो, तो उसमें देखो क्या चैलेंजेस आ रहे हैं मेरी स्टेट में, टूरिस्ट कैसे बढ़ेगा, मैं कौन सा स्टार्टअप अपना नया शुरुआत करूं जिसमें मैं टूरिस्ट को और ला सकता हूं, या स्टेट गवर्नमेंट में टूरिज्म डिपार्टमेंट है, वहां से मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है, मैं वहां पे जाके विजिट करूं, उनकी
1: बिल्कुल
0: क्या स्कीम्स
1: हाँ,
0: हैं।
1: आप सही कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका आइडिया किस फील्ड के लिए है, उस फील्ड की क्या आवश्यकताएं हैं, वहाँ काम किस तरह से हो रहा है, वहाँ क्या कुछ होना चाहिए, इन तमाम बातों के बारे में पूरी जानकारी पहले होनी चाहिए।
0: बिल्कुल होनी,
1: उसके बाद आपका मेंटर की बात आ गई, मेंटरशिप आ गई, फिर मेंटर से मिलिए, उससे
0: बिल्कुल।
1: मिलके आपके जितने भी किंतु परंतु हैं वो हल होंगे।
0: दूसरा सर,
1: जी
0: आपको अगर आइडिया आ भी गया, तो आप डेवलप्ड कंट्रीज की भी इंफॉर्मेशन आजकल अपने मोबाइल पे सीख कर सकते हैं कि US में या यूरोप में या और कंट्रीज, जर्मनी जैसे एडवांस्ड कंट्रीज में एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, ठीक है, टूरिज्म पे क्या हो रहा है, उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज की हैं, कैसे उन्होंने की। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन राइट नाउ टुडे इज इन योर हैंड्स,
1: जी, उसे यूज करना आना चाहिए।
0: उसको यूज करना आना
1: हाँ
0: चाहिए, उसको
1: अच्छा, तो रणदीप सिंह सचदेवा जी, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, मार्केटिंग के आइडियाज बता रहे हैं, बिजनेस डेवलप कैसे होना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं, और इस सफर में हम अपने मेहमान का भी पूरा ख्याल रखते हैं,
0: जी
1: तो बताइए अपनी पसंद का कोई गाना फिलहाल वो प्ले करते हैं, उसके बाद फिर जानकारी आपसे और भी लेंगे प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में।
0: जी थैंक यू सर। सो इसमें शोर एक पिक्चर मेरे दिल के बहुत करीब है,
1: हाँ हाँ
0: मनोज
1: हाँ
0: कुमार
1: हाँ
0: जी की,
1: जी,
0: और उसका एक गाना है पानी रे पानी तेरा रंग कैसा,
1: रंग
0: वो मेरा फेवरेट
1: कैसा,
0: सॉन्ग है
1: जी
0: आज
1: जी जी
0: तक।

0: सीमित करना पहला स्टेप लेने से पहले ये बहुत जरूरी है कि उसने मार्केट सर्वे कम से कम 1 साल 6 महीने या 1 साल लगाया हो इसके पीछे।
1: जी, अगला सवाल है वो आपसे ये रहेगा कि नया बाजार जो हमारे लिए खुला है, हमने आइडिया लिया, हमने उसे डेवलप किया, फंडिंग भी हो गई, अब बात आती है मार्केट की।
0: जी,
1: मार्केट के अपने असूल हैं, मार्केट की
0: किसको रिस्पांस देती है, कहां देती
1: नहीं
0: है,
1: नहीं देती, वो वक्त की बात होती है। नए बाजार को नए बाजार को कैसे टारगेट किया जाए, उसके लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए?
0: जी, इसमें सर सबसे पहले तो अगर आपको ये अपनी आपने कोई आइडिया अपना चूज कर लिया कुछ है, आप अपनी पहले जिस ज्योग्राफी में देख रहे हो, आप देखो आपने अगर बिजनेस करना है तो विद इन दी ज्योग्राफी करना है, क्योंकि आपको साथ में ये भी देखना है कि आपने जो बिजनेस आपने चूज किया है, हर एक एक बिजनेस की एक क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट होती है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है।
1: जी,
0: ठीक है, तो वो आपको सीमित करती है कि मेरे को किस स्केल पे आपको अपने बिजनेस को लेके जाना है। मैं एक पहले ज्योग्राफी से शुरू करूं कि मेरे को नेशनल लेवल पे आना है, कि मैं अभी के लिए क्या प्रिपेयर्ड हूं।
1: जी,
0: ठीक है, या मैं एक अपनी टेरिटरी में सीमित करूं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी चीज चूज की, आपने कहा ये मेरी सोसाइटीज आजकल हैं, अपार्टमेंट्स हैं, मैं अपनी क्यों ना अपनी ज्योग्राफी से शुरू करूं, इस सोसाइटी में कुछ पहले सेल करूं, मैं देखूं कि क्या रिस्पांस आ रहा है उस। आपको एक छोटी सी, आप एक पहले मार्केट टैप करोगे,
1: स्पॉट मिलेगा आपको,
0: आपको ऑन द स्पॉट फीडबैक मिलेगा, और आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी जो है वो लिमिटेड रहेगी। अगर जी, आपके पास जी, आप बूटस्ट्रैप फर्म हो और आपके पास अभी फंडिंग आउटसाइड फंडिंग नहीं है तो आप अपने खर्चे नहीं बढ़ाने चाहोगे, आप यही चाहोगे कि मैं उतनी की इन्वेस्टमेंट पहले करके देखूं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई चीज प्रोडक्ट डेवलप किया, मेरे बेटे ने जैसे कोई हेयर मिस्ट उसने डेवलप किया प्रोडक्ट, मेरा उसको यही कहना था कि सबसे पहले आप कुछ बॉटल्स हेयर मिस्ट की पहले तैयार करवाओ, बद्दी एरिया है या जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां से करवाओ, कुछ 1000 बॉटल्स तैयार करो, उतनी आप लिमिटेड कॉस्ट यूज करो, एंड स्टार्ट गिविंग दैट फीलर्स टू द पीपल। आप उसको चाहे डेमो में दे दो लोगों को, या कहीं होटल्स में दो, या कहीं और जगह पे, तो गेट दी फीलर, फीडबैक लेना शुरू करो,
1: शुरुआत तो करो ना।
0: या और जैसे जैसे वो आपका प्रोडक्ट अब्सॉर्ब होता जाएगा, आप अपना स्केल अप बढ़ा सकते हो, आप अपने ऑफिसेज का भी सोच सकते हो, आप अपनी मैन पावर का भी सोच सकते हो कि मेरे को अब फलानी जगह दूसरी ज्योग्राफी में एंटर करना है तो दूसरी ज्योग्राफी में मेरे को सेल्स का टाइप्स चाहिए, कुछ चाहिए। आप अगर बिल्कुल बूटस्ट्रैप कंपनी हो तो सबसे पहले आप अपने आइडिया पे, आप कन्विंस हुए, आप उस स्टेज पे आए, आप पहले एक जगह से शुरुआत करो जहां आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरे को कस्टमर से, क्योंकि अगर आप ऐसे वर्बली पूछोगे कि सर मैं ये बना रहा हूं, पूछने से पहले कि मैं बना रहा हूं ये कैसे रहेगा या इसकी कॉस्ट मैं क्या रखूं, आपको वो फीलर नहीं आएगा। आपको एक डेमो टाइप, आपको जब मार्केट में आप पहली बार आ रहे हो तो आप पहला प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आपको बड़ा सोच समझ के आपको एंटर करना है।
1: जी जी,
0: मार्केट
1: रणदीप जी, अब मौके तो बहुत सारे होते हैं, कई बार हम पहचान पाते हैं और कई बार तो वो हमारे आसपास ही होते हैं, हमारी नजर नहीं जाती है।
0: जी,
1: तो मौके कैसे पहचाने जाए?
0: मौकों को पहचानने का तरीका ये है कि सर आप अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स पहले देखते हो कि आप कितनी आप कैपिटल लगाना चाहते हो। देखो, अपॉर्चुनिटीज सर्विस इंडस्ट्री में भी बहुत हैं और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी बहुत हैं। आज की डेट को बात करो तो अगर सोशल मीडिया की, अगर मैं एक अपॉर्चुनिटी की बात करूं, तो इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आज की जनरेशन जेड ऑलरेडी कर रही है। ठीक है, आजकल बड़े बड़े ब्रांड्स को वो बना के दे रहे हैं। अब मैं एक फॉर एग्जांपल, मेरे को एक बच्चा मिला 12th में, वो लड़की है तो वो एक क्रिएटिव आर्टिस्ट थी।
1: जी,
0: तो क्रिएटिव आर्टिस्ट थी तो इतना उसका आर्ट मशहूर था, पर उसको एक राइट मेंटर मिला।
1: हाँ।
0: इस लड़की को एक मेंटर ने एक जानी मानी शू कंपनी, वर्ल्ड रिनोन्ड शू कंपनी के साथ मुलाकात करवाई।
1: जी,
0: तो उसको नजर आया कि उसकी मार्केट कहाँ छुपी है, उसकी क्रिएटिविटी कहाँ छुपी है, और आज वो घर बैठे उस शू कंपनी के थ्रू She is making lot of money and she has built up her own career. नहीं तो normally हम creativity सोचते हैं कि चलो हमें कोई exhibition में लगा लें अपनी painting या कुछ है। अब किया क्या था, वो creative artist था, उस शू कंपनी को उसने आइडिया दिया कि आपके नेक्स्ट जो शूज हैं वो इस स्टाइल से आने चाहिए।
1: जी, और उसके बाद वो पॉपुलर हो गए,
0: उसके पॉपुलर हो गए, एक्सेप्टेंस हो गए, उसको लॉन्च किया।
1: जी, जी,
0: तो उसको रोजगार मिल गया।
1: तो ये है मौका पहचानने का तरीका।
0: जी
1: जी, तो रणदीप सिंह जी, अब एक सवाल हमारा ये भी है, सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पर मार्केटिंग को लेकर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा ज्ञान है, हर कोई अपनी कहानी बता रहा है।
0: जी,
1: कि ऐसा कर लो वैसा कर लो।
0: जी,
1: और देखिए चुटकी बजाते सक्सेस आपके द्वार पर है।
0: हाँ जी,
1: तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखने वाला उसको

0: लक्ष्य कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हैं मार्केटिंग एक्सपर्ट और बिजनेस डेवलपर सचदेवा जी। प्रोग्राम में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं।
1: शुक्रिया सर।
0: और हमने आइडियाज़ की बात की, मेंटरशिप की बात की और किस तरह से हर फील्ड के बारे में आपने जानकारी दी कि हमें ये खुद देखना है एक स्टूडेंट को, करियर बनाने वाले को, कि वो कौन से फील्ड में जा सकता है और उस फील्ड की अपनी क्या संभावनाएं हैं, क्या वहाँ की कमजोरियां हैं, क्या वहाँ पे काम होने वाले हैं, क्या उसमें नया कुछ।
1: पूरा मार्केट सर्वे, उसको मार्केट कंस्ट्रक्ट करना जरूरी है जिसमें ये सारी जानकारी उसको

0: जानने वाला समझने वाला उसके मन में कई सवाल आ जाते हैं कि ये ठीक है या वो ठीक है, सोशल मीडिया को किस तरह से अपने आइडियाज में अपनी जो स्ट्रेटजी है उसमें शामिल किया जाए।
1: आप देखोगे इस पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, ठीक है, क्यूरेटेड ड्रॉप शिपिंग है, तो ये यूनिक प्लेटफॉर्म्स हैं। मेरे ख्याल में तो ये लगता है कि जो आज की डेट में अगर सोशल मीडिया को यूज नहीं कर रहे हैं
0: जी जी,
1: तो वो ही और शी इज गोइंग टू लैग बिहाइंड। तो उसका राइट
0: यूज, वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उसका राइट यूज इस मामले में, जब आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, कोई आइडिया लेना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस को शुरुआत करना चाह रहे हैं, अगर बिजनेस है भी उसे डेवलप करना चाह रहे हैं
1: जी,
0: तो वहां तो बहुत कुछ है।
1: वहाँ बहुत कुछ है सर, तो वहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म वीडियोस अपना बना सकते हो जो आजकल लोग बना रहे हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए
0: जी।
1: सोशल मीडिया के थ्रू टोटल ऑटोमेशन प्रोसेसेस बताए जाते हैं कि आपको कैसे करना है अपने बिजनेस को, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको आप कैसे देख सकते हो, बिकॉज ये जो पिछले युग के जो बिजनेसेस थे जिसमें आप कहते थे कि ऑटोमेशन की जरूरत नहीं है, आज ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो चुकी है इवन रिटेल बिजनेस में
0: जी।
1: तो उसमें काफ़ी इम्पैक्ट डाल रहे हैं। फिर आपके पास ऑथेंटिक कंटेंट्स होने चाहिए, ठीक है, जो आप उनको लॉन्च कर सकते हो। प्रोफेशनल साइट्स हैं, लिंक्डइन है जिसमें आप अगर आप उनको टच करना चाह रहे हो तो लिंक्डइन के थ्रू जा सकते हो, अगर आपने यूट्यूब पे कोई सोशल मीडिया पे करना है तो आप कर सकते हो
0: जी।
1: तो काफ़ी ऑथेंटिक ये ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स ही हैं जिसके ऊपर आप अपना अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो
0: जी,
1: रादर देन गोइंग फॉर न्यू साइट्स।
0: और वहां से आपको और भी जो तमाम जानकारियां मिल सकती हैं।
1: तो ये वो है कि अच्छा, आपको रीच आउट जो आपका मासेस को है, जब आप स्टार्टअप कर रहे हो, स्टार्टअप का एक ये भी है कि अगर आपको लोअर कॉस्ट में रीच आउट करना है मास को तो सोशल मीडिया इज द ओनली वे यू कैन डू इट
0: जी। तो रणदीप जी ये बताइए, बिजनेस में कभी कभी अपने बलबूते पे काम नहीं होता, पार्टनरशिप में भी
1: बिल्कुल बहुत जरूरी है
0: शुरुआत करते हैं
1: जी,
0: क्या टिप्स देना चाहेंगे किस तरह से एक व्यक्ति को पार्टनरशिप के लिए तैयार रहना चाहिए?
1: तो देखिए सर, अगर आपने कुछ आइडिया चूज किया है, किसी कोई स्टार्टअप का आइडिया चूज किया है कि मैं इस क्षेत्र में जाना चाहता हूँ
0: जी,
1: तो आप देखें कि आप अपनी क्षमता में क्या क्या चीजें कर सकते हो और आप में क्या मिस आउट है। और सपोज अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो अकेला कैपिटल वाला भी पार्टनर सिंपल वो करके और उसको कोई बाकी की चीजों की जानकारी नहीं है
0: जी,
1: वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो आई थिंक मिक्स बैलेंस पार्टनर का होना और कितना वो नॉलेज रखता है, कितनी उसकी मार्केट की मैच्योरिटी है, कहाँ आपको वो पुश दे सकता है, एज अ मेंटर भी आपको पुश दे सकता है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे पार्टनर में आप जरूर ढूंढें बिफोर डिसाइडिंग टू मूव अहेड विद एनी पार्टनर
0: जी। रणदीप जी, अब प्रोग्राम का समय लगभग समाप्ति की ओर है
1: जी,
0: एक आखिर में आपसे सवाल हम करना चाहेंगे
1: जी,
0: कि हमने सब काम कर लिया, हमने बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया, मार्केटिंग के जितने फंडे हैं वो हमने पूरे कर लिए
1: जी,
0: अब अपनी सफलता को कैसे नापा जाए,
1: सफलता
0: whether I am successful or not?
1: उसका सर सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट टिप यही है कि आप रोज अपने सेल्स को आप उसको मैयर कीजिए, जितना आप सेल कर रहे हैं उसके रिटर्न्स कितने आपको फास्ट आ रहे हैं, मतलब ROI आपको कितना जल्दी आपको वापस आ रही है। अगर आपने स्टार्टअप भी शुरू किया पहले 6 महीने में 12 महीने में, आप इसको अपने मैट्रिक्स के थ्रू ज़रूर मैयर कीजिए कि मेरी इतनी कॉस्ट लगी है और इतनी देर कितनी देर में मेरे को इतना इसका रिजल्ट या इसके आउटकम आ रहे हैं और मेरे को इन अ वे कैश कब उसका मेरे को प्रॉफिट मार्जिन कब आ रहा है।
0: जी आज इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़े
1: जी,
0: मार्केटिंग के बारे में और बिजनेस के बारे में आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी।
1: थैंक यू सर।
0: प्रोग्राम का समय अब लगभग समाप्ति की ओर है, जाने से पहले करियर बनाने वालों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए आप कोई संदेश देना चाहें?
1: जी मेरा यही संदेश रहेगा कि आज का युग बहुत अच्छा चल रहा है और अपने अपने फील्ड में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि अपने आप को सेल्फ रिलायंट कैसे करना है। उसका बेस्ट जरिया तरीका यही है जो इसमें आज के लड़के और लड़कियां जुड़े हुए हैं कि कुछ ना कुछ अपना व्यापार बनाने के लिए अपने एरिया को देखते हुए कि हम कितनी नॉलेज रखते हैं या अपना एक्सपोजर को देखते हुए वो अपने आप को लॉन्च करें और अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाए,
0: वो नौकरी देने वाले बन जाए,
1: नौकरी देने वाले बने। हाँ जी बिल्कुल।
0: रणदीप सिंह सचदेवा जी, आप इस प्रोग्राम लक्ष्य में आए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
1: थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता रमन भगत, अब आपका होस्ट एंड दोस्त अनिल पुंज आप सबको कहता है ऑल द बेस्ट।

0: बेस्ट ऑफ लक। इस प्रोग्राम में अपना तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी प्रशांत वशिष्ठ ने।
1: भाई हर दिन 6-7 करोड़ व्हीकल्स पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल भरवाते हैं। देश में लगभग 20 करोड़ टू व्हीलर्स और 3 करोड़ कार्स पिछले 2.5 साल से E20 पर चल रहे हैं।
2: सब तो बढ़िया चल रहे हैं।
1: वही तो, अगर E20 से वाकई कोई वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम होती तो अब तक सामने आती, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। इसलिए रूमर्स पर नहीं फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए।
3: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी

0: Piles Hospital. कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian. नियम और शर्तें लागू।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइश आपकी। नमस्कार, कार्यक्रम फरमाइश आपकी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं चैतन्य। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारी पहली फरमाइश प्लॉट कैंप पंजाब से। सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरुचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी, मुल्लापुर दाखा मंडी से बिट्टू जैन, बिट्टी मट्टू, दीपक जैन, अभिषेक, गौतम, रसगुल्ला, नगीना, अरिहंत, पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद, टोनी, लव, राधे भाविक, पंचकुला सेक्टर 11 से अतुल शर्मा, सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज, और सेक्टर 9 पंचकुला से रमेश गुलाटी, स्नेह गुलाटी, हिमांशु, दिवांशु की फरमाइश पे फिल्म ब्लैकमेल का ये गीत।

0: का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फरमाइश आपकी। कार्यक्रम में अगली फरमाइश है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश, राहुल, नूर, नमन, सिमरत, पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, बेबी आरजू, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरव, शाइना शर्मा, निवान शर्मा, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, वंश बत्ता, और गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छींदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता की फरमाइश से ये अगला गीत फिल्म जुल थीव से किशोर कुमार की आवाज़ में, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीत दिया है SD बर्मन ने।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और पेश करते हैं अगली फरमाइश। डोगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अंशिका, तन्मय गजबिये। करणवीर हाउस पुच्चो कैंचिया बठिंडा से परमवीर जौड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, सिमरन, कुलदीप, एकम। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग, मीका बिरक। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। और कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की तरफ से फिल्म तीसरी मंजिल से ये गीत, जिसके गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं आर डी बर्मन और आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश है मुक्सर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर, रवनीत निशु और भूपिंदर की तरफ से, भागवत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया और सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान की तरफ से फिल्म आराधना का ये गीत, जिसके गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं एस डी बर्मन और इसे आवाज़ दी है किशोर कुमार ने।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश है चकला बाजार समाना पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति, रेयांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर, छत्तीसगढ़ भाटापारा ततरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार, जालौना उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार, चंसौलिया, आदर्श, सार्थक और कृष्णानगर टीवी टावर हिल्स नागपुर से नाना डोंगरी देव, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई, राहुल की फरमाइश पे ये अगला गीत फिल्म एक दूजे के लिए से लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इसी के साथ कार्यक्रम फरमाइश आपकी यहीं समाप्त होता है। मुझे चैतन्य को दीजिए इजाजत। नमस्कार। FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हिंदी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलते वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थिति

0: परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉ जयशंकर ने ये बात कही। इसमें संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान भी उपस्थित थे। डॉ जयशंकर ने बहुपक्षवाद के तत्काल सुधार के महत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बदली वैश्विक व्यवस्था की गति को समझना जरूरी है। डॉ जयशंकर ने श्री नहयान के साथ बैठक में भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने जॉर्जिया के विदेश मंत्री माका बोतचोरी शिवली से भी मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बैंकॉक में ब्रिटेन के वित्त मंत्री जॉन हीली से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने चौथे भारत ब्रिटेन वित्तीय बाजार संवाद, फिनटेक बैठकों और संबंधित आईयूकेएफपी बैठकों के सफल समापन पर चर्चा की। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने साझा प्राथमिकताओं, रचनात्मक और समावेशी G20 प्रक्रिया की दिशा में ब्रिटेन के साथ मिलकर काम करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा है कि भारत और कनाडा के बीच व्यापार वार्ता में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस साल पूरी होने की उम्मीद है। कल मुंबई में श्री सिद्धू ने कहा कि समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में हुई प्रगति द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इस बीच केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और कनाडा के रिश्तों में नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चर्चा के दौरान CEPA के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों के विस्तार पर बातचीत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38 हजार करोड़ रुपए हो गया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना के पास मौजूद गोला बारूद की 175 किस्मों में से 159 स्वदेशी हैं। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 12.5 वर्ष में रक्षा क्षेत्र ने न केवल अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के अपने दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव भी किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
1: ऐसा कहा जाता है कि ओनली डेड है सीन इन द वार। यह विचार एक ओर हमें युद्ध की निरर्थकता और उससे होने वाली अपार मानवीय क्षति का एहसास कराता है, तो दूसरी ओर यह भी याद दिलाता है कि युद्ध की संभावनाएं कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं और हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में यह माना जाता है कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसी तर्क पर मैं कहता हूं, होप फॉर द पीस बट प्रिपेयर फॉर वॉर।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से पूछा है कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की स्थिति से जुड़ी चिंताओं के समाधान के लिए पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट कब जारी करेगा। इनमें हत्याओं की जांच और इंटरनेट सुविधा पर लगाई गई पाबंदियां शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति के 81वें सत्र में कल मानवाधिकार उच्चायुक्त के साथ संवाद के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुज स्वरूप ने ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
3: जब सीलन से छुटकारा पाना हो और घर ऑफिस को सजाना हो तो आज ही आइए अरुण अप्लाई।
4: WPC, PVC, वॉल पैनल, सीलिंग, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग, HDH, MR बोर्ड, सन माइका और प्लाईवुड के लिए अरोड़ा प्लाईवुड एट SCO 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़।

स्वागत है आप सभी विविध भारती सुनने वाले श्रोताओं का कार्यक्रम यादों की महफिल में। मैं हूं पूजा नारायणिया, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज है संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के शंकर का जन्मदिन। आज का कार्यक्रम हमने उन्हीं के संगीतबद्ध किए गीतों से सजाया है। साथ ही आपको बता दें कि आज है ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में पहला गीत प्रोफेसर फिल्म से, हसरत जयपुरी की बोल शंकर जयकिशन का संगीत।

सीआईडी फिल्म से गीत आपने सुना आशा भोसले मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाजों में, जहां निसार अख्तर की रचना थी, ओपी नैयर का संगीत।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली। बजते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
1: उन्हें बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में संगीत का अनुभव।
2: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिनपॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी इंद्र। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जब आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर। रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

इस संदेश से पहले आपने गीत सुना आरजू फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल थे तर्ज बनाई थी शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म प्रिंस से लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में। हसरत जयपुरी के ही बोल हैं संगीत शंकर जयकिशन का।

0: अनाड़ी फिल्म से मुकेश की आवाज में ये गीत आपने सुना, शैलेंद्र के बोल थे, संगीत शंकर जयकिशन का।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
2: पेंटर बाबू
1: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
3: दिल तो पागल है,
1: दुश्मन
4: चिट्ठी न कोई संदेह,
1: गदर एक प्रेम कथा,
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
1: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
6: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पा,
1: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और हम आपको सुनवा रहे हैं शंकर जयकिशन के संगीत पर ये गीत, क्योंकि आज है इस संगीतकार जोड़ी के शंकर का जन्मदिन। शारदा की आवाज में सूरज फिल्म का गीत, हसरत जयपुरी के बोल, तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपने आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल।

FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है हमारे अब से लेकर आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में और फिर 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार शाम को प्रसारित होंगे, पहले शाम 6:10 पर हिंदी में और फिर 6:20 पर पंजाबी में।

कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और फिर 5:05 पर। दिन में 1:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर। दिन में 2:00 प्रसारित होगा कार्यक्रम त्रिवेणी।

कार्यक्रम सदाबहार नगमे प्रसारित होगा दिन में 2:30 पर। सखी सहेली कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा दोपहर 3:00। शाम 4:00 पिटारा के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

शाम 5:20 पर प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:30 पर। शाम 6:30 पर कार्यक्रम समाचार दर्शन प्रसारित किया जाएगा।

पंजाबी गीत आप सुन पाएंगे पहले शाम 6:40 पर, उसके बाद शाम 7:47 पर और फिर कार्यक्रम सुरसांझ में रात 10:32 पर। कार्यक्रम जयमाला प्रसारित होगा शाम 7:00।

हवा महल कार्यक्रम में रात 8 बजे आप सुनेंगे नाटिका बड़े दिनों बाद। कार्यक्रम चित्रलोक होगा रात 8:15 पर।

रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर होगा कार्यक्रम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम संगीतकार शंकर जयकिशन के शंकर पर केंद्रित रहेगा। कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे रात 10 बजे।

107.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से और उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।

प्रतिनिधि मंडल के साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने आज स्वीडन के विदेश व्यापार मंत्री बेंजामिन डोसा से मुलाकात की। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू किए गए प्रयासों को आगे बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मई 2025 में भारत और स्वीडन के बीच संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिला था, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों का व्यापार और निवेश दोगुना करने का लक्ष्य है। वर्तमान में भारत में कई स्वीडिश कंपनियां काम कर रही हैं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री आज इंडिया स्वीडन इनोवेशन डे को संबोधित करेंगे और ऊर्जा, रियल एस्टेट, रक्षा व ऑटोमोबाइल जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने तथा आधुनिक शहरी प्रबंधन के लिए उद्योग जगत के दिग्गजों और संभावित निवेशकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से चंडीगढ़ स्थित आवास संत कबीर कुटीर पर रूस के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस बैठक में राज्य को ड्रोन निर्माण और एयरोस्पेस के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने पर व्यापक चर्चा हुई। चर्चा का मुख्य केंद्र हिसार के हांसी स्थित सिसाय में स्थापित ड्रोन सिटी हरियाणा रहा, जहां दो प्रमुख भारत रूस संयुक्त उद्यमों की रूपरेखा पर विचार किया गया। पहला प्रस्ताव रूस की कंपनी ओमनीटेक LLC और AVPL इंटरनेशनल के बीच सहयोग का है, जिसके तहत सिसाय में उन्नत हेलीकॉप्टर ड्रोन निर्माण इकाई स्थापित की जाएगी। इन मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोनों की उड़ान क्षमता 250 किलोमीटर तक और भार वहन क्षमता 200 किलोग्राम तक होगी, जिनका उपयोग औद्योगिक, लॉजिस्टिक्स और आपदा प्रबंधन में किया जा सकेगा। दूसरा प्रस्ताव 4GNSS LLC के साथ उन्नत नेविगेशन तकनीक विकसित करने को लेकर है। इसके जरिए ऐसी तकनीक तैयार की जाएगी जो GPS संकेत न मिलने पर भी भारतीय सेमीकंडक्टर चिप्स की मदद से ड्रोन को सुचारू रूप से संचालित करने में सक्षम होगी। इस 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में रूस और भारत के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद किया गया है। समिति गन्ने के किसानों के लिए लाभकारी मूल्य में वृद्धि की मांग की समीक्षा करेगी, जिसमें खेती की लागत और अन्य प्रासंगिक विषय शामिल होंगे। या चीनी उत्पादन लागत, बाजार में मिलने वाले दाम और चीनी मिलों की वित्तीय क्षमता के संदर्भ में चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में संशोधन की मांग की भी समीक्षा करेगी। जांच के अन्य प्रमुख बिंदुओं में शुगर रिकवरी के टेस्टिंग और रिपोर्टिंग के लिए मौजूदा तंत्र और चीनी मिलों में गन्ने का वजन करने के मौजूदा तरीके भी शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री ने भी संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि किसानों को फसल बिक्री के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। चंडीगढ़ में कार्यक्रम के दौरान बातचीत करते हुए राज्य मंत्री ने बताया कि हाल ही में सभी जिला खाद्य एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडियों में पहुंच रही फसल और खरीद व्यवस्था की उच्च स्तर पर समीक्षा की गई थी। कुछ निचले इलाकों में नमी की शुरुआती समस्या को तुरंत दूर कर लिया गया है और आगामी मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए भी सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

प्रस्तुत है फिल्म पेइंग गेस्ट से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में ये गीत। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं एसडी बर्मन।

0: पाइल्स हॉस्पिटल कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आइए सुनते हैं फिल्म पड़ोसन से किशोर कुमार, मन्ना डे और महमूद की आवाज में ये गीत। संगीत है SD बर्मन का और गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण।

0: घोड़े या घोड़ा बोला। इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
2: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
3: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
2: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
4: भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
0: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

0: नया दौर फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी ने इस गीत की रचना की थी और तर्ज बनाई थी ओपी नैयर ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम सुरीला सफर और अब लेते हैं एक संदेश। वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। तो श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और हम आगे बात करने जा रहे हैं। श्रोताओं के संदेश पहले लेते हैं कि श्रोता कह रहे हैं कि जब भी नया दौर का गाना ये वाला जो है बजता है तो हमारे टीचर जब हमें पढ़ाते थे तो बोला करते थे कि पानी लेने के बहाने आ जा, बातें छोड़ दो और पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। क्या बात है। देखिए शरारतीपन हम लोग बचपन में बहुत दिखाया करते थे लेकिन टीचर की डांट से ही हमने सीखा कि ये शरारतें हमें कैसे और कब नहीं करनी चाहिए, है ना। एक श्रोता ने कहा है कि गरबा खेलने का शौक बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी खूब होता है। मेरी 4 साल की नातिन रोज गरबा खेलने के बहाने डांस करती है और इस नवरात्रि के त्योहार का आनंद लेती है। क्या बात है। एक श्रोता ने कहा है कि नया दौर दिलीप कुमार वैजंती माला ओपी नैयर जी, उन्होंने इस गीत की डिटेल हमें भेजी है। एक श्रोता कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने हमें गीत लिख कर भेजे हैं जो हमारी इबारत से आज उन्होंने बूझ लिए हैं। जी हाँ ऐसे ही हमारे और भी कई श्रोता हैं जिन्होंने गीतों को बूझ लिया है और हमें लिखकर भेज रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारी एक श्रोता कह रही है कि गरबा मेरे शहर वडोदरा की शान है, वडोदरा की सांस्कृतिक पहचान और उसकी आत्मा को दर्शाता है जिसे गुजरात की सांस्कृतिक

0: राजधानी भी कहा जाता है। नवरात्र के 9 दिनों के दौरान यह उत्सव परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम पेश करता है, जहां भव्य कमर्शियल ग्राउंड्स और पुरानी गलियों के पारंपरिक गरबे दोनों ही देखने को मिलते हैं। संक्षेप में, यह त्योहार बड़ोदरा के नागरिकों को एकता और आस्था के सूत्र में पिरोता हुआ वाकई शहर की आन बान और शान साबित होता है। बिल्कुल नवरात्रि का त्योहार ही ऐसा है जो हम सबको एक सूत्र में बांध देता है। ऐसे ही हमारे और भी श्रोता हैं जिन्होंने गीत की डिटेल्स हमें भेजी है, नया दौर। जी हाँ, और इसी तरह अगली जो हमारे श्रोता हैं वो कह रही हैं कि नया दौर दिलीप कुमार वैजंती माला, इस गाने में वैजंती माला जी ने जो लहंगा चोली पहने हैं वह लहंगा का चोली के डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया। क्या बात है जी, हमें भी जब भी हम देखते हैं वैजंती माला जी को हमें तो उनका अंदाज़ बहुत पसंद आता है। इसे कच्छी या सिंधी कढ़ाई बोलते हैं ऐसा भी उन्होंने बताया। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोता, अब देखिए ऐसे माहौल में क्या होता है कि कभी कभी ऐसे अलबेले भी मिल जाते हैं जो शरारत करते हैं, छेड़खानी के अपने अंदाज से सबका मन बहलाते हैं। ऐसे चंचल, अलहड़ और शरारती मिजाज वालों से थोड़ा सावधान तो रहना ही चाहिए, है ना, क्योंकि वो बेईमानी भी इसी रंगीन अंदाज में कर जाते हैं। ऐसे भंवरों से तो जरा बच के ही रहना चाहिए। अच्छा, आप बताइए, भंवरा जो कलियों के पास जाता है ये तो उसका व्यवहारिक काम है, क्या इंसानों को ऐसी बेईमानी शोभा देती है? अच्छा, जो गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसमें बात तो भंवरे की ही हुई है। ये जो एक सखी है दूसरी सखी को ये बता रही है कि इस भंवरे से थोड़ा बच के, पर तुझे कैसे बताऊं। अच्छा, जो ये गीत हम बजाएंगे, बताइए इस फिल्म का नाम क्या है और कौन है वो भंवरा इस गीत में जिनका अब जिक्र आप हमसे करने वाले हैं।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

हमारे श्रोताओं ने उन सवालों के जवाब भी हमें भेजे हैं जो हमने नहीं पूछे, लेकिन हमें तो आपका ये अंदाज भी बड़ा पसंद आता है। आपने फिल्म का नाम और संगीतकार गीतकार के नाम भी हमें लिखकर भेजे हैं। जी हाँ, ये था मंचली फिल्म का गीत। लता मंगेशकर की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। एक श्रोता कहते हैं कि इश्क उम्र और शक्ल सूरत देखकर नहीं होता, पता नहीं चलता कि कब हो गया है। और इसी तरह से कई श्रोताओं ने हमें फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम भी लिखकर भेजे हैं जो गीत अभी हमने आपको सुनवाया। इसी तरह एक श्रोता कह रहे हैं कि बहुत अच्छा गीत है, लता जी की आवाज़ में बहुत दिनों के बाद सुनने को मिला यह गाना, तो अच्छा लग रहा है। हमें यह फिल्म का नाम तो नहीं पता, लेकिन हमारे श्रोताओं को अवश्य पता होगा, तो हमने अभी अभी तो नाम लिया है, अब तो आपको पता चल गया है, है ना। इसी तरह हमारे एक श्रोता कहते हैं कि उन्होंने भी ये जानकारी हमें दी है कि मंचली कली है लीना चंदावरकर और भवरा है इसमें संजीव कुमार। क्या बात है, हमने तो यही पूछा था कि भवरा कौन है, और इन्होंने बिल्कुल सही जवाब हमें लिखकर भेजा है कि कली कौन है और भवरा कौन है। जी हाँ, संजीव कुमार इस गीत में भवरा है जिसकी बात कर रही है लीना चंदावरकर जी। ऐसे ही कुछ श्रोता कह रहे हैं कि गरबा के गीत शुरू होते ही बच्चे तो नाचते ही हैं, बुजुर्गों के पैर भी बैठे बैठे ही मस्ती में थिरकने लगते हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि इश्क के लिए दुनिया से ये तोहमत लगाती है कि जो इश्क करे वो पछतावे और जो इश्क ना करे वो भी पछतावे। दुनिया वालों के लिए मेरा तो यह विचार है कि सच्चा इश्क ज़रूर करें, वो भी सिर्फ एक से, जो हम सफ़र भी हो और मरते दम तक उसी से इश्क करते रहें। क्या बात है, बहुत ही शानदार आपने ये संदेश सबके साथ साझा किया है। इस तरह एक श्रोता ने कहा है कि फिल्म नया दौर के इस गाने तथा अन्य गानों में नृत्य निर्देशन यानी कोरियोग्राफी के गीतकार और बाद में संगीतकार बने श्री प्रेम धवन जी ने, जिन्होंने संगीतकार ओपी नैयर को अपने मुंबई के शुरुआती दिनों में अपने घर में रखा था। बहुत धन्यवाद इस जानकारी को साझा करने के लिए। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत जो है शरारत और बेचैनी से आगे बढ़ते हुए इश्क के उस सुकून की ओर हमें लेकर जाता है जहां हम सच में कह ही बैठते हैं कि हाँ नैना तो लड़ ही गए हैं। अब ये गाना तो है उमंग से भरा, प्रेम और इश्क को समर्पित। आप बताइए इस गीत के गीत में कई सारे त्योहार और नृत्य के रूप दिखाए गए हैं, तो आप बताइए कि आपको कौन सा त्योहार सबसे ज़्यादा पसंद है।

0: जब सीलन से छुटकारा पाना हो और घर ऑफिस को सजाना हो तो आज ही आइए अरुण अप्लाई।
1: WPC, PVC, वॉल पैनल, सीलिंग, एक्शन जैसा वुडन फ्लोरिंग, HDH, MR बोर्ड, सनमाइका और प्लाईवुड के लिए अरोड़ा प्लाईवुड एट SCO 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
2: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
3: फिल्मों में सबसे बढ़िया फिल्माएं गीतों में शुमार हैं। लता जी की वहीदा रहमान जी का अभिनय देखने लायक है। मेरी लिस्ट का चौथा गीत शामिल हो गया है, क्या बात है। एक श्रोता ने कहा है कि वाह, ये तो मेरा पसंदीदा गीत है, अभिनेता देवानंद और अभिनेत्री वहीदा रहमान का फिल्म गाइड का गीत। जी बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कह रहे हैं कि मुझे बिना शोर शराबे वाले त्योहार पसंद है। जी तो श्रोताओं, अगले गीत की ओर हम बढ़ें, उससे पहले आपके कुछ कमेंट्स और ले लेते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि साहिबा को कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए हार्दिक बधाई, हार्दिक आभार, धन्यवाद। नवरात्र में हम बिहार की कस्बे में बाला त्रिपुर सुंदरी के मंदिर जाते हैं। भारी संख्या में हमारे बिहार में भी कुछ नगरों में अब गरबा नृत्य का आयोजन होने लगा है। तो इसी कई श्रोताओं ने हमसे साझा किया है इस गीत की डिटेल्स को, और साथ ही अपना नवरात्रि का त्योहार वो किस तरह मनाते हैं, किस उमंग के साथ में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं।

हमारे श्रोता कह रहे हैं कि अभिनेत्री फिल्म का ये गीत है और हेमा मालिनी और शशि कपूर इसमें अभिनेत्री और अभिनेता हैं। बिल्कुल सही जवाब। हालांकि हमने तो कोई प्रश्न ऐसा पूछा नहीं, लेकिन आप उसके बावजूद भी जब अपने जवाब इस तरह से गीत की डिटेल हमें भेजते हैं तो हमें सच में बहुत अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद। हमारी एक श्रोता ने कहा भी है कि मेरा भी कमेंट शामिल कीजिए। तो देखिए, आपका कमेंट भी शामिल हो गया है। आपने इस गीत की जानकारी हमें भेजी है कि ये फिल्म अभिनेत्री से गीत है। एक श्रोता कह रहे हैं कि ये सभी गीत मेरी युवावस्था के हैं। उस समय मन कोमल होता है और गीत को अपने मन में समा कर अपने आप को ही नायिका समझ लेती थी और आंख बंद कर डूब जाती थी। क्या बात है। एक श्रोता गाने का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि वाह क्या बात है, लता दीदी के गाए इस बेहतरीन गीत के लिए उन्होंने हमें धन्यवाद भी कहा है और हम भी आपको धन्यवाद कह रहे हैं हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहने के लिए। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए पेश करने जा रहे हैं, सुनिएगा।

जी हाँ, यही था हमारी इबारत का आखिरी गीत। और इस फिल्म का नाम हमने पूछा तो हमारे श्रोताओं ने भी हमें सही जवाब लिख भेजे हैं। दिल ही तो है, यही है फिल्म का नाम। आशा भोसले और साथियों के स्वरों में ये गीत, साहिल लुधियानवी की रचना, रोशन का संगीत। देखिए, कार्यक्रम का वक्त भी तो हो चला है। अब आज्ञा दीजिए पूजा नारानिया को। नमस्कार।

आज के त्रिवेणी में सेहत की बातें। आज की भागम भाग वाली आधुनिक जीवन शैली में सेहत एक जरूरी मुद्दा बन गया है। दरअसल हमारे जीवन शैली में आगे निकलने की प्रतियोगिता बढ़ी है, तनाव बढ़ा है, जिसका सबसे खराब असर हमारी सेहत पर पड़ता है। लेकिन अब लोग अपनी सेहत को लेकर पहले से ज्यादा सचेत रहने लगे हैं, इसलिए अक्सर लोगों को पार्कों में घूमते, टहलते, दौड़ते और व्यायाम करते देखा जा सकता है। तो चलिए हम भी चलें।

सेहत का ध्यान रखना एक चुनौती जरूर है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि किया ना जा सके। कुछ छोटी छोटी बातों पर यदि ख्याल रखें तो हम हमेशा फिट बने रह सकते हैं। यदि हम सुबह जल्दी उठें, ताजी हवा में टहलें और कुछ देर सूरज की किरणों के सामने बैठे रहें, साइकिलिंग करें, दौड़ लगाएं, नृत्य करें, सीढ़ियां चढ़ें और जिन बातों से स्ट्रेस होता है उनसे दूर रहें। इस तरह अपने भीतर की खुशी को अभिव्यक्त करते हुए हमारी जीवन की गाड़ी चल पड़ेगी।

पूछा बोल तेरा नाम क्या, तो हंस के वो बोली नाम से है काम।

Yeah.

0: म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती है।
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
0: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 2:15 का समय होने वाला है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की पांच प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिंदू पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। श्री शाह ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हुआ। हिमालय क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने लास वेगास में आयोजित अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की पांच प्रमुख विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करने के दौरान

0: खान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।

0: बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: इन परियोजनाओं में लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालतसी ट्रांसमिशन लाइन तथा लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जलाशयों का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसके विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
0: यहाँ के युवाओं ने आइस हॉकी, विंटर स्पोर्ट्स और पर्वतारोहण जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। मुझे खुशी है कि लद्दाख में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में ग्रीन हाउस खेती को भी बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अब 11,000 ग्रीन हाउस हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए जनजातीय समुदाय को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ में दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों के जीवन को फिर से संवारने, उन्हें सहायता देने और सम्मान के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए प्रयास कर रही है।
2: नरेंद्र मोदी

0: अर्थात नक्सलवाद समाप्त हो चुका, मगर नक्सलवाद समाप्त होने से ये पांच दशकों की पीड़ा को हम समाप्त नहीं कर सकते। वो पीड़ा ने जहाँ जहाँ गांव दिया है वहाँ हमें मरहम लगाना पड़ेगा, उनको खड़ा करने का प्रयास करना पड़ेगा और वो सम्मान के साथ जीवन जी पाए इसकी व्यवस्था कर।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय भाषाओं से संबंधित कार्य समूह की बैठक आयोजित की। ये बैठक हाइब्रिड कार्यशाला के रूप में हुई जिसकी अध्यक्षता जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने की। श्रीमती चोपड़ा ने बैठक को संबोधित करते हुए जनजातीय समुदायों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुँच बढ़ाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में भाषा के महत्व पर जोर दिया। बैठक में देशभर के प्रमुख भाषाविदों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और जनजातीय समुदायों के भाषा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि हिंदू धर्म से इस्लाम या अन्य गैर हिंदू धर्मों में धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा नहीं कर सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि पूर्व के सामाजिक पिछड़ेपन को धर्मांतरण के बाद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एक रिपोर्ट।
3: न्यायालय ने कहा कि गैर हिंदू सामाजिक व्यवस्था में धर्मांतरण स्वतः किसी अधिसूचित पिछड़े वर्ग समुदाय की सदस्यता प्रदान नहीं करता। न्यायालय ने कहा कि संविधान की अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत वैधानिक लाभ केवल किसी व्यक्ति की धर्मांतरण पूर्व स्थिति के आधार पर नहीं दिए जा सकते। न्यायालय ने दोहराया कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है। ये फैसला मार्च 2024 के तमिलनाडु सरकार के एक आदेश से संबंधित याचिका के जवाब में आया है जिसमें दूसरा धर्म अपना चुके लोगों को आरक्षण लाभ देने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजी धार्मिक निकाय वैधानिक अधिकारों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं और हिंदू धर्म में पुनः धर्मांतरण के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र तथ्य आधारित विशिष्ट सत्यापन की आवश्यकता होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को

0: स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
1: ऐसा कहा जाता है कि ओनली डेड है सीन इन द वार। यह विचार एक और हमें युद्ध की निरर्थकता और उससे होने वाली अपार मानवीय क्षति का एहसास कराता है, तो दूसरी ओर यह भी याद दिलाता है कि युद्ध की संभावनाएं कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं और हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इन्होंने कूटनीतिक निंदा के बजाय सक्रिय कार्रवाई करने के राष्ट्र के दृष्टिकोण में निर्णायक बदलाव को दर्शाया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आतंकवाद के हर स्रोत तक पहुंचकर उसका खात्मा करना है। श्री सिंह ने सीमा पार आतंकवाद पर भारत का रुख दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान से होने वाली किसी भी आतंकवादी गतिविधि का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक के कारवार स्थित कदम नौसैनिक अड्डे पर स्वदेशी पोत समर्थक को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल होने वाला पहला स्वदेशी बहुद्देशीय पोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
2: सरकार के एक प्रमुख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में पानीपत से की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेल्फी विद डॉटर के जनक जींद जिले के बीबीपुर गाँव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वजह से बेटियों की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी है।
3: अगर हम देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से पहले हरियाणा का लिंगानुपात कम था, हरियाणा में लड़कियों की साक्षरता दर कम थी, हरियाणा की लड़कियां विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत कम पढ़ती थी, लेकिन अगर आज हम देखें तो हरियाणा की लड़कियां करीबन 75% साक्षरता है, जो कि करीबन 64% 2014 से पहले होती थी। उसके साथ ही अगर हम बात करें लड़कियों के स्वास्थ्य को लेकर, कुपोषण को लेकर, वो दर भी लगातार घट रही है। इसके साथ ही हम खेलों में लड़कियों की भागीदारी देखें तो 6200 सभी गांवों में आज के दिन खेल नर्सरियों में लड़कियां पहुंच रही हैं, तो खेलों में लड़कियों की भागीदारी करीबन 60% ज्यादा बढ़ चुकी है। लिंगानुपात जो 879 हरियाणा का होता था वो 920 925 930 तक आज के समय चला जाता है। और खास बात ये रही कि कन्या भ्रूण हत्या पर भी रोक लगी है।
2: उल्लेखनीय है कि सुनील जागलान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा से देश सेवा की भावना के साथ शुरू किए गए सेल्फी विद डॉटर अभियान का बेटियों के प्रति नजरिया बदलने में बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री ने इस अभियान को राष्ट्रव्यापी अभियान में बदल दिया। दूर दराज क्षेत्र से निकला यह अभियान अब एक वैश्विक अभियान बन चुका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 से पहले विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिला शक्ति की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।
4: महिलाएं पीछे रह जाते थे आर्थिक रूप से, केवल परिवार का देखभाल, परिवार का सहयोग ही करते थे, छोटे छोटे चीजों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते थे, लेकिन आज वो आत्मनिर्भर बन गए। केवल आत्मनिर्भर नहीं, दूसरों का भी और सहारा देने वाले बन गए। ये केवल उनके इनकम नहीं।

0: ये देश का आर्थिक समृद्धि, देश का महिलाओं का विकास भी ये समाहित है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉ जयशंकर ने ये बात कही। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी 21 तारीख तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में सोमवार तक तेज वर्षा का अनुमान है। इस बीच जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आज बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा और ओलावृष्टि का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अमेरिका के लास वेगास में आज पुरुषों के 55 किलो भार वर्ग के फाइनल में एक रोमांचक मुकाबले में विश्वजीत को मामूली अंतर 12-13 से जॉर्जिया के कोबा कारुमित्ज़े से हार का सामना करना पड़ा। श्री रामचंद्र मोर अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन के फाइनल में पहुंचने और पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिंदू पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सदाबहार नगमे में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

ये गीत अभी आपने सुना फंटुश फिल्म से आशा भोसले की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल थे, तर्ज बनाई थी एसडी बर्मन ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: जज्बात की नरम छांव, प्यार की जुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया। जंगली है इस फिल्म का नाम, शैलेंद्र के बोल हैं और तर्ज शंकर जयकिशन की।

अब सुनिए मोहम्मद रफी को घराना फिल्म के इस गीत में। शकील बदायूनी ने इस गीत की रचना की है और संगीत बद किया है रवि ने।

0: की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम

0: कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाऊं
0: एक उत्तम जीवन की कहानी।

0: सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, एसएच बिहारी के बोल ओपी नैयर का संगीत, फिल्म का नाम कश्मीर की कली।

बड़ा आदमी इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत की रचना की है प्रेम धवन ने, संगीत पर किया है चित्रगुप्त ने और आवाजें हैं उषा मंगेशकर और कमल बारोट की।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जब आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं जो कि है कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति सीआईडी फिल्म से। गीता दत्त की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

सीआईडी फिल्म से गीत आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज में, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को, नमस्कार।

0: सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। मेरे सामने बैठी हैं हंसती मुस्कुराती सी आरती।
2: मंदाकिनी जी आपको और साथ में सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: नमस्कार, कैसी हो आरती?
2: बहुत बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि ये समय नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, पूजा पाठ और साथ में इतना बढ़िया जो गरबा सब तरफ हो रहा है, चकाचौंध रोशनी ही रोशनी है, झालरें लगा रखी है, लोगों ने सजावट इतनी अच्छी कर रखी है हर सोसाइटी में हर घर कि मतलब बहुत अच्छा लगता है। और जो हवन की जो सुगंध आती है ना, सच में एकदम बहुत अच्छा लगता है।
1: सबसे बड़ी बात तुमने कहा कि जो हम जब पूजा या अर्चना करते हैं, जिसे कहते हैं हम एक विश्वास किसी शक्ति को मान के जब चलते हैं और पूजा अर्चना में लीन होते हैं, तो एक अदम्य शक्ति हमें प्राप्त होती है और हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं, ऊर्जावान हो गए हैं। नहीं तो जिंदगी कई बार बड़ी सुस्त सी चलने लगती है, लेकिन इन दिनों हर इंसान जो है अपने आप में एक अलग ही एनर्जी महसूस कर रहा है,
2: क्योंकि त्योहार की जो एक खासियत है ना वो यही है कि आपको एक अलग सी एनर्जी एक अलग सी ऊर्जा से भर देता है वो। आप बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं, नौ व्रत रखते हैं कुछ लोग तो लेकिन ऐसा लगता है ना कि उनके अंदर एनर्जी की ऊर्जा की कोई कमी नहीं बल्कि और आ गई ऊर्जा
1: बढ़ गई है। बिल्कुल सही बात कहा आपने कि 9 दिनों तक जब हम किसी तरह का उपवास करते हैं और माता को याद करते हैं और हमें लगता है कि जो रोजमर्रा का भोजन है उसे थोड़ा सा हम त्याग देते हैं और फलाहार की ओर बढ़ जाते हैं, तो एक अलग किस्म की शांति का।
2: और हम तो यही कहेंगे आप फलाहार ही ले, बहुत ज्यादा तला भुना, क्योंकि रहता है ना कि जब व्रत है तो बहुत तली तली ऐसी चीजें बनती हैं, आलू भी बनाएंगे तो तल तल के एकदम से बनाएंगे तो वो बहुत ज्यादा तला हुआ चीजें मत खाइए, इससे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है।
1: कई बार क्या होता है फलाहारी आटे की हम पूड़ियां तल लेते हैं, मठरियां बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, और बाजार में भी कई शहरों में बाजार में भी फलाहारी मिर्ची बड़े फलाहारी समोसे मिलते हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई व्रत है तो इन दिनों इन्हें ही खाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने व्रत किया उपवास किया है तो थोड़ा सा इन चीजों से दूरी बनाए रखिए और फलाहार करिए,
2: बिल्कुल इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे पूरे और एक ऊर्जा भी आपको बहुत अच्छी से महसूस होती रहेगी, तो क्योंकि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है, तभी हम इस त्योहार का मजा भी ले सकते हैं और डांडिया खेल सकते हैं, खूब मजे से गरबा खेल सकते हैं।
1: सही बात है, जो है सब तरफ जो है डांडिया की धूम मची हुई है
2: जी हां,
1: और बड़ा अच्छा लग रहा है इन दिनों। और अब अच्छा लगेगा हमें ये जानकर कि आज हमारे श्रोताओं के साथ हम क्या बातें करने वाले हैं।
2: तो आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है, पहले तो हम लेके आए हैं माता पिता से दूरी बनाते हुए बच्चे, जो आजकल ट्रेंड सा चल गया ना कि बच्चे भी जहां थोड़े से टीनेज में भी यहां तक आ जाते हैं, 17, 18, 19 साल के हुए नहीं, कि उनको लगता है अब हम अकेले रहे, अब हम क्यों किसी बंदिश में रहे, उनको लगता है माता पिता के साथ रहना यानी बंदिश में रहना, तो अलग रहने की उनको इच्छा होने लगती है कि हम अलग रहें अपने तरीके से रहें और बाहर हम अपना जॉब करें या कुछ भी करें, तो ये जो आज देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा ऐसा देखने को मिल रहा है। और साथ ही हम लेकर आए हैं कहानी पद्मश्री की, उसके अंदर हम लेकर आएंगे आज बीरू बाला रभा जी के बारे में बात करेंगे, हम उनकी चर्चा करेंगे
1: जो समाज सेविका
2: है, समाज सेवा में जिनका नाम है, और साथ ही हम बात करेंगे मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना में हम बात करेंगे अपने ग्रामीण अंचल लोकोक्तियां, तो हम बहुत सारी जानते हैं लेकिन जो ग्रामीण ठेठ ग्रामीण वाली जो होती हैं वो लोकोक्तियां कौन सी हैं।
1: अरे तो हमारे ग्रामीण श्रोता जो हमें सखियां सुन रही हैं वो तो बता देंगे,
2: बिल्कुल बताइए
1: किस तरह की लोकोक्तियां बोली जाती हैं,
2: कौन से गांव में, या बहुत सारे लोगों को मालूम होता है ना कि कौन की गांव की जो लोकोक्ति है बहुत प्रसिद्ध है, तो उनको ऐसी कौन सी पता है जो बहुत प्रसिद्ध है उसके बारे में आप बताइए। और साथ ही हम बात करेंगे उपयोगी टिप्स की, क्योंकि देखिए त्योहार चल रहे हैं और जब गरबा होता है ना तो जब सब महिलाएं ऐसी सुंदर सुंदर लड़कियां सब इतनी सुंदर सुंदर सज के आती हैं, तैयार होकर आती हैं ना, लगता है कि सब अप्सराएं जमीन पर उतर आई हैं, तो वो उसके लिए हम लेकर आए घरेलू नुस्खे जो रखेंगे सुंदर त्वचा आपकी।
1: अरे आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता है ना, तो कैसे रखें इस त्वचा को खूबसूरत, इस पर कुछ उपयोगी टिप्स हमारे श्रोता हमें देंगे।
2: बिल्कुल बताइए आप हमें अपने, क्योंकि उनको पता है भाई गरबा में ऐसे ही थोड़ी ना अपनी शान
1: दिखाते हैं, चमकती त्वचा के साथ जब हम जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस अलग ही होता है ना। तो चलिए

0: बहुत अच्छा गीत था आरती और माता का ध्यान तो हम इन दिनों कर ही रहे हैं। वैसे तो हर दिन माँ हमारे ख्यालों और ख्वाबों में रहती ही है ना, लेकिन इन 9 दिनों में खास अर्चना हम करते हैं। और देखिए, तुमने कहा कि आजकल जो बच्चे हैं वो माता पिता से दूरी बना रहे हैं, या उनके मन में एक समय बाद आता है कि वे अलग रहना चाहते हैं, दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं, तो ये चीजें थोड़ा सा माता पिता के मन को तोड़ देती हैं।
1: बिल्कुल, उनको लगता है ना कि अब हम अपने जो अपने हमारे बच्चे हमारे साथ रहे, हमारे पास रहे हर वक्त, क्योंकि बचपन से उनको पाला, उनको उनके साथ में,
0: और उनका अधिकार होता है उन पर, उनके लिए एक फर्ज बनता है, बच्चों के लिए, बच्चों के मन में होना चाहिए कि माता पिता के साथ हमें रहना है। और भले ही उनका विवाह हो गया है, पत्नी हो गई है, पत्नी आ गई है, बच्चे हो गए हैं, लेकिन अगर वो माता पिता से अलग रहने का सोचते हैं तो माता पिता की जो सारी ख्वाहिशें हैं, जो बच्चों के लिए बुने हुए ख्वाब होते हैं, वो टूट जाते हैं, है ना। तो कहते हैं कि दुनिया में सबसे निस्वार्थ रिश्ता जो है माता पिता का होता है, और ये ऐसा रिश्ता है जिसमें बच्चे की एक मुस्कान के लिए माँ अपनी थकान भूल जाती है, और जो पिता है वो अपनी परेशानियों को अनदेखा करके परिवार की खुशियों के लिए भी निकल पड़ते हैं सुबह से शाम तक। और जिस बच्चे की पहली आवाज पर माँ दौड़ी आती है, आज उसी बच्चे की आवाज सुनने के लिए माँ को कई बार फोन करना पड़ता है।
1: बिल्कुल, और जिस पिता की उंगली पकड़कर बच्चा चलना सीखता है, उम्र के एक पड़ाव पर उसी पिता को बच्चे के साथ 2 कदम चलने के लिए उससे समय मांगना पड़ता है। और कभी कभी तो घर में सब साथ में रहते हैं लेकिन बातचीत केवल इतनी होती है, खाना खा लिया, हाँ पैसे चाहिए, भेज दीजिए, बस बातचीत खत्म। रिश्ता ऑनलाइन और भावनाएं ऑफलाइन।
0: बिल्कुल सही कहा आरती, आज की दुनिया पहले से बहुत बदल गई है। पढ़ाई की बात करें, नौकरी, प्रतियोगिता, महानगरों के जो

0: भागदौड़ है और फॉरेन में बसने की जो ये चाहत है, इन सब ने परिवारों की जो जीवन शैली है उसको बिल्कुल ही बदल दिया है। पहले कई पीढ़ियां एक ही घर में रहती थी, दादा दादी की कहानियां होती थी, माँ की रसोई की किस्से, पिता की सीख और भाई बहनों की नोक झोंक और रोजमर्रा की जिंदगी का ये हमारा हिस्सा होता था। लड़ाई झगड़ा, तू तू मैं मैं, बच्चे भाई बहन, इतनी चिल्लपों,
1: लड़ते झगड़ते हम लोग बड़े हो गए,
0: बिल्कुल।
1: और वो चीज एक अलग ही होती थी। और आज जो छोटे परिवार हैं, बच्चे पढ़ाई और नौकरी के लिए दूसरे शहरों में जा रहे हैं, ऐसे में माता पिता से जो दूरी हो जाती है ना, वो हमेशा भावनात्मक दूरी का संकेत नहीं होना चाहिए। लेकिन आप, हो सकता है कि आपको पढ़ाई करने के लिए या किसी चीज के लिए जाना पड़े, लेकिन वो दूरी सिर्फ ऐसी होनी चाहिए कि हाँ आप गए लेकिन मन से दूर नहीं हुए। लेकिन आजकल क्या है ना कि बच्चे मन से भी दूर होते जा रहे हैं। कई बच्चे दूर रहकर भी अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखते हैं। आज मोबाइल पर हमारे सैकड़ों संपर्क हैं, सोशल मीडिया पर हजारों मित्र हैं, लेकिन कभी कभी अपने माता पिता के पास बैठकर 10 मिनट बात करने का भी हमारे पास समय नहीं होता।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। और हम दुनिया भर की तस्वीरों पर अपनी राय देते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं, खुश होते हैं, लेकिन माँ की बात पर सिर्फ इतना कहते हैं, मम्मी बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ, बाद में बात करता हूँ। खासतौर से बेटे, उनके लिए ज्यादा हम कहेंगे कि वो बात कब आता है उनका, इसका तो जवाब न तो माँ के पास होता है, न उस बच्चे के पास होता है। और एक बड़ा घरों में एक आर्थिक और बड़ा दिलचस्प दृश्य भी देखने को मिलता है कि माँ कहती है, बेटा जरा मेरे पास बैठ जा, तुझसे कुछ बात करनी है, तो बेटा कहता है, मम्मी 5 मिनट बस।
1: और मजे की बात यह है कि माँ के 5 मिनट में जो माँ मांगती है, 5 मिनट में चाय भी बन जाती है, 2 बार गैस बंद हो जाती है, पड़ोस की खबर आ जाती है, लेकिन बेटे के 5 मिनट में मोबाइल की बैटरी 10% और कम हो जाती है। और जब माँ पूछती है किससे इतनी बातें कर रहे हो, तो जवाब मिलता है बस दोस्तों से। माँ मनी मन सोचती है, काश मैं भी अपने बेटे की दोस्ती होती।
0: हाँ, दोस्त बनते हैं माता पिता, लेकिन बच्चे जो है कहाँ बात करना पसंद करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है।
1: बिल्कुल।
0: और ये बातें सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकती। अक्सर माता पिता कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम हमारी बात भी नहीं मानते। तो इन बातों के पीछे जो है उनकी चिंता है, उनके अनुभव है, सुरक्षा की भावना है, ये छुपी होती है। मगर जब बातचीत बार बार शिकायत या में बदल जाती है, तो बच्चे भी अपनी बात कहना बंद कर देते हैं। ये दूसरा सिक्के का दूसरा रूप है।
1: बिल्कुल,
0: तो कई बार ऐसा भी होता है।
1: जी बिल्कुल। और याद रखिए, प्यार में अधिकार हो सकता है, लेकिन संवाद में सम्मान भी बहुत जरूरी है। बच्चों को स्वतंत्रता चाहिए और माता पिता को भरोसा। दोनों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हर नई पीढ़ी का अपना अपना समय होता है, अपनी चुनौतियां होती हैं और अपने सपने होते हैं। उसी तरह माता पिता के पास जीवन का अनुभव होता है, जिसे अनसुना करना भी अच्छा नहीं है।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है। और समस्या पीढ़ियों के अलग होने में नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझने की जो कोशिशें हम बंद कर देते हैं ना, वो बहुत दिक्कत है। रिश्ते में दूरी झगड़े से नहीं है, जो दूरी है हमेशा झगड़े से नहीं आती है। कई बार क्या होता है, सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन बातचीत धीरे धीरे कम हो जाती है। बच्चे अपनी खुशियों में, परेशानियों में माता पिता से साझा करना उस बात को बंद कर देते हैं, और घर में एक सन्नाटा सा पसर जाता है।
1: बिल्कुल। और माता पिता अपनी भावनाएं बताने के बजाय चुप रहना शुरू कर देते हैं, और फोन पर बातचीत केवल जरूरी कामों और पैसों तक सीमित हो जाती है। परिवार के जो सदस्य हैं, एक साथ होते हुए भी एक दूसरे के लिए समय नहीं निकालते। छोटी छोटी बातों पर संवाद करने के बजाय क्या करते हैं, वो नाराजगी होने लगती है, गलत फहमियां बढ़ने लगती हैं। और हालांकि इन संकेतों का अर्थ ये नहीं कि हर परिवार में रिश्ता बिगड़ ही रहा है।
0: हाँ नहीं, ऐसा नहीं, रिश्ता नहीं बिगड़ रहा, लेकिन खुशियां भी नहीं आ रही, मन खुश नहीं रहता है, मन भारी रहता है। तो कभी पढ़ाई का तनाव हो सकता है, कभी नौकरी का दबाव हो सकता है, व्यक्तिगत परेशानियां हो सकती हैं, पुराने मतभेद भी जो है हमारे संवादों को, बातचीत को प्रभावित करते हैं आरती। इसलिए तुरंत आरोप लगाने के बजाय प्यार से हमें पूछना चाहिए कि क्या बात हो गई, सब ठीक तो है ना, क्या तुम किसी परेशानी से निकल रहे हो, गुजर रहे हो, या मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। कभी कभी किसी को समाधान नहीं, सिर्फ एक सुनने वाला चाहिए होता है, जो हमें नहीं मिलता।
1: बिल्कुल। और इन छोटे सवालों में अपनापन छिपा होता है। दूरी को केवल किलोमीटर से मत मापिए कि वो उतनी दूर है, उतने किलोमीटर दूर है। और बच्चे दूसरे शहरों या देशों में रहते हैं, वो नियमित फोन कॉल, वीडियो कॉल, त्योहारों पर मुलाकात और स्वास्थ्य या रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखकर अपने माता पिता से जुड़े रह सकते हैं। जरूरी है माता पिता भी अपनी व्यस्तता को बनाए रखें, कि ऐसा नहीं कि बस आप खाली बैठे रहें, तो फिर आपको और चिंता होने लगेगी, और लगेगा कि कोई आए साथ में। तो अपने मित्रों से मिलना, रुचियों को अपनी, जो आपके शौक हैं उसको समय देना, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना और अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल।
1: अपने आप को बिजी रखना।
0: लेकिन वही है आरती, कि बिजी रखने के चक्कर में भी कई बार हम रिश्तों से दूर हो जाते हैं। हमें लगता है हम बिजी हैं, हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है। तो इतना भी बिजी नहीं होना चाहिए कि हम अपना जीने का अंदाज खो दें, या जो सुख शांति है, ठहराव भी जिंदगी में बहुत जरूरी है ना, ठहराव होना बहुत जरूरी। तो बच्चों में क्या हो गया, ठहराव नहीं रहा तो जुड़ाव भी नहीं रहा।

0: अपनी पूरी खुशी केवल उनकी अपने बात पर निर्भर रहती है कि वो किससे खुश रहते हैं। तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी रिश्ते में डर नहीं होना चाहिए, अपमान या लगातार नियंत्रण करना, किसी को हम नियंत्रण में कर लेते हैं, कंट्रोल में करना जिसे कहते हैं, या हम दुर्व्यवहार करते हैं, तो ये साथ रहने से रिश्तों की सफलता नहीं मानी जा सकती। बल्कि एक दूसरे की रिश्तों में क्या होता है कि उनकी सीमाओं का ध्यान रखना, उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना, ये सभी ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। और जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर ये सोचते हैं कि माता पिता तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, उनकी शिकायतें, उनकी सलाह, उनकी आवाज, सब कुछ हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रहेगा। लेकिन सच ये है कि समय किसी के लिए भी ठहरता नहीं है, और बचपन में जो हाथ हमें गिरने से बचाते थे, उन्हें उम्र के साथ हमारे धैर्य और सहारे की जरूरत भी हो सकती है। और जो माता पिता कभी हर सवाल का जवाब देते थे, वो भी आज के बदलते समय में अकेलापन, असुरक्षा या अपनी उपयोगिता को लेकर चिंता महसूस कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी तरह बच्चों को भी समझे जाने का, सम्मान पाने का और अपने फैसले लेने की जगह होनी चाहिए। इसलिए रिश्तों को बचाने का केवल क्या तरीका है कि त्याग या उनकी बातों को मानना नहीं है, बल्कि संवाद करना।

0: जरूरत भी हो सकती है और जो माता पिता कभी हर सवाल का जवाब देते थे वो भी आज के बदलते समय में अकेलापन, असुरक्षा या अपनी उपयोगिता को लेकर चिंता महसूस कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी तरह बच्चों को भी समझे जाने का, सम्मान पाने का और अपने फैसले लेने की जगह होनी चाहिए। इसलिए रिश्तों को बचाने का केवल क्या तरीका है कि त्याग या उनकी बातों को मानना नहीं है बल्कि संवाद करना, संवेदना जताना, प्यार मोहब्बत है ना जिसे कहते हैं न सहानुभूति, ये सभी होना चाहिए। और बच्चों, माता पिता को भी बच्चों की दुनिया को समझना होगा और बच्चों को भी समझना होगा कि माता पिता का प्यार केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि उनके जीवन का एक जरूरी हिस्सा भी है। तो दोनों तरफा ये समझना पड़ेगा। महंगे उपहार देने से कभी रिश्ते नहीं बनते हैं, आपसी प्यार सम्मान देने से वो रिश्ते कायम रहते हैं। लेकिन प्यार से पूछा गया एक सवाल कि आप कैसे हैं, सब अच्छा है, मैं आपकी क्या काम आ सकती हूँ या मुझे क्या करना चाहिए, ये हमारे दिलों में जो दूरियां हो गई हैं उसे हम कम कर सकते हैं। तो हम तो हर बच्चे से, हर माता पिता से यही कहेंगे कि एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, अपने रिश्तों में करीबी लाएं, है ना, दूरी नहीं लाएं।
0: बिल्कुल। और अभी हम अपने श्रोताओं को और करीब लाते हैं एक प्यारा सा गीत सुनवा कर।

0: हाँ तो बहुत ही पुराना गीत और बहुत ही प्यारा गीत था ये।
1: बुझ मेरा क्या नाम रे।
0: हाँ, नदी किनारे नाम रे। क्या मतलब पुराने गीतों की बात करें तो सुनते ही रह जाते हैं।
1: मतलब अपना पूरा पता भी उन्होंने बता दिया कि नदी किनारे गांव है।
0: बिल्कुल। और हमारे भी जो श्रोता है, हमने उनसे भी कहा था कि उनके गांव में कौन कौन सी लोकोक्ति प्रचलित है, है ना, उसका जिक्र उन्हें हमारे साथ करना भी है।
1: जी हाँ।
0: तो अभी हमारे श्रोता लिखते हैं आरती कि माता पिता और बच्चे व्यस्क संतान जो है उनके बीच बढ़ती दूरी का मुख्य कारण भावनात्मक अलगाव, विचारों का अंतर और संवाद की कमी है। जीवन शैली और उम्मीदें पुराने समय से काफी अलग है। बच्चे अब केवल आर्थिक सुरक्षा नहीं बल्कि मानसिक शांति और बराबरी का सम्मान चाहते हैं। कई बार माता पिता बच्चों की भावनाओं को समझे बिना उन्हें नियंत्रित करने या बार बार सलाह देने लगते हैं, जिससे बच्चे हस्तक्षेप या अविश्वास मानते हैं। बच्चे चाहते हैं कि उनके उनकी बात माने बिना किसी बिना रोक टोक के सुनी जाए, लेकिन कई बार माता पिता अपनी पुरानी बातों या अपने संघर्षों का हवाला देकर बच्चों की बात को अनसुनी कर देते हैं। तो माता पिता अक्सर बच्चों को यह याद दिलाते हैं कि उन्होंने उनके लिए कितना त्याग किया है, जिससे नई पीढ़ी ऐसा नहीं मानकर माता पिता का प्राथमिक कर्तव्य मानती है। डिजिटल और अत्यधिक व्यस्त जिंदगी, गैजेट्स और भागदौड़ वाली जिंदगी ने भी परिवार के सदस्यों के बीच के वास्तविक संवाद को बहुत कम कर दिया है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि माता पिता से दूरी होने के बाद बच्चे जो अक्सर हैं वो डिप्रेशन, अकेलेपन और एंजाइटी यानी घबराहट के शिकार हो जाते हैं। जब बच्चों को घर में भावनात्मक सहारा नहीं मिलता तो वो बाहर सहारा ढूंढते हैं और कई बार गलत दोस्तों या व्यसनों की गिरफ्त में आ जाते हैं। ये दूरी भविष्य में बुढ़ापे में माता पिता की उपेक्षा का कारण बनती है, जिससे पारिवारिक रिश्तों का ताना बाना बिखर जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वही श्रोता लिखते हैं कि आजकल बच्चों और माता पिता के बीच बढ़ती जो दूरी है वो एक आम समस्या बनती जा रही है। इसके मुख्य कारण, इसे कम करने के उपाय बहुत सारे इन्होंने लिखे हैं कि पीढ़ी का अंतर है, संवाद की कमी है, डिजिटल लत है, व्यस्तताएं हैं, स्क्रीन टाइम शेयर करते हैं, मोबाइल की लत के कारण बच्चे भावनात्मक रूप से माँ बाप से कटते जा रहे हैं। और इस दूरी को कम करने के उपाय भी कहते हैं कि आप जो है बच्चों की बात को बिना बीच में काटे तुरंत बचाव की मुद्रा में आए, सुने, उनकी भावनाओं को समझें, उनकी सीमाओं का सम्मान करें, दोषारोपण छोड़ें और समय और बदलाव को अपनाएं। ये जरूरी है, तभी जाकर ये दूरियां थोड़ी सी पार्टी जा सकती हैं।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जिन परिवारों में माता पिता के बीच लगातार झगड़े या तनाव का माहौल रहता है वहां बच्चे मानसिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे माहौल से बचने के लिए वो बाहरी दोस्तों या डिजिटल दुनिया की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अक्सर माता पिता बच्चों पर डॉक्टर, इंजीनियर या टॉपर बनने का भारी दबाव डालते हैं। उनकी अपनी क्षमता या पसंद, जैसे किसी को आर्ट पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, तो उसको नजरअंदाज करने और हर समय दूसरों से तुलना करने के कारण बच्चे मानसिक तनाव में आ जाते हैं और अपने माता पिता से कतराने लगते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जरूरत से ज्यादा बच्चों को कंट्रोल में करने की जो माता पिता की आदत है ना, वो भी जो है बच्चों को एक समय बाद दूर कर देती है। बच्चे अभी तो क्या होते हैं, कंट्रोल में रहते हैं, बाद में जब उन्हें मौका मिलता है तो वो दूरी बना लेते हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता से बच्चों का दूरी बनाना आज के समय में एक गंभीर और संवेदनशील विषय है। अक्सर टीनेज में बच्चे पेरेंट्स से दूरी बना लेते हैं, उनसे कुछ कहना या अपने दिल की बात शेयर करना तो दूर, वे कई बार ठीक से बात भी नहीं करते। ऐसे में पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं, आखिर ऐसा क्या है। कई बार तो पेरेंट्स इतने चिंतित हो जाते हैं कि प्रोफेशनल हेल्प तक लेने लगते हैं। बेशक हर पीढ़ी की सोच अलग होती है, लेकिन बच्चों को समझना जरूरी है कि उनके सबसे बड़े शुभचिंतक माता पिता ही हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना बहुत जरूरी है बच्चों के अंदर एक विश्वास को लेकर आना। और एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि आधुनिक जीवन शैली में माता पिता और बच्चे दोनों ही अपनी व्यस्तताओं यानी कि कोई काम में, कोई पढ़ाई में, कोई कोचिंग में उलझे हुए हैं और घर पर भी लोग बातचीत करने के बजाय स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और गेमिंग में व्यस्त रहते हैं, जिससे आपसी संवाद जो है वो खत्म होता जा रहा है। नई पीढ़ी के विचार, उनका पहनावा, करियर के चुनाव और जीवन जीने का तरीका पुरानी पीढ़ी से काफी अलग है। जब माता पिता पुरानी सोच या पुराने नियमों को थोपने की कोशिश करते हैं तो बच्चे खुद को असहज महसूस करने लगते हैं और उनसे दूर होने लगते हैं।
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि हम माता पिता को दूर करके बाहर कहीं भगवान को ढूंढने जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, परंतु देखा जाए तो माता पिता ही भगवान रूप में हमारे घर में विराजमान है।
1: बिल्कुल।
0: उनकी सेवा अगर हम करेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा और आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है।

0: कभी करके तो देखिए ये लिखते हैं है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आधुनिक जीवन शैली में माता पिता और बच्चे दोनों ही अपनी व्यस्तताओं के कारण उलझे हुए हैं। घर पर भी लोग बातचीत करने के बजाय जैसा कि अभी आपने कहा इन्हीं विषयों पर बातचीत भी करते रहते हैं।
1: बिल्कुल श्रोता जो लिखते हैं कि माता पिता से दूरी बनाते बच्चे बड़ा मुद्दा है। बच्चे के पास बैठकर बातें भी नहीं करते हैं, वो अपने मोबाइल वीडियो कॉलिंग चैट पर ही लगे रहते हैं। माता पिता अपने अपने व्यवसाय में चले जाते हैं। हमारे यहाँ जब से पापा की मृत्यु हुई तब से भाई और बहन माँ के पास ही रहते हैं, और मतलब मम्मी नजदीक ही रहती है। कोई फोन आया तो तुरंत उसका जवाब देते हैं। हमारा तो फोन टूट गया इसलिए बहन के फोन से ये संदेश साझा कर रहा हूँ। असल में जो इतना मतलब वो फोन बता रहे हैं अपना, उनका गिरा तो उसका डिस्प्ले चला गया था। तो माता पिता अगर किसी के हैं साथ में तो बच्चों को उनके साथ बातें करनी चाहिए और मतलब उनको अकेले उस पे नहीं छोड़ना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता से दूरी बनाते बच्चे दिल से दूर नहीं होते, दूरी होती है काम के कारण, क्योंकि उन्हें अपना काम धंधा संभालना होता है, जिंदगी चलानी होती है। और एक बात है कि माता पिता बच्चों पर जरूरत से ज्यादा पाबंदी लगा देते हैं या उनके जीवन के हर फैसले को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो इसका बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उन्हें घुटन महसूस हो सकती है। इसलिए उन्हें उच्च विचारों से भरे पंख लगाकर उड़ने के लिए एक विशाल गगन में आजादी देने की जरूरत है।
1: बिल्कुल। और माता पिता ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता से बच्चों का दूरी बनाना आज के समय में एक गंभीर संवेदनशील विषय है, और अक्सर टीनेज में बच्चे पेरेंट्स से दूरी बनाने लगते हैं। उनसे कुछ कहना या अपने दिल की बात शेयर करना तो दूर, वो कई बार ठीक से बात तक नहीं करते। ऐसे में पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार तो पेरेंट्स इतने चिंतित हो जाते हैं कि प्रोफेशनल हेल्प तक लेने लगते हैं। बेशक हर पीढ़ी की अपनी सोच होती है, अलग होती है, लेकिन बच्चों को समझना आवश्यक है कि उनके सबसे बड़े शुभचिंतक जो है उनके माता पिता ही हैं। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि माँ बाप ने अपनी हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, अब जब उनके कदम धीमे पड़ने लगे तो उन्हें अकेला ना छोड़ें, उनका हाथ थाम कर कुछ दूर चल लेना भी प्यार जताने का बहुत सुंदर तरीका है।
0: बहुत अच्छे विचार हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं, हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद और शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इस विषय को उठाया और ये साबित कर दिया कि माता पिता और बच्चों को आपसी तालमेल और समन्वय रखना कितना जरूरी है ना?
1: जी, बिल्कुल।
0: तो आरती अब वक्त है एक अंतराल का।
1: बिल्कुल, अंतराल लेते हैं।

0: हाँ तो आरती,
1: हाँ हम बात करते हैं पद्मश्री की जो सेगमेंट हमारा है उसमें हम बात कर रहे हैं बीरूबाला राभा जी की। देखिए मंदाकिनी जी, समाज जो जो समाज सेवा होता है ना उससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती है,
0: बिल्कुल
1: है ना। और मानवाधिकार जो यानी उसके लिए कोई काम करता है ना तो समझिए बहुत ही बड़ा वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही थी बीरूबाला जी।
0: बीरूबाला जी की आज हम बात कर रहे हैं। तो बीरूबाला राभा जो है असम की एक महान समाज सेविका और मानवाधिकार कार्यकर्ता थी जिन्होंने अपना पूरा जीवन महिलाओं के खिलाफ प्रचलित बहुत सी कुप्रथाओं, अंधविश्वास और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सामाजिक अत्याचारों को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया था।
1: बिल्कुल। और जिस समाज में किसी महिला को दुर्भाग्य या बीमारी का कारण बताकर प्रताड़ित किया जाता था वहां बीरूबाला ने साहसपूर्वक लोगों को जागरूक किया और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने का प्रयास किया।
0: हाँ बिल्कुल। उनका जन्म 1954 में असम के गोलपाड़ा जिले के ठाकुरविला गाँव में हुआ था और उनका संबंध जो है राभा जनजाति समुदाय से था। तो उनका बचपन जो है आर्थिक कठिनाइयों के बीच में बीता। जब वो लगभग 6 वर्ष की थी तभी उनके पिता का निधन भी हो गया था।
1: बिल्कुल। और परिवार की जिम्मेदारियों और आर्थिक तंगी के कारण उन्हें छोटी उम्र में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। औपचारिक शिक्षा अधिक आगे तक नहीं बढ़ सकी थी लेकिन जीवन के अनुभवों ने उन्हें समाज की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी।
0: हाँ बचपन में ही उन्होंने गरीबी, सामाजिक रूढ़ियों और महिलाओं की सीमित स्वतंत्रता को बहुत करीब से देखा था। तो बीरूबाला का जो विवाह है 15 वर्ष की उम्र में हो गया था। उस वक्त 15 वर्ष की उम्र बहुत हुआ करती थी।
1: बिल्कुल।
0: और उनके पति किसान थे और उनके 3 बच्चे थे। विवाह के बाद उनका जीवन सामान्य ग्रामीण परिवार के घरेलू जिम्मेदारियों के बीच में बीता था।
1: और लेकिन एक घटना ने उनके विचारों को एकदम बदल दिया था और उन्हें समाज सुधार की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी। और वर्ष 1985 के आसपास उनके जो बड़े बेटे थे धर्मेश्वर, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो इस दौरान एक स्थानीय झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति ने बीमारी को अलौकिक शक्तियों से जोड़कर भय पैदा कर दिया और उनके और उस बच्चे के जीवित रहने को लेकर भी निराधार भविष्यवाणी की थी उसने।
0: फिर
1: और फिर उसके बाद बेटे की, लेकिन उन्होंने इस बात को माना नहीं और उसका इलाज करवाती रही वो। तो इस भविष्यवाणी के जब के बेटे के ठीक होने के बाद जब वो ठीक हो गया अपने दवाइयों को लेकर के, तो बीरूबाला ने महसूस किया कि अंधविश्वास और झूठे दावों के कारण लोगों को कितना नुकसान पहुंच सकता है कि लोग इलाज कराने के बजाय झाड़ फूको इन सब चीजों में लगे रहते हैं। तो यही घटना उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुई और उन्होंने तय किया कि वो लोगों को

0: अंधविश्वास से मुक्त करने और ऐसी मान्यताओं के कारण प्रताड़ित होने वाले लोगों की रक्षा करने के लिए वो काम करेंगी।
1: बहुत बड़ी बात। अक्सर लोग जो है इसी में लगे रहते हैं कि किसी तरह की जो है अंधविश्वास और कुरीतियों की बातों में आ जाते हैं और जान भी गंवा देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो असम में कुछ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कुप्रथा के नाम पर महिलाओं को बीमारी, मृत्यु या फसल खराब होने या उनके अन्य दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के लिए दोषी ठहराया जाता था। तो ऐसी महिलाओं को सामाजिक बहिष्कार और धमकियां और हिंसा का सामना भी करना पड़ता था। आरती,
0: बिल्कुल, बहुत वो उस समय का जो समाज था बहुत रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और बीरूबाला ने इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने लोगों को समझाया कि किसी बीमारी या दुर्भाग्य के लिए किसी महिला को जादू टोने का दोषी ठहराना गलत है और बीमारियों के लिए वैज्ञानिक सोच और उचित चिकित्सा की जरूरत है, न कि अंधविश्वास की।
0: बिल्कुल। और उनका संघर्ष आसान नहीं था क्योंकि लोगों की सोच बदलना बहुत मुश्किल होता है। कोई चीज को आप चीजों को बदल सकते हैं लेकिन लोगों की सोच नहीं बदल सकते,
1: बदली जा सकती।
0: तो बहुत ही मुश्किल था उनका संघर्ष। उन्हें सामाजिक विरोध, अपमान और धमकियों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उन्हें भी कुप्रथा का नाम देने की कोशिश करी, उस कुप्रथा का नाम देने की कोशिश करी उनको, लेकिन उन्होंने अपने उद्देश्य से समझौता नहीं किया। वो गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करती रही और संकट में फंसी महिलाओं की मदद करती रही।
1: बीरूबाला ने अपने गाँव में महिलाओं को संगठित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए और मिशन बीरूबाला नाम के संगठन की एक शुरुआत भी कर दी। और इस संगठन में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वकील और पीड़ित महिलाओं की भागीदारी रही। और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? महिलाओं के प्रति कुप्रथा और अंधविश्वास के विरुद्ध जन जागरण जगाना।
0: बिल्कुल। और झूठे आरोपों से पीड़ित महिलाओं की सहायता करना, जरूरतमंद महिलाओं को सुरक्षा और न्याय दिलाने का प्रयास करना, गाँव में वैज्ञानिक सोच और मानवाधिकार के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का साहस देना, उनके प्रयासों से अनेक महिलाओं को सहायता मिली और समाज के अन्य लोग भी इस अभियान से जुड़े, जिनकी वो सोच बदलने में कामयाब हो गई थी तो उन्होंने भी इससे जुड़ना स्वीकार किया।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और बीरूबाला राभा ने संघर्ष की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक, जो डायन कुप्रथा के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को मजबूत करने में योगदान दिया। कैसी कैसी कुप्रथाएं थी।
0: बिल्कुल।
1: और स्त्रियों को कितने अत्याचार सहने पड़ते थे आरती
0: जी।
1: और 2015 में असम सरकार ने असम विद हंटिंग जो है एक्ट जो है पारित कर दिया था।
0: बिल्कुल। जो ये विच हंटिंग और प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन जो एक्ट जो था ना, बहुत मील का एक पत्थर माना जाता है। बिल्कुल। उसकी वजह से बहुत सारी चीजों में महिलाओं को बचाव मिला कि जो उस समय उनको जान से कभी कभी हिंसा का भी सामना करना पड़ता था। और इस कानून का उद्देश्य किसी को भी डैन बताकर कुछ कुप्रथा का नाम देकर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने, बदनाम करने और उसके विरुद्ध हिंसा करने जैसी गतिविधियों को रोकना था, इस कानून का काम। और ये कानून वर्ष 2018 में लागू हो गया और बीरूबाला और उनके सहयोगियों के लंबे अभियान ने इस सामाजिक समस्या को सार्वजनिक चर्चा और कानूनी सुधार के केंद्र में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
1: बिल्कुल सही कहा। जब कोई कानून आ जाता है तो उससे बहुत ज्यादा जो है फायदे जो हमें दिखते हैं वो दिखने लगे उस दौरान। और उनकी प्रमुख सम्मान और उपलब्धियों की अगर हम बात करते हैं तो 2015 में उनके सामाजिक योगदान के लिए गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। साथ ही उनके कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी मिली।
0: और वर्ष 2018 में उन्हें विमेन वर्ल्ड समिट फाउंडेशन का सम्मान मिला। 2005 में महिलाओं के अधिकार और अंधविश्वास के विरुद्ध उनके संघर्ष को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क नामक महिला संगठन ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित भी किया था, नामांकित किया। और इन सब के साथ भारत सरकार ने उन्हें सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया।
1: क्या बात।
0: और फिर 13 मई 2024 को गुवाहाटी असम में लंबे समय तक वो बीमार पड़ गई थी और बीमार रहने के बाद उनका निधन हो गया। और उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए केवल उच्च शिक्षा या आर्थिक शक्ति आवश्यक नहीं होती है, संवेदना, साहस और दृढ़ संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होता है।
1: सबसे बड़ी बात कि उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं की थी और आर्थिक रूप से भी वो मजबूत नहीं थी। ग्रामीण किसान के परिवार में वो उनका विवाह हुआ था लेकिन उनमें संवेदनाएं थी, साहस था और दृढ़ संकल्प की जो शक्ति थी उसने उन्हें पद्मश्री तक पहुंचाया और वो महान करने वाली महिलाओं में शामिल हो गई।
0: बिल्कुल।
1: और अब एक गीत सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं।

0: हाँ मंदाकिनी जी, अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ लोकोक्तियों की जो ग्रामीण अंचल में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है।
1: अच्छा, हमारे श्रोताओं ने लिखी
0: बहुत सारी भेजी हैं, बहुत सारी उन्होंने एकदम भर भर के भेजी हैं।
1: अच्छा।
0: तो हम लेते हैं श्रोताएं उनका लेते हैं कमेंट। तो लिखते हैं कि ग्रामीण अंचल में रची बसी लोकोक्तियां बड़ी ही बेमिसाल हैं, और यहाँ हमारे यहाँ तो डांडिया नृत्य का पंडाल लगा हुआ है। जैसे कि एक है, उन्होंने लिखा है, एक है बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, बाप ने मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज, मतलब इस तरीके की जो रहती है लोकोक्तियां वो है। और एक मारवाड़ी कहावत है, एक हमारे जो श्रोता है लिखते हैं कि जीना रा मर जा बादशाह रुलाता फिरे बजीर, अर्थात जब घर का मुखिया का ध्यान हो जाए तो परिवार बिखर जाता है, मतलब इसका ये कहना है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि मालवी भाषा में कहावतों को केवाड़ा या ओखाड़ा कहते हैं। मालवा क्षेत्र के लोक साहित्य और आम बोलचाल में इन केवाड़ों का बहुत बड़ा और समृद्ध भंडार है। मालवी केवाड़ा के कुछ उन्होंने उदाहरण दिए, जैसे कि आंदा के आगे रोणों ने अपना दीदा खोना, यानी किसी संवेदनहीन व्यक्ति के सामने अपना दुखड़ा रोकर समय बर्बाद करना है ना। एक लिखते हैं, आंदो उठे ने घर का ने कूटे, अपनी परेशानी में अपने करीबियों या स्वजनों को जो तंग करता है, और आंदो कुकड़ो घट्टी दोरो, किसी एक ही जिद या काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना, और एक लकड़ी के दो बटका, यानी आपस में फूट पड़ना या परिवार का विभाजन हो जाना।
0: अच्छा, तो काफी मतलब अनसुनी सुनी भी नहीं है
1: ये, हमने नहीं सुनी है। वाकई आपने बहुत अच्छी लोकोक्तियों को हमारे सामने रखा है, क्योंकि हम ये तो कुछ चीजें तो हमारे यहाँ बोली जाती है, लेकिन आपने जो अभी कहावतें लिखी है वो शायद हमने नहीं सुनी है, है ना
0: जी। तो हमारे एक और साथी है जो लिखते हैं कि हमारे यहाँ तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी लोकोक्तियां बोली जाती है, लेकिन ये लोकोक्ति बहुत प्रचलित है। चैत मीठी चीमरी, बैसाख मीठो मठा, जेठ

0: डोबरी आसान मीठो लटा, इसका अर्थ है कि चैत में ककड़ी यानी चिमरी, बैसाख में मठा यानी कि छाछ, और छाछ जेठ में महुए की डोबरी और आषाढ़ में महुए का लाटा सबसे मीठा और उत्तम लगता है। बिल्कुल ही अनसुनी ये भी दिया ना।
1: वही श्रोता लिखते हैं कि ग्रामीण लोगों के केवल कहने सुनने की बातें नहीं है बल्कि पीढ़ियों के अनुभवों का सार है। इनके माध्यम से बुजुर्ग बिना लंबा उपदेश दिए बच्चों को जीवन की बड़ी सीख दे देते हैं और इनमें हास्य भी है, व्यंग्य भी है, सीख भी है और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की सीख भी होती है। बहुत सी मशहूर लोकोक्ति इन्होंने लिखा है, गई भैंस पानी में, यानी किसी काम का बिगड़ जाना या मेहनत पर पानी फिर जाना, और ऊंट के मुंह में जीरा अपन कहते हैं ना, और घर का भेदी लंका ढाए और दूर के ढोल सुहावणे अधजल गगरी छलकत जाए। ये सारी कविताएं जो लोकोक्तियां हैं वो इन्होंने बताई हैं।
0: बिल्कुल, एक हमारे और श्रोता जो लिखते हैं कि अगर गुजरात की बात करें तो उतावले आंबा ना पाके, आंबा मतलब आम के पेड़ पर समय आने पर ही आम पकते हैं, ना बोलवा मना गुड़, मतलब चुप रहने में ही नौ गुड़ समाये हैं, और जाजा हाथ रलिया मना, मतलब मिलजुल कर काम करने से काम जो है वो आसान और झड़पी होता है, नहीं तुरंत होता है, और टीपे टीपे सरोवर भराए, मतलब बूंद बूंद से हौज भरा जा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ग्रामीण अंचल में बसी लोकोक्तियां अलग अलग प्रदेश की जीवन शैली से जुड़ी होती हैं। अगर गुजरात की बात करें तो उतावले आंबा न पाके जैसा भी आपने पढ़ के बताया था, तो ये बड़ी अच्छी इन्होंने लिखी है लोकोक्ति। और देखिए हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं,
0: और साथ ही हमें एक श्रोता जो लिखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोकोक्तियां होती हैं ये उनके यहाँ तो मतलब जो होती हैं, लेकिन जहाँ शहरी लोग हैं वो भी उनका बहुत बहुत उपयोग करते हैं, वो तो करते ही गाँव वाले, और वो इतनी अच्छी और चीजों को सिखाने वाली होती हैं कि उसका उपयोग करने के बाद हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, और बहुत सी चीजों को हम कम शब्दों में कहना सीख जाते हैं, और शब्दकोश भी होती है ये जिससे शब्दों का भंडार हमें मिलता है, तुमने बताया कि कैसे कैसे उसका उपयोग होता है।
1: बिल्कुल सही कहा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आगे नाथ जानवरों के मुंह में लगाए जाने वाली जो रस्सी है, न पीछे पगा से गाय बैल को बांधा जाने वाली रस्सी, ये आज भी गांव के घरों में उपयोग होता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि घर परिवार की जिम्मेदारियों से स्वतंत्र है या परिवार में इनका कोई नहीं है, यानी आगे नाथ और न पीछे पगा, इनके परिवार में कोई है, कोई नहीं है, ये अकेले हैं, इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसका अर्थ ये होता है। बिल्कुल नई लोकोक्ति है ये हमारे लिए।
0: और एक हमारे साथी साथी हैं जो लिखते हैं कि गांव के चौपालों और रोजमर्रा की बातचीत में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है इन लोकोक्तियों का, और खेती किसानी और मौसम से जुड़ी हुई ये कहावतें हैं, ये लोकोक्ति हैं कि उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान, कृषि को सबसे उत्तम कार्य, व्यापार को मध्यम और नौकरी को अधम या सबसे पीछे माना गया है, और इस लोकोक्ति के अनुसार, और अब पछताए होश का जब चिड़िया चुग गई खेत घाग। ग्रामीण जीवन में मौसम और कृषि को लेकर काफी कवि घाग की कहावतें बहुत रची बसी हैं। जब बरसेगा उत्तरा नाज न पावे कुतरा, यदि उत्तर में नक्षत्र में बारिश हो, उत्तर नक्षत्र में बारिश हो तो अनाज इतना होता है कि मतलब कुत्ते में लेकिन जानवर भी नहीं खा पाते हैं, और भैंस के आगे बीन बजाय भैंस खड़ी पगरा, ये तो सभी जानते हैं।
1: तो बहुत अच्छी कहावतें हमारे लोकोक्तियां जो है हमारे श्रोताओं ने हमें उन नई लोकोक्तियों से परिचित करवाया है जिनका प्रयोग हम कम से कम शहरों में नहीं करते
0: हैं।
1: तो अब एक गीत सुन लिया जाए,
0: सुनते हैं।

0: भाई कोई माने या ना माने, आरती तुम्हारी त्वचा तो बहुत ही चमकदार लगती है मुझे।
1: जी, तो हम बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, बहुत सारे हमारे लिए नुस्खे लेकर आए हैं घरेलू, तो हम ले लेते हैं उनको। हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि कच्चे दूध में शहद मिलाकर लगाना, इससे भी त्वचा में निखार आता है। और मसूर की दाल को दूध में भिगा कर और इसको पीस कर पेस्ट कर पर चेहरे पर मास्क की तरह लगाएं तो उससे बहुत फायदा मिलता है। और बहुत सही लिखा है इन्होंने, ऐसा मैंने आजमाया भी, बहुत अच्छा नुस्खा है उनका। तो गरबा में बिल्कुल आप ही आप दिखाई देंगे, मन रख लीजिए।
0: तो मैं भी आज इस नुस्खे को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल गरबा में जाकर नृत्य करती हूँ, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एलोवेरा जेल जो है, ताजे एलोवेरा के पत्ते से जेल निकाल कर सीधे चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करता है और नई कोशिकाओं के विकास को भी बढ़ा देता है। और बेसन और हल्दी का पैक भी लगा सकते हैं। बेसन चुटकी भर, हल्दी, थोड़ा सा गुलाब जल या दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे चेहरे पर 15-20 मिनट तक लगाकर सामान्य पानी से धो लें। और ये नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है। लेकिन हल्दी को लगाने के बाद क्या है, हमें थोड़ा धूप में कम जाना चाहिए।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमारे जो साथी लिखते हैं कि एक चम्मच फिल्टर कॉफी, एक चम्मच दही में 2-3 बूंदे नींबू के रस की डालकर अच्छी तरीके से मिला लीजिए। इस पेस्ट को चेहरे पर, गर्दन पर लगाइए, थोड़ा सा सूखने पर हाथों से मसाज करें और पानी से धो लें, त्वचा साफ सुथरी हो जाएगी। और साथ में एक और दूसरे श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मुल्तानी मिट्टी जो बहुत ही ज्यादा बहुत ही अच्छी होती है, मुल्तानी मिट्टी हल्दी, दूध, दही, बेसन, नींबू, पपीता, संतरे के छिलके त्वचा के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इनसे कई तरह के उपटन बनाए जाते हैं, फेस पैक बनाए जाते हैं। तो इन्होंने बालों के लिए भी बता दिया कि रीठा, शिकाकाई और आंवला बहुत लाभदायक होता है। बहुत अच्छे अच्छे टिप्स लेकर भेजे,
0: बहुत अच्छी बात है। तो सभी को हम शुक्रिया कहते हैं और एक आखिरी गीत और सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल, सुनते हैं गीत।

0: तो दिल देके देखो मैं दिल तो दिया हुआ है हमने, मंदाकिनी जी को भी दे रखा है और साथ ही अपने सभी श्रोताओं को सभी सखियों को सखाओं को दे रखा है
1: बिल्कुल, और तुम्हारा दिल भी हमारे पास है
0: बिल्कुल
1: जी। तो अब इन्हीं बातों के साथ जो है कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
0: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति, नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: फरमाइश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग और संगीत की मिठास घुली होगी, है ना? तो आइए आज फिर सजाते हैं गीतों की ये महफिल आपकी बातों और आपकी पसंद के साथ। देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: मैं जिला रामपुर तहसील स्वार ग्राम समोदिया यूपी उत्तर प्रदेश से इलियास पाशा बात कर रहा हूँ। मैम आपसे तो मेरी पहली बार बात हो रही है। मैम आपकी आवाज बहुत प्यारी लगती है, आपका प्रोग्राम पेश करने का अंदाज बहुत बेहतरीन है। मैम
0: आपका सुनने का अंदाज भी बेहतरीन होगा तभी आपको हमारा प्रोग्राम बेहतरीन लगता है ना?
1: जी मैम, काफी दिनों से ट्राई कर रहा, काफी दिनों में फोन लगा मेरा, कम से कम 2 साल में आपको लगा। आपकी आवाज सुनते हैं घर में, बच्चे सुनते हैं, मैडम सुनती हैं, अम्मी सुनती हैं, तो बहुत खुश होती हैं कि मैम की आवाज में मिठास होते हैं।
0: आपके सुनने में भी मिठास होगी। और बताइए क्या करते हैं आप?
1: मैम यहाँ समोदिया चौराहे पर हमारी चावलों की दुकान है, हम हर वैरायटी का चावल बेचते हैं। मैम
0: तो बताइए आपकी दुकान में कौन कौन सी वैरायटी के चावल हैं?
1: मैम हमारे पास हर वैरायटी का चावल है, बासमती है, 1121 है, 1509 है, 26 है, सरबती है, बहुत सारी वैरायटी आती है मैम, एक दो नहीं है, कम से कम 15-20 वैरायटी का चावल बेचते हैं।
0: फिर तो आपकी दुकान बहुत फेमस होगी।
1: जी बिल्कुल मैम, इस महीने में तो ज्यादातर बहुत बिक्री होती है क्योंकि मुस्लिम धर्म के तरह से 11वीं शरीफ होती है हुजूर गौसे आजम के नाम की, तो ज्यादा बिक्री होती है मैम।
0: अच्छी बात है, वो हर जगह ये होता है कि हम अपने अपने त्योहार मनाते हैं और खास पकवान बनते हैं, तो लगता है कि भाई कहीं चावल है कहीं गेहूं है।
1: जी बिल्कुल।
0: अच्छा इलिया जी ये बताइए कि जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर बड़ी खुशियों का इंतजार करते हैं।

0: ना, लेकिन जी, क्या जी, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई ऐसी छोटी सी बात होती है जो हर दिन आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है?
1: जी जी मैम, अगर जैसे हमारा थोड़ा बहुत मूड खराब होता है, मैं आकाशवाणी विविध भारती सुनते हैं तो हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है मैम।
0: अरे वाह, तो आपने अपनी थकान मिटाने का तरीका विविध भारती में चुना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बहुत अच्छी बात है। चलिए आपकी पसंद का गीत सुन लिया जाए।
1: फिल्म का नाम है प्रेम रोग और गीत केवल है मेरी किस्मत में तू नहीं, शायद क्यों तेरा इंतजार करना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से
1: मंदाकिनी बहन को नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन है, अपना नाम बताइए हमें।
1: आपका भाई उदयलाल टेलर उदयपुर राजस्थान से।
0: क्या बात है, बहुत स्वागत है आपका।
1: विविध भारती से जुड़े रहते हैं तो मस्ती रहते हैं,
0: ये तो बिल्कुल सही बात है।
1: विविध भारती है, वहाँ कोई गम प्रवेश कर ही नहीं सकता है।
0: इतनी पसंद है आपको विविध।

0: भारती
1: जी 55 साल से जुड़ा हूँ वेद भारती से।
0: अच्छा,
1: और मेरी उम्र है 74।
0: लेकिन आपकी आवाज़ से तो नहीं लग रहा है, आप तो बिल्कुल युवा लग रहे हैं आवाज़ से।
1: ये आप लोगों की मेहरबानी और आशीर्वाद है, इसलिए आवाज ऐसी है।
0: अच्छा, तो आपकी दिनचर्या बहुत टाइट रहती है, अनुशासन में रहते हैं, इसलिए भी फर्क होता होगा स्वास्थ्य में, आवाज में, सब में फर्क आता है।
1: जी जी।
0: सोचने का तरीका बहुत पॉजिटिव होगा, हर बात को पॉजिटिव लेते होंगे आप।
1: जी, मैं कभी गुस्सा नहीं करता हूँ, थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता भी है तो वेद भारती चलती रहती है, तो उसमें आप लोगों की आवाजें सुनता हूँ और मस्त हो जाता हूँ।
0: चलिए, सुबह कितने बजे उठते हैं आप बताइए?
1: सुबह हम 6 बजे उठते हैं,
0: सुबह की शुरुआत
1: स्कूल भेजते हैं और हमारी दिनचर्या शुरू होती है। दिन में थोड़ा बहुत काम करते हैं ट्रेनिंग का, और दिन भर वेद भारती चलती रहती है, आप जैसी बहनों की आवाजें सुनते रहते हैं, मस्त रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। तो सुबह की शुरुआत चाय से होती है या वेद भारती से?
1: वेद भारती से होती है और चाय भी चलती रहती है।
0: ये हुई ना बात। तो बताइए, कहाँ जाते हैं टेलरिंग करने, घर पे ही है या बाहर है दुकान?
1: पहले बाहर थी शॉप, अभी घर पे ही करता हूँ। अभी एज का फैक्टर है तो थोड़ा कम ही होता है काम।
0: तो एक बात बताइए, 74 इयर्स ओल्ड हो गए हैं आप, तो अभी तक काम कर रहे हैं, आपके बच्चे भी काम करवाते होंगे, आपका हाथ बटाते हैं कि नहीं?
1: जी, मेरे 2 बच्चे थे, एक बच्चा एक्सपायर हो गया है।
0: हाँ, और आपका दूसरा बेटा?
1: दूसरा बेटा एक रेडीमेड का शोरूम है, उस पे सेल्समैन है।
0: अच्छा, यानी कि वो भी काम करते हैं अलग, लेकिन आप टेलरिंग का काम अभी भी करते हैं, है ना?
1: हाँ।
0: कोई उम्र कहीं आड़े नहीं आती अगर हमने अपने आप को बिल्कुल सकारात्मक बना रखा है तो?
1: जी, मेरी जिंदगी में तकलीफें बहुत आई है, लेकिन वेद भारती ने सहारा दिया और इसके सहारे हम जी रहे हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, और ये सहारा ता उम्र आपको मिलेगा, ये हमें विश्वास है।
1: जी।
0: कौन सा गाना सुनवाए बताइए?
1: पुरानी फिल्म है जुगनू, उसका गीत है मोहम्मद रफी साहब और नूरजहां की आवाज में। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, बहुत ही सुरीली आवाज है नूरजहां जी की।
0: जी, तो आप गा के बता सकते हैं इस गाने को?
1: यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से
1: मन्नाकिनी दीदी को राधे राधे।
0: राधे राधे, नमस्कार। अपना नाम बताइए।
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: स्वागत है केसरी जी आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे हैं दीदी आप?
0: अच्छे हैं, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए।
1: जी जी, हमको बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात हो रही है। पहले भी मेरी एक दो बार आपसे बात हुई है।
0: केसरी जी, अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: मैं दीदी आर्टिस्ट हूँ, पेंटर, और प्लस में खेती भी है, तो बढ़िया काम चल रहा है। दीपावली आने वाली है और नवरात्रे चालू हैं, तो बढ़िया आनंदमय स्थिति है। सब जगह माता रानी की प्रतिमाएं विराजमान है और बढ़िया सुंदर वातावरण है दीदी।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये बताइए, आपने 9 दिन व्रत रखे हैं या पहले और आखिरी दिन उपवास रखेंगे, ऐसा कोई है आपके दिमाग में?
1: हाँ दीदी, ये हमारी कुल की माता पूछती है अष्टमी को, तो उस दिन उपवास रखेंगे दीदी। जैसे हम 9 दिन रखते थे, लेकिन इस बार किसी कारणवश नहीं रह पाए।
0: अच्छा, लेकिन अष्टमी के दिन आप रखेंगे?
1: हाँ जी।
0: अच्छा, उस दिन क्या खास बनाएंगे? कुछ खास फलाहार बनेगा घर में
1: उस दिन? दीदी पूरे घर की मतलब लिपाई पुताई होती है, ऊपर से नीचे तक की, एक कमरे की, और उसमें माता जी विराजमान होती हैं, और फिर पूरा वित्त परिवार वित्त फैमिली की पूजन होती है, और बढ़िया अच्छा आनंद आता है दीदी। शाम के टाइम होती, सब घर परिवार उपवास रखता है उस दिन। पूरे पकवान बनते हैं दीदी, लगभग अपने जितने बन सके अपन से, तो सब बनते हैं।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अष्टमी के दिन आप ही करते हैं। तो गरबा में हिस्सा लेते हैं, जाते हैं 9 दिनों में खास कहीं?
1: बैरसिया शहर है, इसमें गरबा होता है तो देखने जाते हैं दीदी, लेकिन हिस्सा नहीं लेते, भागीदारी नहीं लेते।
0: अच्छा, बताइए आपकी पसंद का गाना।
1: दीदी नवरात्रि चल रहे हैं, तो एक मर्द मूवी में एक गाना है, माँ शेरों वाली, वो माँ शेरों वाली।
0: चलिए सुनते हैं माँ शेरों वाली।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: आदरणीय दीदी को सादर सप्रेम प्यार नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लबानिया बोल रहा हूँ। मंदाकिनी दीदी जी,
0: राजू जी स्वागत है आपका। कैसे हैं आप बताइए।
1: बिल्कुल ठीक है दीदी जी, मैं आपके सभी कार्यक्रम सुनता हूँ, जैसे त्रिवेणी रहा, सखी सहेली रहा, आज के फनकार रहा, और रात को मैंने सुना था आपके लिए, बहुत अच्छे गीत सुनवाए गए थे उसमें।
0: बिल्कुल।
1: और त्रिवेणी कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसमें अलग अलग तरह के विषयों पे बात की जाती है और श्रोताओं को एक नई ऊर्जा मिलती है उस कार्यक्रम के माध्यम से।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा बताइए, इन दिनों नवरात्रा पर्व चल रहा है, आपने व्रत रखा है, उपवास रखा है, माँ की पूजा कर रही हैं या क्या है?
1: जी दीदी, मैंने व्रत उपवास तो नहीं रखा है, लेकिन मेरे ऊपर माता रानी की कृपा है, मैं आपको फोन लगाता हूँ या गाना बजाना करता हूँ, सब उन्हीं ने सिखाया है दीदी मेरे को। शाम को मंदिर जाना होता है दीदी, उसी तरह माँ को याद करते हैं, और माँ ही हमारी सब कुछ है, माँ ही हमारे ऊपर कृपा किए हुए है।
0: तो नवरात्रि में हम माँ के 9 रूपों की आराधना करते हैं और माँ से हमें शक्ति मिलती है और प्रेरणा मिलती है।
1: बिल्कुल।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: जाने तमन्ना फिल्म का गाना सुन रहा दीदी, गाने के बोल है तू चांद है पूनम का।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कर रही हूँ।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
1: विकास बोल रहे हैं दादनपुर प्रयागराज से, ट्रक ड्राइवर।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे मैम, आपका कार्यक्रम सुनते हैं तो और भी अच्छे हो जाते हैं।
0: तो ट्रक चलाते हुए विविध भारती सुनते हैं क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी, बिल्कुल विविध भारती हमारा हमेशा ऑन रहता है।
0: तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि भाई आपका ध्यान विविध भारती की ओर है और आपने अपनी स्टीयरिंग को ढंग से नहीं संभाला? रास्ते में बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना, हाईवे में चलाते होंगे ट्रक तो?
1: बिल्कुल हाईवे में चलाते हैं, लेकिन अपना ध्यान हम लोग रख लेते हैं क्योंकि हमारा काम हमेशा का हो गया है और विविध भारती साथ होता है तो अच्छा लगता है।
0: विविध भारती दोस्त का काम करती है यहाँ पर, है ना?
1: बिल्कुल, कार्यक्रम हम लोग सुनते हैं। और अभी जो पूर्णिमा जी और ये सब कार्यक्रम आपके यहाँ से आया था जो, और उत्तम जंगेल जी जो आए थे आपके यहाँ, वो सभी हम लोग कार्यक्रम सुन रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था, जो कि आप लोगों की प्रस्तुति बहुत अच्छी होती है।
0: क्या बात है।
1: और हम लोग आज के फनकार है, छाया गीत है और गीत माला है, गीतों भरी कहानी है, ये हम सारे कार्यक्रम हफ्ते में जितने कार्यक्रम आपके यहाँ से रिले किए जाते हैं हम सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
0: बिल्कुल सुनते होंगे। ड्राइविंग कितने घंटे करते हैं आप ट्रक की?
1: वैसे तो मैम हम खासकर रात में ड्राइव करते हैं और इसको लगभग 12 घंटा तक हम लोग ड्राइव करते हैं और जहाँ की डिलीवरी आती वहाँ हमें जाना पड़ जाता है।
0: अच्छा, तो रात में जब आप ड्राइविंग करते हैं तो दिन भर सो लेते हैं क्या?
1: हम लोग दिन में आराम कर लेते हैं और रात में अपना जो है सफर करते हैं, या तो अगर दिन में कहीं से डिलीवरी तो हमारे साथ जो एक हमारे सहयोगी होते हैं वो करते हैं।
0: हाँ, लेकिन नींद का तो एक वक्त होता है, जैसे रात में ही नींद आती है, तो इसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं? रात को इतनी लंबी ड्राइविंग करते समय कभी झपकी लग जाए तो?
1: हाँ जी, ऐसा होता है, पहले ऐसा कई बार हुआ था, लेकिन अब हम लोग कई साल से हम लोग जो ड्राइव कर रहे हैं तो ये एक नियम सा पड़ गया है। अब
0: आँखों को भी आदत हो गई है जगने की, है ना?
1: बिल्कुल, दिन भी ऐसा है जो कि

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रही है, नाम बताइए अपना।
1: गोपाल ओझा, ग्राम ककवासा, जिला गुना से। आपसे तो जी मान ली बहुत ही दिनों में बात हो रही है, पहले हुई थी बहुत 3-4 महीने में। अभी तो क्या है, नवरात्रि चल रहे हैं तो फसल भी कट चुकी है हमारी मक्का की, तो जो अभी इकट्ठी करेंगे मक्का निकालेंगे।
0: कब कटी
1: जी? अभी कटी हुआ है, 7-8 दिन होगा जी मान ली।
0: अच्छा, तो नवरात्र का पर्व मना रहे हैं, तो कोई खास होगा इस पर्व में, इन 9 दिनों में क्या करने वाले हैं?
1: नवरात्रि कर रहे हैं जी मान लीजिए, और जो काम में भी बिजी है हम। और हमारे जी मान ली विविध भारती चलता रहता है, देश की सुली लड़काने कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगते हैं। हेलो परमाई सखी सहेली, हेलो सहेली आते हैं 3 बजे, सभी कार्यक्रम जी मान ली चलता रहता है। हमें सेहतनामा आता है 4 बजे, सभी सुनते हैं हम तो जी मानिए।
0: अच्छी बात है आप सुनते हैं, लेकिन हमें बताइए कि आपने कहा नवरात्र का पर्व चल रहा है, इन 9 दिनों के भीतर आपके अंदर कोई बदलाव आया कि मैं अब ये अगली फसल डालने वाला हूँ?
1: फसल ये गेहूँ धनिया लगाएंगे अब।
0: अच्छा, कब लगाने वाले हैं?
1: ये लगाएंगे नवंबर में।
0: तो उसके बीज बीज ले आए हैं?
1: हाँ बीज तो लाएंगे, अभी नहीं लाए, अभी तो थोड़ा लाया खाद।
0: तो बीज के ऑनलाइन लेते हैं, पोर्टल जो आप लोगों का किसानों का पोर्टल है वहाँ बातचीत करके लेते हैं या किसी दुकान से?
1: नहीं नहीं, वो पोर्टल से करते हैं ऑनलाइन।
0: तो अच्छी क्वालिटी का बीज आ जाता है?
1: अच्छी क्वालिटी का आ जाता है। और
0: कौन सा है गेहूं की अच्छी क्वालिटी का बीज?
1: गेहूं का है जी, सोजाता भी है और चल रहे हैं सभी बीज बहुत बढ़िया है। हम तो घर के भी है, घर के भी बो देते हैं।
0: अच्छा, और धनिया के?
1: नहीं धनिया तो हम लेते हैं अभी तो।
0: अच्छा,
1: खरीदते।
0: अच्छा खरीदते हैं। चलिए, कौन सा गाना सुनेंगे आज आप?
1: वो आरजी पिक्चर का सुनना है, सोनू निगम की आवाज में, दुनिया से दूर जा रहा हूँ मैं तेरे पास आ रहा हूँ।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: टेक चंद अग्रवाल बोल रहा था, परासिया चंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: टेक चंद जी, कैसे हैं?
1: हम बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं, आप बताइए क्या करते हैं?
1: सबसे पहले तो मैडम आपको नव दुर्गा पूजा महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हमारे सभी श्रोता मित्रों के साथ।
0: बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत बधाई। बताइए, नवरात्रा का पर्व कैसे मनाते हैं आप? व्रत उपवास रखते हैं, माँ की पूजा करते हैं, या मन में एक शक्ति महसूस करते हैं इन दिनों खास?
1: जी जी बिल्कुल मैडम, क्या है जो ये नवदुर्गा जब आती है तो एक कहना चाहिए 10 दिन जो है कुछ अलग सा अनुभव होता है।
0: इन 9 दिनों में अपने भीतर एक सकारात्मक बदलाव हम महसूस कर सकते हैं अगर चाहें तो।
1: जी जी, कहते हैं मैडम क्या है कि हमारा तो ये मतलब रोजाना का वो है, हम एक सीनियर सिटीजन है, सुबह उठ करके थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक के साथ साथ जब आते हैं तो कुछ अपने दूसरे काम निपटा करके सुबह स्नान वगैरह कर करके पूजा पाठ का जो हमारा रोज का नियम है वो हमारा रोटेशन में ही हैगा। खास तौर पर इन दिनों में जब आता है तो एक पता नहीं कहाँ से एक अद्भुत शक्ति आ जाती है, माता के प्रति हमें आकर्षित करती है।
0: बिल्कुल,
1: ये हमारे संस्कार भी है, साथ में एक संस्कृति भी है जो हमें विरासत में मिली हुई है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी आने वाला जो जनरेशन है उसको भी वैसे ही बरकरार रखे।
0: आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उसे हमें अपनाना है और आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी हमें

0: ये सिखाना है कि इसे बनाए रखना है ना?
1: बनाए रखें
0: जी।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपनी पसंद का गाना बताइए हमको।
1: मुझे सुनवा दीजिए, 1964 की एक फिल्म थी दादी माँ, महेंद्र कपूर और मन्ना डे की आवाज थी इसमें, उसको नहीं देखा हमने कभी।
0: अरे वाह, माँ के नाम है ये गाना। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार नमस्कार, बोलिए अपना नाम क्या है ये तो बता दीजिए पहले।
1: वाराणसी पहड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज टू से मैं श्रोता दंपति अनिल रमा गुप्ता गोंड।
0: बहुत शानदार जगह से बोल रहे हैं आप।
1: अरे मैं शानदार
0: जी बिल्कुल।
1: अभी आप लोगों ने जो प्रोग्राम किया था, जो लाइव आप लोग फेस कर रही थी, और इला अरुण जी को आपने बुलाया था, तो आप तो पहली बार मैंने आपको देखा कि बहुत खूबसूरत है। हम तो मैं आप और चश्मा उश्मा लगाई है।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा।
1: बहुत दिन से तमन्ना थी आपसे बात करने की, वो पूरी हो गई।
0: आप ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पर नंदी गाय घूमती है, सब कुछ आपको हर पल देखने को मिलता है, तो आदिशक्ति माँ को याद कर रहे हैं इन दिनों नवरात्रा के पर्व पर कुछ रखा है?
1: जय अम्बे जगदम्बे माँ, माँ के जगह जगह पंडाल बन रहे। हमारे यहाँ बंगाल के बाद कलकत्ता के बनारस के अंदर ही सेकंड नंबर पे पंडालों का पोजीशन रहता है। बहुत बड़े बड़े पंडाल बनते हैं हमारे यहाँ दुर्गा माता जी के।
0: तो फिर

0: लोग आते होंगे बहुत ज्यादा, क्या माहौल रहता है?
1: जी जी भीड़ तो इतनी रहती है कि जो परिवार वाले लोग हैं, जो बाल बच्चेदार हैं, तो अक्सर यहाँ शाम को रात को ना जाके 2 बजे रात के बाद जब अगली सुबह होने वाली होती है तो भोर में लोग जाते हैं पंडालों के दर्शन करने बच्चों को लेकर।
0: अच्छा, इतनी भीड़ होती है इसलिए।
1: हाँ
0: चलिए गाना बताइए। तो श्रोताओं, तकनीकी कारणों से ये बातचीत किसी कारण से यहीं कट गई है, लेकिन हम विविध भारती जो परिवार है उन्हें सुनवाना चाह रहा है गाना फिल्म कुंवारा बाप का, मैं हूँ घोड़ा ये है गाड़ी। किशोर कुमार और महमूद साहब की आवाजों में ये गीत है। चलिए, तो अनिल साहब के लिए हम ये गीत पेश कर रहे हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मैं रंगापड़ा सोनीतपुर असम से अमल बसुमतारी बात कर रहा हूँ।
0: असम से, असम की चाय हमें बहुत पसंद है, पता है आपको?
1: जी जी जी।
0: और क्या खासियत है असम में बताइए?
1: असम में तो हमारे कामाख्या मंदिर है, शिराखाना है, काजीरंगा पार्क है, बहुत सारे खास है असम में।
0: और वहाँ की जो मेखला चादर है वो मुझे बहुत पसंद है।
1: जी जी।
0: तो अभी बताइए, माँ दुर्गा का पर्व चल रहा है इन दिनों, 9 दिनों में हम नवरात्रि का व्रत।
1: इन दिनों में तो हमारे चाय का खेत है ना, यहाँ पर लगातार काम हो रहे थे और इसमें काम किया।
0: चाय का बागान है आपका?
1: जी, घर में चाय का।

0: बागान है।
1: कौन सी किस्म की चाय?
0: हमारे ये लोकल चाय है।
1: तो चाय की खेती कैसे होती है बताइए ना थोड़ा सा।
0: चाय की खेती तो बहुत हमारे प्रोसेस रहता है। इसका फूल तो जमीन में लगा के उसको छोटा छोटा पेड़ बनाता है, उसके बाद है लगाते हैं उसको
1: जमीन में। क्या क्या डालते हैं चाय की बीज?
0: हाँ हाँ, इसके पाउडर करके जमीन को इसी तरह से बना दे के उसको चाय का खेती बन सकते हैं। उनका फूल है ना चाय का, यहाँ में लगा देते हैं, उसे पैकिंग करके आराम से रखा जाता है।
1: चलिए गाना बताइए।
0: क्रांति फिल्म का गाना सुना दीजिए, दुर्गा माता।
1: तो आइए सुनते हैं फिल्म क्रांति का ये गाना आपकी पसंद पर, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ।

0: मुझे रिश्तों की लंबी कतार से मतलब नहीं है, मुझे रिश्तों की लंबी कतार से मतलब नहीं है, कोई दिल से मेरा हो तो एक शख्स ही काफी है।
1: अरे वाह, क्या बात है, मुकर्रर मुकर्रर।
0: मैं मोहल्ला हलवाईयान, शेरकोट, जिला बिजनौर, यूपी, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद वकार फरीदी बात कर रहा हूँ।
1: स्वागत है आपका, क्या हाल है आपके बताइए।
0: और कम से कम मैम मेरी एक सालों के बाद हेलो फरमाइश में आज कॉल लगी है।
1: अच्छा,
0: सारे प्रोग्राम मैम बहुत अच्छे चल रहे हैं। विविध भारती का मैं बहुत ही पुराना श्रोता हूँ और बचपन से ही मैं विविध भारती सुनता हूँ।
1: कितने समय से?
0: कह लीजिए मैम, मैं कम से कम जब 13-14-15 साल का था ना, उस समय से लेके आज मेरी एज 35 है, अभी तक मैं मतलब विविध भारती सुनता हूँ।
1: तो क्या अच्छा लगा आपको, इतने साल हो गए, आप 35 साल की हो गए हैं।
0: जो बात विविध भारती में मतलब मुझे दिखती है, वो बाकी जो स्टेशन पे हम सुनते हैं, विविध भारती का एकदम सब कुछ एकदम अलग से है, एकदम उसका साउंड, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और उसका जो धुन, ये है विविध।

0: भारती, ये बहुत ही बचपन से मेरे कानों में ये शब्द गूंजते हुए आ रहे हैं और आज तक गूंज रहे हैं।
1: क्या बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप विविध भारती को इतनी शिद्दत से सुनते हैं कि आपको उसकी हर बात बहुत पसंद आती है।
0: और अच्छा। मनचाहे गीत भी मैं सुनता हूँ मैम, बहुत अच्छा लगता है, वो भी दोबारा से स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम, और ज्यादा हमारी खुशी दोगुनी हो गई है।
1: अगर आपको अपनी पसंद का कोई कार्यक्रम पेश करने का मौका मिले, कल्पना कीजिए विविध भारती में, तो आप क्या पेश करना चाहेंगे?
0: मैम अगर मुझे मौका मिले तो मैं तो जो फरमाइशी कार्यक्रम है ना मन चाहेगी उसे प्रस्तुत करना चाहूंगा।
1: क्यों? क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं से जुड़ने का मौका मिलेगा।
0: बहुत सारे श्रोताओं से जुड़ने का मौका मिलेगा और उनके ढेर सारे खत पढ़ने का मौका मिलेगा।
1: बहुत अच्छी बात है, चलिए अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। गाना बता दीजिए कौन सा सुनेंगे?
0: फिल्म का नाम है मैम बंदिश, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पे फिल्माया गया है, 1980 में मूवी आई थी और इसका गीत है, रंग भरे मौसम से रंग चुरा के, आ देखो तेरी मांग में सिंदूर सजा के, रंग भरे मौसम से रंग

आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222 2867 0288, दूसरा नंबर है

0: 9022 4006662। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। तकनीकी सहयोग समृद्धि नायक, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।

हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। अभी तक आप सुन रही थी विविध भारती के हमारे मुंबई केंद्र से कार्यक्रम हेलो फरमाइश। श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे हमारे मुंबई केंद्र से ही रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार, और आज के फनकार होंगे संगीतकार शंकर जयकिशन के शंकर। इस समय शाम के 5:00 को हैं। आकाशवाणी दिल्ली से अब हम आपके लिए रिले करेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की पांच प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि 2047 से पहले विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में महिला शक्ति की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और कई केंद्रीय तथा राज्य मंत्रियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिल्ली के बाहर पहली बार विजयवाड़ा में आयोजित हो रहा सरस मेला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों के विपणन के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आयुर्वेद को वैज्ञानिक अनुसंधान

0: अनुसंधान, साक्ष्य आधारित प्रमाणीकरण और आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के साथ जोड़कर सशक्त किया जाना चाहिए। नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय कौमार वृत्ति सम्मेलन कौमारकॉन 2026 में उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि सरकार बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाने के लिए साक्ष्य आधारित आयुर्वेद को मजबूत करने और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए भारी वजन वाले टॉर्पिडो वरुणास्त्र की खरीद के लिए 4000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। GSAT-7C उपग्रह के लिए 2500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित ये उपग्रह भारतीय वायुसेना की सुरक्षित और निर्बाध संचार क्षमता को मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए लोगों को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस वर्ष 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया था और अब देश से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी 2026 की उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों के जवाबों को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। भारत ने अमरीका के इलिनॉय राज्य के अरोरा क्षेत्र में एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाकर सामूहिक गोलीबारी की कथित खबरों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हिंदू विरोधी तथा नस्लवादी प्रकृति के साथ भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ हिंसा चिंताजनक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 5:05 हुए हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Piles से मुक्ति पाएं.
1: और अब हमारे श्रोता सुनेंगे कुछ फिल्मी गीत. सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं कल आज और कल फिल्म के लिए. शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में किशोर कुमार का गाया ये गीत.

अराउंड द वर्ल्ड, आइए सुनते हैं इस फिल्म के लिए मुकेश और शारदा का गाया गीत। ये है इस कार्यक्रम का अंतिम गीत।

आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी गीत। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं श्रोताओं। 5:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हाय दोस्तों, स्वागत है आपका लम्हे प्रोग्राम में और मैं हूँ आपका आरजे चेतन। आसपास के वातावरण साफ सुथरा हो तो किसे अच्छा नहीं लगता है, और इसमें नगर निगम और स्वच्छता कर्मी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वो तो अपने तरफ से पूरा योगदान देते हैं, परंतु इसके बावजूद कुछ लोग गंदगी और कचरा करने से बाज नहीं आते। वो भी इंसान ही है, आखिर कितना साफ करेंगे। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास को साफ रखने की जिम्मेदारी स्वयं ही करना है, ताकि साफ सफाई से हम स्वस्थ रहे और हमारा वातावरण भी स्वच्छ रहे। आसपास की रखो सफाई, इसमें हम सबकी भलाई। स्वच्छ रखेंगे वातावरण, स्वस्थ रहेंगे हम हर पल हर क्षण। घर को हर दिन करें सफाई। हमें हमारे घर के हर रोज सफाई करना चाहिए। वह कचरा इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, इससे कीटाणु पनपते हैं और बीमारियां फैलती है। घर में कुछ ऐसे कोने होते हैं जिसे नियमित रूप से सफाई करना चाहिए, जैसे रसोई घर जहां हमारा भोजन इत्यादि बनता है, उसकी सफाई नियमित होना चाहिए। बर्तन को अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए। गैस स्टैंड बर्तन रखने की जगह सभी जगह साफ करना चाहिए। रोज किचन की झाड़ू लगाना चाहिए, ताकि खाने के साथ हम कोई गंदगी अपने खाने में आने न दे और साफ सुथरा भोजन ही खाए, साफ सुथरा किचन रखे। नियमित पोंछा और धोने जैसे सामान को धोए, बाथरूम को रोज साफ करें, दीवारें साफ करें, कुछ अच्छे से एंटीमाइक्रोबियल यूज करके साफ करें तो और भी अच्छा है। जहाँ हम हमारी गाड़ी रखते हैं वहाँ रोज झाड़ू लगाए और बगीचे में सफाई रखे हो, कोई भी कचरा और प्रयोग में न आने वाले सामान को इकट्ठा न होने दे। यदि हम हमारे किचन बाथरूम और पूरे घर में साफ सफाई नहीं रखेंगे तो चचुंडर कॉकरोच मक्खी चीटियां मच्छर आदि पनपते हैं, और साफ सफाई में अगर हम लापरवाही बरतते हैं, बर्तन और अन्य सामानों के साथ ये गंदगी हमारे मुंह में जाते हैं, जिससे हमें कई तरह की बीमारियां पकड़ लेते हैं। यदि मच्छर पनपते हैं तो मलेरिया कॉलरा निमोनिया पीलिया या सब बीमारी होती है जो कि गंदगी की वजह से फैलती है। इसीलिए हमें हमारा घर और आंगन की सफाई पर नियमित ध्यान देना चाहिए। इसीलिए पूरे घर पर नियमित झाड़ू और पोंछा लगाना चाहिए। दोस्तों, आपके सुझाव सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। धूल इत्यादि को पहुंचने और बगीचे में कहीं भी पानी नहीं होने देना चाहिए। किसी भी तरह की गंदगी बीमारी का लक्षण होता है, इसीलिए बचना चाहिए और नियमित साफ सफाई करना चाहिए। कुछ लोगों का सोचना है कि जहां गरीब व्यक्ति रहते हैं वही ज्यादा गंदगी होती है, परंतु ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि गरीबी और साफ सफाई का दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। गरीबी तो इंसान की मजबूरी है, परंतु सफाई तो उसकी जिम्मेदारी है। इसके लिए अमीर या गरीब मायने नहीं रखता, और घर की साफ सफाई में सबकी बराबरी से हाथ बांटने की मंशा होनी चाहिए। केवल घर के बड़े, जिसमें माँ होती है, माँ घर के हर काम को करती है, तो क्या ये घर केवल माँ का होता है? उसमें रहने वाले सभी सदस्यों का नहीं होता है। इसीलिए सभी सदस्यों को मिलजुल कर इसकी जिम्मेदारी उठाना चाहिए, और यह सोच परिवार के हर सदस्य के नजरिए पर निर्भर करता है।

0: बचपन से ही बच्चों की देखभाल माता पिता और घर के अन्य सदस्य करते हैं, लेकिन बच्चे जब थोड़े बड़े होने लगते हैं तो उन्हें आपको सिखाना होगा कि साफ सफाई रखना जरूरी है। बचपन से ही उसे अपनी सफाई की शिक्षा दे, साथ ही उसे अपने आसपास की जगह को साफ रखना सिखाए। उसे बताए कि अगर साफ सफाई नहीं रखी जाएगी तो बीमारी होगी और बीमारी होगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए उसे बताए कि अपनी साफ सफाई रखे और अपने आसपास की जगह को भी साफ रखे। साफ सफाई में अपने बड़ों की मदद करे, इससे वह भी साफ सफाई करना सीखेगा और स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। साफ सफाई इंसान की फितरत होती है। वह अपने घर के आसपास तो साफ रखते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं घर ही को अपना समझते और अपने घर के बाहर झूठा और जो भी कचरा होता है उठाकर बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी केवल घर के अंदर तक ही सीमित है। इसीलिए अपना फर्ज भूल जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि सड़क, अपने घर का बगीचा साफ रखना उनकी जिम्मेदारी है। सड़क से ही गंदगी हमारे घर तक आती है और इसके साथ ही कई तरह की बीमारियां भी लेकर आती है। इसीलिए स्वयं साफ सफाई रखें और जो कर्मचारी और नगर निगम की गाड़ियां आती है उसमें अपने घर को साफ रखकर उन्हें अपना पूरा योगदान प्रदान करें। इस प्रकार हम हमारे घर के और आसपास की सफाई हमारे स्वास्थ्य के साथ ही वातावरण को भी साफ रखते हैं और इसका प्रथम पाठ हम हमारे घर से ही मिलता है। यदि हम हमारे घर को और हमारे आसपास के वातावरण को साफ रखेंगे तो धीरे धीरे शहर और शहर देश सभी जगह सफाई दिखने लगेगा। प्रदूषण में जमा हमारे देश की गिनती निचले स्तर पर की जाती है, वही हमें आगे और आगे प्रथम स्थान पर लाना होगा और इसकी शुरुआत हमें हमारे आसपास के वातावरण से शुरू करना होगा। देश की सफाई एकमात्र सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है। क्या इसमें नागरिकों की कोई भूमिका नहीं है? हमें इस मानसिकता को बदलना होगा। विद दिस लवली कोट, दिस इज चेतन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे इन लम्हे प्रोग्राम। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, बाय। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है।

हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं श्रोताओं। आपको हम बताना चाहेंगे हमारे केंद्र से आज शाम 6:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम समाचार दर्शन। प्रादेशिक मुख्य समाचार भी हम आपके लिए प्रसारित किया करते हैं, ये आप सुनेंगे।

ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके मित्र अजीत का नमस्कार जोहार। तो आइए सुनते हैं सुविचार हमेशा की तरह। तो हमें सुविचार भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह की पहली किरण दिखाई देती है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस उम्दा संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला संदेश। लिखते हैं, उद्घोषक विमलेश जी और अजीत जी नमस्कार। हम छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू और सतीबाई साहू हैं। आपको बताना चाहते हैं कि उमंग एनसीईआरटी का कार्यक्रम बहुत हमें पसंद है। हम सादर आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपके लिए प्रकट करते हैं। साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल और संतोषी पटेल जी का। लिखते हैं, विमलेश जी, अजीत जी, सादर नमस्कार। 14 सितंबर दिन सोमवार का कार्यक्रम बहुत ही खास और शानदार रहा। टिम टिम तारा बोलो टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा। इस गीत ने मन मोह लिया। पूरा कार्यक्रम बेहद रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक लगा। बच्चों के लिए ऐसी सुंदर और सीख देने वाली प्रस्तुति के लिए आप दोनों को और साथ ही साथ सीआईटी एनसीईआरटी की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। धमथा ग्राम सुखनी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी का। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। और एक संदेश और हमें मिला है, लिखते हैं, रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू जी का। एक संदेश और सुनते हैं जिसे लिखा है हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी ने। और आपने लिखा है करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से। लिखते हैं, विमलेश जी एंड अजीत जी, गुड मॉर्निंग। इट वॉज ए ग्रेट प्लेजर टू लिसन टू द पोएम द क्रो इन म्यूजिकल मैनर टूडे। What a coincidence it is that I read this poem in my childhood in the textbook and got it listened to it in a musical form. I liked this poem and song very much. Thank you very much. आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो आइए श्रोताओं, अब शुरू करते हैं एक और रोचक आविष्कार की कहानी। श्रोताओं, सच्चाई तो ये है कि हम इंसान भी बड़े अजीब हैं, है ना? जब कोई तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आम हो जाती है ना, तो हम भूल ही जाते हैं कि उसने दुनिया को कैसे बदल दिया। अब पेन ड्राइव को ही लीजिए ना, छोटी सी उंगली भर का टुकड़ा है, लेकिन इसके अंदर हमारी पूरी पढ़ाई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हजारों तस्वीरें और न जाने कितने वर्षों का डेटा बंद है। लेकिन श्रोताओं, जिसे आज हम इतनी आसानी से जेब में डालकर घूमते हैं ना, 25-30 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी सी चीज अलमारी भर की भारी भरकम फाइलों को चुटकी में निगल लेगी। आपको याद होगा 90 के दशक का वो दौर जब कंप्यूटर क्लास या दफ्तरों में हम वो चौकोर पतली काली फ्लॉपी डिस्क

कर घूमते थे, है ना। जरा सी धूल लगी या बैग में मुड़ी तो सारा काम खत्म। और फ्लॉपी की कुल क्षमता कितनी थी आपको पता है? महज 1.44 मेगाबाइट, यानी MB। यानी आज के दौर में एक MP3 गाने का आधा हिस्सा भी उसमें ठीक से नहीं आ सकता। आज हमारे पास चलता फिरता डेटा बैंक है, यानी पेन ड्राइव। पता है श्रोताओ, इसका आविष्कार हुआ था एक आविष्कारक के भयंकर गुस्से और शर्मिंदगी के कारण। किस्सा है साल 1998 का। इजराइल के एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, नाम था डोब मोरान। उनकी अपनी एक छोटी सी कंपनी थी। वे कंपनी को बड़ा करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें कुछ बड़ी धनराशि की जरूरत थी। मोरान अपनी कंपनी के लिए धन जुटाने के लिए अमेरिका पहुंचे। वहां एक नामी निवेशक के सामने उन्हें अपना प्रेजेंटेशन देना था। तो हुआ ये कि मोरान बड़े आत्मविश्वास के साथ मीटिंग रूम में पहुंचे, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त पर उनका लैपटॉप चालू ही नहीं हुआ। मोरान घबरा गए। घबरा कर उन्होंने वहां मौजूद दूसरे कंप्यूटर में अपनी फ्लॉपी डिस्क लगाई और फिर वही हुआ जिसका डर हर कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले को होता है। जानना चाहते हैं क्या हुआ? हुआ ये कि स्क्रीन पर लाल लाल बड़े बड़े अक्षरों में लिख कर आ गया, डिस्क करप्टेड। श्रोताओं, वो बड़ा निवेशक घड़ी देखता रहा, मोरान पसीने पसीने होते रहे। पूरी तरह से उन्होंने कोशिश किया कि वो फ्लॉपी डिस्क खुल जाए, लेकिन डेटा नहीं खुला। अंत में निवेशक आई एम सॉरी बोलकर चल दिया। मीटिंग रद्द हो गई और मोरान को उस कमरे से सिर झुकाकर बेहद शर्मिंदा होकर निकलना पड़ा। तो साथियों, उस शाम होटल लौटते हुए डॉन मोरान गुस्से और लाचारी से भरे हुए थे। उन्होंने टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से एक सवाल पूछा, क्या इंसान ऐसा कोई छोटा मजबूत और भरोसेमंद साधन नहीं बना सकता जो चाबी के गुच्छे की तरह जेब में आ जाए और जिसका डेटा कभी खराब ना हो? बस उनके इसी विचार ने पेन ड्राइव की नींव रख दी। यानी असफलता ही नए विचार की चिंगारी बनी। लेकिन ये हुआ कैसे? श्रोताओ, इसके लिए आपको थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी तकनीकी जानकारी देते हैं। आपको पता होना चाहिए, उस दौर में कंप्यूटर की दुनिया में दो नई चीजें दस्तक दे रही थीं। पहली थी USB पोर्ट, जिसका इस्तेमाल उस समय लोग सिर्फ माउस या कीबोर्ड जोड़ने के लिए करते थे। और दूसरी थी फ्लैश मेमोरी, यानी ऐसी चिप जिसके कारण बिजली चले जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता था। तो डॉब मोरान ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए। मोरान और उनकी टीम ने फ्लैश चिप और USB कनेक्टर को अंगूठे जितने छोटे खोल में फिट कर दिया। ना किसी तार की जरूरत, ना किसी बैटरी की, और उन्होंने उसे कंप्यूटर पर लगाया। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, कंप्यूटर का कुछ डेटा वहां ट्रांसफर हो चुका था। उन्होंने उसका नाम रखा डिस्क ऑन की, यानी चाबी के छल्ले में लगने वाली डिस्क। आपको पता है श्रोताओं, उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी थी? अंदाजा लगाइए। शायद आप सोचते होंगे 1GB या 2GB, आपके अलग अलग अनुमान होंगे, लेकिन श्रोताओं आपको बताना चाहता हूं, उसकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी थी मात्र 8MB, यानी 8 मेगाबाइट। आज तो 8MB में हमारे फोन से खींची गई एक अच्छी सी फोटो भी नहीं आती। भले ही ये आज कम लगे, लेकिन श्रोताओं उस वक्त ये 8MB पूरे 5 फ्लॉपी डिस्क के बराबर थी। और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये फर्श पर गिर भी जाए तो इसका डेटा सुरक्षित रहता था। लेकिन श्रोताओं, अब प्रश्न है, अमेरिका और पश्चिमी देशों में इसे USB फ्लैश ड्राइव या थंब ड्राइव कहा जाता है, तो ये भला पेन ड्राइव कैसे बन गई? इसका नाम पेन ड्राइव कैसे पड़ा? ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है। जब ये तकनीक एशियाई बाजारों में आई तो कई कंपनियों ने इसे पतले मार्कर पेन जैसा आकार दिया, जिसमें पीछे एक क्लिप होती थी, और लोग उसे शर्ट की जेब में पेन की तरह रख लेते थे। बस हमारे लोगों ने देखा और झट से नाम रख दिया पेन ड्राइव। और इस नन्ही सी ड्राइव ने ना जाने कितनी चीजों की छुट्टी कर दी। इसने फ्लॉपी डिस्क को सीधे म्यूजियम पहुंचा दिया। जो लोग बैग में CD और DVD के भारी भारी कैसेट लिए घूमते थे, जिन पर जरा सी खरोंच आते ही गाने अटक जाते थे, पेन ड्राइव ने इन सब का नामो निशान मिटा दिया। और आज तो कमाल हो गया है श्रोताओ, 8MB से शुरू हुआ पेन ड्राइव का ये सफर आज 1 TB और 2 TB तक पहुंच चुका है। यानी पूरी दुनिया का ज्ञान, फिल्में और किताबें एक छोटी सी उंगली के पोर जितनी जगह पर समा सकती है। तो अब जरा सोचिए श्रोताओ, अगर 1998 की उस शाम डॉब मोरान की वो फ्लॉपी डिस्क खराब ना हुई होती, तो शायद हम आज भी फ्लॉपी डिस्क और नाजुक CD के जंजाल में ही उलझे होते। जी हाँ श्रोताओ, यही तो है विज्ञान की खूबसूरती। जब कोई भी इंसान किसी परेशानी से तंग आकर एक बेहतर विकल्प ढूंढने की ठान लेता है, तो शुरू होता है

0: नवाचार और दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएं तो 1998 की उस शाम को कभी ना भूलें जिस दिन फ्लॉपी डिस्क खराब हो गई थी और डॉब मोरान ने इस बात को ठान लिया था कि वो इसका विकल्प ढूंढ कर ही दम लेंगे। तो श्रोताओ, आज के लिए बस इतना ही। तो सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम उमंग और सीखते रहिए नई नई बातें। तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आम की गुठली। कक्षा 3 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पौधरोपण का संदेश दिया गया है तथा ये बताया गया है कि मात्र पौधा रोपना ही पर्याप्त नहीं है, पौधे की समुचित देखभाल भी की जानी चाहिए।
1: एक दिन अम्मा बाजार से बच्चों के लिए आम लाई। 1 किलो में 7 आम आए। आम छोटे छोटे और खूब रसीले थे। अम्मा ने उन आमों को धोकर फ्रिज में रख दिया और बच्चों से कहा,
2: शाम को अब्बा दफ्तर से आएंगे तब तक फ्रिज में आम भी ठंडे हो जाएंगे। रात के खाने के बाद हम आम खाएंगे।
1: मुन्ने को आम बहुत पसंद थे। थोड़ी देर में अम्मा, सीमा और समीर दूसरे कमरे में चले गए। अब 4 साल का शरारती मुन्ना कमरे में अकेला रह गया। उसने इधर उधर देखा तो आसपास कोई ना था। मुन्ने ने मौका पाकर चुपके से फ्रिज खोलकर एक आम उठा लिया और खूब मजे लेकर चूस चूस कर खाया।
3: इतना मीठा आम है, ये आम खाके तो मजा आ गया।
1: फिर मुन्ने ने हाथ मुंह धोकर कुल्ली कर ली और दूसरे कमरे में जाकर दादा दादी के साथ बातें करने लगा। शाम को अब आए। दादा दादी के साथ बैठकर सबने रात का खाना खाया। खाना खाकर अम्मा ने जब फ्रिज से आम निकाले तो 7 की जगह सिर्फ 6 आम थे। अम्मा ने बच्चों से पूछा,
2: क्या आप में से किसी ने 1 आम खाया है?
1: सीमा और समीर ने इनकार में अपनी गर्दनें हिलाई।
3: नहीं अम्मा, हमने तो फ्रिज खोला ही नहीं।
1: मुन्ने को शर्म आ रही थी, फिर भी जी कड़ा करके उसने कहा,
3: नहीं, मैंने तो आम नहीं खाया।
1: अब्बा बच्चों का इनकार सुनकर मुस्कुराए और कहा,
4: आम तो आप लोगों के लिए ही आए थे, अगर आप में से किसी ने 1 आम खा भी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इन आमों की गुठलियाँ बहुत छोटी थी। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि अगर किसी बच्चे ने आम की गुठली भी निगल ली होगी तो आज रात उसके पेट में बड़े जोर से दर्द होगा।
1: इतना सुनना था कि मुन्ना झट से बोल पड़ा,
3: नहीं नहीं अब्बा, गुठली तो बड़ी थी, मैंने तो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था।
1: ये सुनकर सारे लोग हंस पड़े।

0: मुन्ना शर्म से लाल हो गया। पास ही बैठी दादी जान ने कहा,
1: अरे वाह, मेरे मुन्ने ने सच को कबूल करके मेरा दिल जीत लिया।
2: तो बच्चों, आपने सुनी ये कहानी, अच्छी लगी ना? अच्छा, अब आपके लिए कुछ सवाल हैं। ऐसे कौन कौन से फल हैं जिनकी गुठली फलों के अंदर होती है, उसकी एक फेहरिस्त बनाइए। ऐसे कौन कौन से फल हैं जो सिर्फ गर्मियों में मिलते हैं, बीज, पत्ती, फूल और फल, इनके आने की सही तरतीब क्या है। आपने कौन कौन से आम खाए हैं, उनके नाम लिखिए। इन सवालों के जवाब आप अपने वालिदैन, दोस्त और अहबाब से भी चर्चा कर सकते हैं।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम आम की गुठली, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। इस कार्यक्रम में भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान बहादुरी से अंग्रेजी साम्राज्य का सामना करने वाले और अपना प्राण न्योछावर करने वाले वीर किशोर जोरावर सिंह के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।
0: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
4: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
5: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है, और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
6: वीर जोरावर की जय! वीर जोरावर की जय! जय जेरापुर, जय भारत!
7: जय जेरापुर, जय भारत!
4: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
0: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
4: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे, और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
0: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
8: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा, ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
5: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
8: जी।
5: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
8: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
5: बिल्कुल।

0: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
1: जी मंत्री जी।
0: जी महाराज।
2: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
3: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
4: जोरावर सिंह कहा जा रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह
2: आइए हमारे दोस्त। तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
1: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
2: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
1: देखिए निजाम साहब।
2: जी फरमाइए।
1: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं।
2: जी,
1: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाएं।
2: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं।
1: जी,
2: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
5: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
2: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
6: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
7: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
8: बिल्कुल।
7: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साये की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
8: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
7: लेकिन जरा होशियारी से।
8: जो हुकुम सरकार।

0: तरफ से गिर चुके हो।
1: ये क्या है?
0: You are under arrest.
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ। आओ सामने।
0: बहुत हो गई तुम्हारी बहादुरी।
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी।
1: छोड़ो मुझे।
0: हाथ
1: मत लगाओ मुझे। मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
0: शाबाश, शाबाश, सारा जंग। मैं खुश हुआ। तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा।
3: हुजूर।
1: अच्छा।

0: तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
1: चलो इसको,
2: छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे।
3: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
4: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
5: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
0: अप्पा ये नहीं हो सकता।
5: देखो तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
0: ये नामुमकिन है।
5: Why?
0: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
5: तो नहीं मानोगे। देखो आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा
0: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
5: एक्चुअली यू आर अ फूल।
3: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
4: काला पानी की सजा?
3: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
4: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
3: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
0: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
4: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
6: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अरशद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की प्रशंसा की है। नई दिल्ली में आज एशियाई खेल में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पुरुष और महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है।
1: इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे। हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है। कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता। इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता, एथलेट्स ने नए रिकॉर्ड, 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद आज ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि 2047 से पहले विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिल्ली के बाहर पहली बार विजयवाड़ा में आयोजित हो रहा सरस मेला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत G7 7C संचार उपग्रह और भारतीय वायुसेना नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अम्बारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 की मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए लोगों को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस वर्ष 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया था और अब देश नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा

0: कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी 2026 की उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों के उत्तर सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधी की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए। अमेरिका के लास वेगस में विश्वजीत रामचंद्र मोर ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। चैंपियनशिप में पहली बार किसी भारतीय पहलवान ने पदक हासिल किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz ਤੇ।

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Piles से मुक्ति पाएं।
1: जब सीलन से छुटकारा पाना हो और घर ऑफिस को सजाना हो तो आज ही आइए अरोड़ा अप्लाई।
2: WPC, PVC, वॉल पैनल, सीलिंग, एक्शन जैसा वुडन फ्लोरिंग, HDH, MR बोर्ड, सनमाइका और प्लाईवुड के लिए अरोड़ा प्लाईवुड एट SCO 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
3: आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो हुण तुसी सुनोगे एक हिंदी फिल्मी गीत। ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਉਦਿਤ ਨਾਰਾਇਣ ਤੇ ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ।

0: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz 'ਤੇ। ਸਰੋਤਿਓ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ 6:10 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਤੇ 6:20 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰੀਲੇ ਕਰਾਂਗੇ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने शाहबाद में केंद्र और राज्य सरकार की विशेष मुहिम के तहत किसानों को उनके हाथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसी प्रदान की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारत और स्वीडन के बीच नवाचार, व्यापार, शिक्षा और औद्योगिक सहयोग को मजबूत बनाने पर जोर दिया। हरियाणा के राज्य स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी संचालन समिति ने लगभग 738 करोड़ रुपए की दो प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी और हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नागरिकों से अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करवाने का आह्वान किया। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि 2047 से पहले विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिला शक्ति की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।
2: महिलाएं पीछे रह जाते थे आर्थिक रूप से, केवल परिवार का देखभाल, परिवार का सहयोग ही करते थे, छोटे छोटे चीजों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते थे, लेकिन आज वो आत्मनिर्भर बन गए। केवल आत्मनिर्भर नहीं, दूसरों का भी और सहारा देने वाले बन गए। ये केवल उनके इनकम नहीं है, ये देश का आर्थिक समृद्धि, देश का महिलाओं का विकास भी ये समाहित है।
1: हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आज शाहबाद में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का आयोजन किया गया। समारोह में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने मुख्य अतिथि के रूप में किसानों को उनकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसी प्रदान की। श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि किसान को पारदर्शी तरीके से उसकी पॉलिसी उसके हाथ में मिले। इसी सोच के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान शुरू किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पूरे भारत में हर पात्र किसान को उसकी फसल बीमा पॉलिसी उसके हाथ में देने के लिए एक महीने के लिए विशेष मुहिम चलाई है।
3: हमारे अधिकारी मेरी फसल मेरा ब्यौरा के साथ साथ मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, तो एक महीना चलाएंगे, किसानों को खुद उनके हाथ में देंगे पॉलिसी और उनको पढ़ेंगे ताकि उनको पता लगेगा भाई हम कौन कौन सी परिस्थिति के अंदर जो नुकसान होता है उसकी भरपाई कैसे होगी। बहुत थोड़े से पैसे में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजना है, दोनों किस्त सरकार देती है, उनकी नाम मात्र का 2-1.5% केवल हमारा किसान देगा।
1: श्री राणा ने बताया कि कुरुक्षेत्र जिले में अभी तक पराली जलाने की एक भी घटना सामने नहीं आई। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने सभी किसानों को न पराली जलाएंगे न जलाने देंगे की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि सरकार पराली प्रबंधन के लिए सब्सिडी पर मशीनें दे रही है, इसलिए किसानों को पराली को आग लगाने के बजाय उसका सही प्रबंधन करना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वीडन में आयोजित इंडिया स्वीडन इनोवेशन डे 2026 कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भारत और स्वीडन के बीच नवाचार, व्यापार, शिक्षा और औद्योगिक सहयोग को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वीडन के साथ व्यापार वर्ष 2016 के 286 करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2025 में 775 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो गया है और अगले

0: पांच वर्षों में इसे दोगुना करने का लक्ष्य है। उन्होंने गुरुग्राम में आईकिया की परियोजना और झज्जर में कार्ल गुस्ताफ विनिर्माण संयंत्र का जिक्र करते हुए स्वीडिश कंपनियों को राज्य में निवेश का न्योता दिया। उन्हें हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 व अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आने का निमंत्रण भी दिया गया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के राज्य स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी संचालन समिति आईटी प्रिज्म ने लगभग 738 करोड़ रुपए की दो प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य की साइबर सुरक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण करना तथा डिजिटल शासन के बुनियादी ढांचे को अधिक सुरक्षित, सक्षम और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना है। इन परियोजनाओं में 269 करोड़ रुपए के हरियाणा डिजिटल कवच सुरक्षा संचालन केंद्र परियोजना तथा 470 करोड़ रुपए की हरियाणा राज्य डेटा केंद्र परियोजना 2.0 शामिल है। इनके माध्यम से सरकारी डेटा की सुरक्षा मजबूत करने, ऑनलाइन जनसेवाओं की विश्वसनीयता बढ़ाने और राज्य के तेजी से बढ़ते डिजिटल तंत्र के लिए मजबूत तकनीकी आधार तैयार करने में मदद मिलेगी। अंबाला छावनी अनाज मंडी में अब तक 2,75,000 क्विंटल धान की आवक हुई। मंडी सचिव नीरज भारद्वाज ने बताया कि कुल आवक में से सरकारी एजेंसियों द्वारा 2,28,000 क्विंटल धान की खरीद कर ली गई है और 1,28,000 क्विंटल धान का उठान भी पूरा हो गया है। श्री भारद्वाज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि फसल को भीगने से बचाने के लिए पूरे प्रबंध किए गए हैं।
1: आज सुबह अनाज मंडी वाला छापने में बारिश हुई थी, आरतियों के द्वारा जीरी की फसल उनको अच्छे से कवर करके रखा गया था और पूरा प्रयास किया गया था कि जीरी भीगे नहीं। यदि किसी लो लाइन एरिया पानी था भी तो उसको निकाल दिया गया है ताकि जीरी खराब होने की और कोई संभावना ना बचे। अभी तक किसी फार्मर से कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि जीरी की फसल को नुकसान पहुंचा हो।
0: उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने और लंबे इंतजार से बचने के लिए अपनी फसल को अच्छी तरह सुखा कर ही मंडी में लाएं। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने और हरित भविष्य के लिए नागरिकों से अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करवाने का आह्वान किया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को स्क्रैप करवाने की सुविधा पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों पर उपलब्ध है। तय समय सीमा से अगर पुराने पंजीकृत वाहनों के मालिक स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों पर जाकर वाहन को स्क्रैप नहीं कराते हैं तो नियमानुसार उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आज करनाल स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में आयोजित होने वाले नवोदित विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सम्मेलन 2026 में अपनी भागीदारी को लेकर सम्मेलन पूर्व कार्यक्रम एवं परिचर्चा का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की जाएगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ एम एल जाट ने बताया कि सम्मेलन में एग्रीटेक, खाद्य प्रणालियां और पोषण विषय पर विशेष फोकस रहेगा। इसके तहत कृषि प्रौद्योगिकी, खाद्य उत्पादन, खाद्य प्रणालियों और पोषण से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर 17,951 रुपए का बोनस देने की घोषणा के बाद कर्मचारियों में जबरदस्त खुशी का माहौल है। इस फैसले से देश के करीब 11,40,000 गैर राजपत्रित कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के अध्यक्ष ने त्योहारों के सीजन में सरकार के इस कदम पर खुशी जाहिर करते हुए आभार जताया।
2: सरकार ने कर्मचारियों के लिए 17,951 रुपए का जो बोनस अलाउंस है उससे सभी कर्मचारी इस त्योहारी सीजन में बहुत खुश है। समय से बोनस मिला है और जिससे वो अपने अच्छे त्योहार मना पाएंगे। इसमें 11,40,000 जो गैर राज है उससे लाभ हम सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं।
0: यूनियन नेताओं का कहना है कि इस प्रोत्साहन राशि से रेलवे कर्मचारियों का मनोबल और बढ़ेगा, साथ ही वे पूरी निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में 17 अक्टूबर से ओपीडी के लिए पूर्व पंजीकरण सुविधा शुरू की जाएगी। मरीज घर में ही पूर्व पंजीकरण कर सकेंगे। इसके लिए क्यूआर कोड स्कैनिंग की सुविधा भी रहेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रघुवीर शांडिल्य ने यह जानकारी

देखते हुए बताया कि सर्दियों के लिए अस्पताल का समय 16 अक्टूबर से सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने शाहबाद में केंद्र और राज्य सरकार की विशेष मुहिम के तहत किसानों को उनके हाथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसी प्रदान की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारत और स्वीडन के बीच नवाचार, व्यापार, शिक्षा और औद्योगिक सहयोग को मजबूत बनाने पर जोर दिया और हरियाणा के

0: जागरूकता पहल और जानकारी ले सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट पे विजिट करो या सेबी साथी ऐप डाउनलोड करो।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली च एशियन खेडां 2026 च हिस्सा लैण वाले भारतीय दल नाल गलबात कीती। कहा, खिडारियां ने तमगे जित के देश दे करोड़ां देशवासियां दा मान वधाया। सर्वोच्च अदालत दा फैसला, इस्लाम धर्म अपनाउण वाले हिंदू पछड़े वर्गां लई राखवेंकरण दा लाभ नहीं लै सकते। नशा विरोधी कारकुन परविंदर सिंह छोटा दे कतल मामले विच मुख मुलजम कैमिस्ट अश्विनी कुमार ते उसनू पनाह देण वाले साथी विपिन गर्ग नू 22 अक्तूबर तक पुलिस हिरासत विच भेजा गया। केंद्र सरकार वल्लों फाजिलका च सीन दे पक्के हल लई पहलकदमी। बीजेपी पंजाब दे सूबा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने किया स्वागत। पंजाब पुलिस ने अज अमृतसर ते मोहाली च दो वख वख कारवाइया च 23 पिस्तौल, 2 हथगोले, 1 असॉल्ट राइफल ते गोला बारूद बरामद किया। अते भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मूर ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप ते ग्रीको रोमन फाइनल च चांदी का तमगा जीत के इतिहास रचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवी दिल्ली च एशियन खेडां 2026 विच हिस्सा लैण वाले भारतीय दल नाल गलबात की थी। इस मौके संबोधन करदिआं श्री मोदी ने कहा कि खिडारियां ने तमगे जीत के देश दे करोड़ां देशवासियां दा मान वधाया है।
2: आपने 140 करोड़ देशवासियों को गौरव का मौका दिया, क्योंकि सबसे बड़ी सफलता अगर कुछ होती है तो वो है तिरंगे की शान बढ़ाना। आपने तिरंगे की शान बढ़ाई है, तिरंगे का मान बढ़ाया है, और इसलिए आपकी सफलता केवल आपकी नहीं है, ये देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों की सफलता है। मैं सभी देशवासियों की ओर से और आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: जिक्र योग है कि भारत जापान के आईची नगोआ च हुई एशियाई खेडां च तमगा सूची विच चौथे स्थान ते रहा, जिस विच 21 सोने, 27 चांदी ते 37 कांसी दे तमगे शामिल ने। सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाया है कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म छाड़ के इस्लाम या किसी होर गैर हिंदू धर्म च चले जाते हैं वह पछड़ी श्रेणी तहत राखवेंकरण के फायदों का दावा नहीं कर सकते। मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले खिलाफ तमिलनाडु सरकार की पटिशन नू खारज करते हुए जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ते जस्टिस चंद्रशेखर की बेंच ने कहा कि धर्म बदलन तो बाद किसी पुरानी जात के समाजिक पछड़ेपन को अगे नहीं बताया जा सकता। अदालत ने ऐलान किया है कि संविधान की धारा 16(4) के तहत मिलन वाले कानूनी फायदे सिर्फ किसी व्यक्ति के धर्म बदलन तो पहला वाले दर्जे के आधार पर नहीं दिते जा सकते। अदालत ने यह भी दोहराया कि हिंदू सिख या बौद्ध धर्म को छोड़ के किसी होर व्यक्ति को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त नहीं है। नशा विरोधी कारकुन परविंदर सिंह जोटा के कतल मामले में मुख मुलजम कैमिस्ट अश्विनी कुमार ते उसनू पनाह देने वाले साथी विपिन गर्ग नू 22 अक्तूबर तक पुलिस हिरासत विच भेज दिता गया। मानसा पुलिस ने आज दोवां नू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही मुख न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत विच पेश करके रिमांड हासिल किया। पंजाब सरकार ने मानसा दी SHO बेअंत कौर नू भी मुअत्तल कर दिता है। इस दौरान पंजाब बंद का मिलिया जुलिया हुंगारा मिलिया ते इस शांतिपूर्वक ढंग नाल समाप्त होया। वेरवे नाल एक रिपोर्ट।
3: ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੱਲ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ।

0: ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੈਮਿਸਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਵਿਪਿਨ ਗਰਗ ਨੂੰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖਬਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨਮਸਕਾਰ
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है जन सेवा से देश सेवा अभियान पर समाचार दर्शन का विशेष अंक आज के अंक में शामिल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर मनीष बंसल और विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास अधिकारियों से बातचीत और हरियाणा के जींद जिले के बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच सेल्फी विद डॉटर पहल के जनक सुनील जागलान से बेटियों की स्थिति पर चर्चा भारत सरकार के प्रमुख मिशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में पानीपत की धरती से शुरुआत की थी जिसका मकसद हरियाणा सहित कई राज्यों में बेटियों की कम होती संख्या को देखते हुए लिंगानुपात में सुधार के लिए काम करना और बेटियों के शिक्षा के लिए समाज को प्रेरित करना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को हरियाणा में जोरदार समर्थन मिला जिसके बाद हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार दर्ज होता गया आइए इस अभियान को लेकर चल रहे काम और दरपेश चुनौतियों को लेकर बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर मनीष बंसल से
3: पंचायतें भी आगे आ रही हैं और वो भी हमारे साथ सहयोग कर रही हैं और वो इनकरेज करती हैं फीमेल चाइल्ड के बारे में धारणा बदल रही है चेंज ऑफ सोशल सिनेरियो में हमारी बच्चियां जो हैं हर लिहाज में हर कार्य में लड़कों के आगे चल रही हैं चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे एजुकेशन हो चाहे वो साइंटिफिक हो या जॉब्स हो वो बराबर टक्कर देती हैं कहीं पे वो उनसे कम नहीं है
2: डॉक्टर मनीष बंसल ने इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग के योगदान को लेकर विस्तृत जानकारी दी
3: अगर कोई महिला की गर्भपात होता है तो हम उसको बैक ट्रैक करते हैं कि वो किस वजह से हुआ कहाँ हुआ क्या इंसिडेंस जिससे कि अगर उसमें किसी ने शरारत की है तो वो पकड़ में आ जाए गर्भपात की गोलियां वो भी हमने स्ट्रिक्ट किया है मेडिकल स्टोर उनको बिना रजिस्ट्रेशन के ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते और ना ही वो ओपन मार्केट में उसको बेच सकते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि गर्भपात करने के लिए अधिकृत है हमने गर्भपात की गोलियां की बिक्री थी हम कुछ लगा दिए
2: डॉक्टर बंसल ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग का धरातल पर काफी योगदान रहता है
4: WCG डिपार्टमेंट धरातल पर जो काम करता है ट्रैकिंग के लिए उनकी मेन इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि वो गांव के उनके एरिया में ब्लॉक में रहते हैं वो प्रेगनेंसीज को रजिस्टर करते हैं महिला को बेसिक एजुकेशन देते हैं जिससे बच्चा नॉर्मल और हेल्दी डिलीवर हो
2: डॉक्टर बंसल ने इस कार्य में दरपेश चुनौतियों को लेकर बताया
3: तो ये हमारे लिए कुछ चैलेंजेस हैं जो इस हमारी मुहिम को करते हैं कि एक तो इसमें गैर कानूनी जो जांच होती है इसमें वो लोग आ गए हैं जो डॉक्टर नहीं है और वो भोले भाले लोगों को इधर उधर ले जाके उनका अल्ट्रासाउंड करने के बहाने सेक्स की जाँच के बहाने उनको ठगते हैं तो लोगों को इसके बारे में अवेयर रहना बहुत जरूरी है दूसरा कुछ डायग्नोस्टिक किट्स भी ऐसी आती हैं जो ये बताती हैं कि गर्भ में पल रहा उसका लिंक क्या है और हैंड हेल्ड एक्सरे अल्ट्रासाउंड मशीन्स भी अभी प्रचलन में है जो मोबाइल हैंडसेट की तरह होती है और वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसलिए सबका सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है
2: डॉक्टर मनीष बंसल ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लोगों को कई तरीकों से प्रेरित किया जा रहा है
3: हमने इंसेंटिव स्कीम भी शुरू की है जिसमें इनफॉर्मर को फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाता है अगर वो एक इस तरह के इलीगल सेंटर का हमें जानकारी देते हैं और सेक्स डिटर्मिनेशन का ऊपर होता है उसके लिए 1.5 लाख तक का फाइनेंशियल अवार्ड दिया जाता है गांव-गांव में पंचायतों के द्वारा भी लिंग जांच के बारे में लोगों को अवेयरनेस किया जा रहा है और बदलते हुए इकोनॉमिक सिनेरियो में आजकल बहुत सारे परिवार एक ही बच्चे पर

0: केंद्रित हो रहे हैं और मैरिज की एज भी बढ़ती जा रही है, जिससे कि इस लिंग अनुपात के ऊपर कुछ अंकुश हमारा लग रहा है।
1: कैथल में सिविल सर्जन डॉक्टर रेणु चावला ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जिले में लिंगानुपात में सुधार हुआ है।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2016 में स्टार्ट हुआ था, उस वक्त हमारे जिले की सेक्स रेशो बहुत कम। इसके बाद प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से सेक्स रेशो इम्प्रूव हो रही है, जो कि लास्ट ईयर कम्युलेटिव 924 थी और इस वक्त भी ये 910 912 चल रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम 950 को टच करेंगे, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सेक्स रेशो 950 तक होनी चाहिए।
1: डॉक्टर रेणु चावला ने बताया कि जिले के 10 गांवों में लिंगानुपात बहुत अच्छा है।
2: हमारे 10 गांव ऐसे थे जिनकी सेक्स रेशो बहुत ही ज्यादा थी, बहुत अच्छी है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि ककेड़ी गांव की सेक्स रेशो 2556 है लास्ट ईयर की, ग्योंग में 1419, खड़का 1400, फतेहपुर में 1218, कलरम 1139, बरटा 1133, खड़क पांडवा में 1128, हाबड़ी 1065 और मटोर 1053, काकौत 1043।
1: सिविल सर्जन ने कहा कि लिंगानुपात में सुधार को लेकर अभी भी बहुत प्रयास किए जा रहे हैं।
2: बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लड़कियों के लिए लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार द्वारा और उनकी सुरक्षा की भी पूरी जिम्मेवारी सरकार ले रही है ताकि लड़कियों को सुरक्षा मिले और लोगों को चिंता ना रहे। हमारे प्रशासन ने भी एक प्यारी बेटी नाम से मुहिम चलाई है, जिसमें हमने जिन गांवों की सेक्स रेशो अच्छी थी उन गांवों से दो दो बेटियों को बुलाया गया और उन्होंने जो अच्छे काम किए, चाहे वो पढ़ाई में थे, चाहे खेल में थे, पेंटिंग में थे या किसी भी और फील्ड में, एक न्यूज़पेपर भी उनका प्रकाशन हुआ और इसके अलावा उनको सम्मानित कर रहे हैं ताकि और बच्चियों को और पेरेंट्स को भी उनसे प्रोत्साहन मिले।
1: जींद जिले के बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच और बाल एवं महिला अधिकार कार्यकर्ता सुनील जागलान ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने हरियाणा में बेटियों के प्रति सोच में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है।
3: 12 साल पहले शुरू हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने लड़कियों की दशा और दिशा तय की है। अगर हम देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से पहले हरियाणा का लिंगानुपात कम था, हरियाणा में लड़कियों की साक्षरता दर कम थी, हरियाणा की लड़कियां विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत कम पढ़ती थी, लेकिन अगर आज हम देखें तो हरियाणा की लड़कियां जो है करीबन 75% साक्षरता है, जो कि करीबन 64% 2014 से पहले होती थी। उसके साथ ही अगर हम बात करें लड़कियों के स्वास्थ्य को लेकर, कुपोषण को लेकर, वो दर भी लगातार घट रही है। इसके साथ ही हम खेलों में लड़कियों की भागीदारी देखें तो 6200 के 6200 सभी गांवों में आज के दिन खेल नर्सरियों में लड़कियां पहुंच रही हैं, तो खेलों में लड़कियों की भागीदारी करीबन 60% ज्यादा बढ़ चुकी है। लिंगानुपात जो 879 हरियाणा का होता था वो 920 925 930 तक आज के समय चला जाता है और खास बात ये रही कि कन्या भ्रूण हत्या पर भी रोक लगी है।
1: हमने सुनील जागलान से उनकी महत्वपूर्ण पहल सेल्फी विद डॉटर पर भी चर्चा की।
3: वर्ष 2015 में 9 जून के दिन मैंने सेल्फी विद डॉटर अभियान शुरू किया, तो उस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 बार मन की बात व अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जिक्र किया और आज के दिन सेल्फी विद डॉटर जो कि हरियाणा के बीबीपुर गांव से हमने शुरू किया वो भारत का पहला ग्लोबल कैंपेन बन चुका है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके ग्लोबल एम्बेसडर रहे और उन्होंने पूरी दुनिया में इस अभियान को फैलाया है। आप समझ सकते हैं कि दूर दराज से के क्षेत्र से निकले हुए ऐसे अभियानों को भी गति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत दी गई है, जिससे लड़कियों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो भागीदारी है वो लगातार बढ़ रही है। गाँव की बेटियां आज गाँव में सरपंच बनती है।
1: हिसार में महिला सुरक्षा अधिकारी बबीता चौधरी ने बताया कि जिले में इस दिशा में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
4: हिसार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत व्यापक जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों कॉलेजों में अलग अलग महकमे के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसके अंदर लिंग भेद पे जो भी हिंसा होती है उस हिंसा के ऊपर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जन्म से पहले बेटियों की गोद भराई की रस्म की जा रही है, कुआ पूजन किया जा रहा है, थाली बजाने की रस्में की जा रही है, लोग मोटिवेट हो, घर में इस तरह का माहौल ना हो कि बेटा नहीं हुआ बेटी हो गई। इसी का नतीजा है कि हरियाणा में हिसार जिले का

0: जो सेक्स रेशो है वो 895 पहुंच चुका है।
1: पानीपत में हमने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता से भी इस विषय पर बातचीत की।
2: हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आज लिंग अनुपात में बहुत बड़ा सुधार हुआ है और साथ ही साथ आज पूरे के पूरे हरियाणा से जितनी बेटियां मेडल्स लेकर आ रही हैं वो एक बहुत बड़ी संख्या है। जो शुरुआत मोदी जी ने हरियाणा की धरती से करी उसका आज असर पूरे के पूरे भारत में दिख रहा है, चाहे एशियाड हो चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, सब जगह आज भारत में बेटियां मेडल्स लेकर आ रही हैं।
1: इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका वैशाली चौधरी और प्रस्तुति सहायक सोनिया।
3: ਸਰੋਤਿਓ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ।

0: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz ਤੇ।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
4: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश, या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
5: लाओ जी, आज तो हमने दसांगा वायरल ना होने के तरीके।
6: ओ लोकीता, वायरल होने के तरीके दस दे आ, ते तू वायरल ना होंदा।
5: सोशल मीडिया ते वायरल होने नालों भी वध जरूरी है जिम्मेदार नागरिक बनना, ते उस दे लई जरूरी है ए जानना कि HIV/AIDS किवें नहीं फैलदा। HIV/AIDS नाल जी रहे व्यक्ति नूं छोण जां हथ मिलाउण नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते उपकरणां या भांडियां दे इस्तेमाल नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते गए गुसलखाने दे इस्तेमाल जां मच्छर दे कट्टण नाल।
7: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
0: असीं आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तों बोल रहे हां। ਸਰੋਤਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੈਮਾਲਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ।

नमस्कार, जयमाला कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुनिधि चौहान की आवाज में इस राजी फिल्म के इस देशभक्ति गीत के साथ, जिसे लिखा है गुलजार ने और शंकर एहसान लॉय ने इसका संगीत तैयार किया।

0: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
1: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
2: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार, सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
4: जयमाला कार्यक्रम का अगला गाना जो जीता वही सिकंदर, इस फिल्म से उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, जतिन ललित का संगीत।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में कयामत से कयामत तक। इस फिल्म से ये गाना मजरू सुल्तानपुरी के बोल आनंद मिलिंद का संगीत।

0: जब सीलन से छुटकारा पाना हो और घर ऑफिस को सजाना हो तो आज ही आइए अरुण अप्लाई।
1: WPC, PVC, वॉल पैनल, सीलिंग, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग, HDH, MR बोर्ड, सन माइका और प्लाईवुड के लिए अरोड़ा प्लाईवुड एट SCO 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।
1: सुबह जलाओ शाम जलाओ
2: देव दर्शन धूप।
1: सुबह जलाओ शाम जलाओ
2: देव दर्शन धूप।

गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

जयमाला कार्यक्रम का अगला गाना और प्यार हो गया इस फिल्म से आशा भोसले और उदित नारायण की आवाजों में जावेद अख्तर की बोल।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं लक्ष्य फिल्म से। शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन और रूप कुमार राठौर की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

देश की रक्षा के लिए सजग जाबाजों के सामने शत्रु को हमेशा घुटने टेकने पड़े हैं। फौजी साथियों, आज के जयमाला कार्यक्रम से अब दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत। जय हिंद।

0: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ।
1: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है,
2: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है,
3: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
4: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
0: असि आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं। श्रोतियों हुण पेश ने मुख प्रादेशिक खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिंडां दीआं औरतां दे आर्थिक सशक्तिकरण ते जोर दित्ता है। हरियाणा दे खेतीबाड़ी मंत्री श्याम सिंह राणा ने केंद्र अते राज सरकारां द्वारा एक विशेष पहलकदमी दे हिस्से वजों शाहबाद विच किसानां नूं प्रधानमंत्री फसल बीमा

योजना दीआं पॉलिसियां वंडियां। मुख्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने भारत अते स्वीडन विचकार नवीनता कारोबार सिख्या अते उद्योगिक सहयोग नूं मजबूत करन ते जोर दिता। हरियाणा दी राज पदरी सूचना तकनालोजी स्टीयरिंग कमेटी ने साइबर सुरक्षा प्रणालियां नूं आधुनिक बनाउण अते डिजिटल शासन बुनियादी ढांचे नूं होर सुरक्षित बनाउण लई लगभग 738 करोड़ रुपए दे दो वड्डे प्रोजेक्टां नूं मंजूरी दित्ती। हरियाणा सरकार ने नागरिकां नूं राष्ट्रीय राजधानी खेतर नूं प्रदूषण मुक्त बनाउण लई अपने पुराने वाहनां नूं स्क्रैप कराउण लई अपील कीती। भारतीय खेतीबाड़ी खोज परिषद के महानिदेशक डॉक्टर एम एल जाट ने कहा है कि करनाल विच होने वाले नवोदित विज्ञान तकनालोजी और नवीनता सम्मेलन 2026 विच खेती तकनीक भोजन प्रणालियां और पोषण ते विशेष फोकस रहेगा। हरियाणा के मुख चोन अधिकारी ने कहा है कि हरियाणा के सारे विधानसभा हल्कों में एक विशेष मुहिम चलाई जाएगी ता जो वोटर सूचियों में अपने नाम दर्ज करवाउण तो खुंझ गए ने ते नवे ते योग वोटरां नूं शामिल किया जा सके। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा है कि करनाल जिले के पिचोलिया हैड तो यानी पिंड तक पछमी यमुना नहर के खब्बे कंडे ते 10,58,52,000 रुपए की लागत नाल एक नवी सड़क बनाई जाएगी। ये सन मुख प्रादेशिक खबर। आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र तो हुण पेश ने कुछ पंजाबी गीत ते अज दे गीत गुरदास मान की आवाज़

हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको हैदराबाद केंद्र के सौजन्य से प्राप्त एक नाटिका की रिकॉर्डिंग सुनवा रहे हैं। बड़े दिनों बाद इसके लेखक और निर्देशक हैं अजहर अफसर।

0: आप कुछ सोच रहे हैं
1: जी?
0: मैंने पूछा आप कुछ सोच रहे हैं?
1: जी मैं देखिए मैं वो ये सोच रहा हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ?
2: क्या बात?
1: असल में हम दोनों को यहाँ एक साथ नहीं खड़ा होना चाहिए।
2: क्या मतलब एक साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? वो क्यों?
1: देखिए ना, आप सर से पांव तक सुर्ख बने हुए हैं
0: और आप सब
1: आपने मेरा मतलब समझ लिया है।
0: अरे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है। अच्छी जी जी जी नहीं जी नहीं,
1: देखिए सामने रास्ता है,
2: पीछे दीवार है।
1: दीवार को छोड़िए।
0: क्यों छोड़िए? अरे साहब, दीवार के बगैर दुनिया में कोई काम नहीं चल सकता।
1: अरे साहब, काम चलना क्या, दीवारें तो रुकावटें खड़ी करती हैं। रुकावटें?
0: रुकावटें
1: जी?
0: अजीब आदमी है। अरे इससे घर नहीं बनते, बोलो।
1: अरे बनते घर उजड़ते भी है। कर छोड़िए।
0: छोड़ दिया।
1: मैं क्या कह रहा था?
0: आप कह रहे थे कर छोड़िए।
1: जी नहीं, उससे पहले खैर छोड़िए, उससे पहले
0: खैर आप भी छोड़िए, कोई और बात कीजिए। हाँ हाँ हाँ, आपकी घड़ी में क्या वक्त है?
1: अभी देख के बताया।
0: निकालिए घड़ी, देखिए अच्छी तरह से देखिए। जी हाँ, क्या वक्त है?
1: अभी बताता हूँ।
0: अरे बताइए।
1: अभी बताता हूँ
0: जी, क्या वक्त है?
1: 10:10 हुए।
0: आपने दो घड़ियां देखी हैं, यानी आपके एक हाथ में एक घड़ी, एक हाथ में एक घड़ी। क्या दोनों में अलग अलग वक्त है?
1: जी नहीं, वक्त एक ही है।
0: एक ही वक्त है? फिर जनाब एक ही घड़ी में वक्त देखना काफी था? शायद आप ये देख रहे थे। समझ गया कि दोनों घड़ियां ठीक चल रही हैं या नहीं है।
1: आपका ख्याल सही है, लेकिन एक बात है।
0: क्या है?
1: जो सही वक्त मैंने आपको बताया है
0: वो गलत है।
1: जी नहीं, बिल्कुल सही है।
0: थैंक यू।
1: लेकिन दोनों घड़ियों का वक्त मिलकर एक बना है।
0: व्हाट? दोनों घड़ियों का वक्त मिलकर एक बना है? क्या मतलब साहब? आप तो मुझे परेशान किए दे रहे हैं बिना वजह।
1: अरे भाई मैं सच कह रहा हूँ।
0: कैसे सच कह रहे हैं आप? दोनों घड़ियों का वक्त मिलकर एक बना है? अरे ये कोई बात हुई?
1: आप सुनिए तो सही।
0: फरमाइए।
1: दोनों घड़ियां मैंने एक के बाद एक देखी भी।
0: देखी?
1: हाँ, इसलिए
0: के
1: एक घड़ी में बड़ी सुई नहीं है और दूसरी में छोटी सुई नहीं है।
0: एक घड़ी में बड़ी, मेरा मतलब बड़ी सुई नहीं है और दूसरे में छोटी छोटी छोटी छोटी सुई नहीं है।
1: जी हाँ, इसीलिए मैंने दोनों घड़ियों को अच्छी तरह देखकर और दोनों का वक्त मिलाकर आपको वक्त बताया है।
0: अरे बाप रे, मुझ पर क्या वक्त आ पड़ा है साहब।
1: वक्त वक्त की बात है जनाब।
0: अच्छा, आपकी इन बातों से मेरे सर में दर्द होने लगा है। दर्द?
1: क्या
0: दर्द?
1: सर में दर्द?
0: जी हाँ।
1: यानी कि इस वक्त आपके सर में दर्द है?
0: बिल्कुल है।
1: वाकई सर में दर्द?
0: अजी कितनी बार कहूं, है जी हाँ है।
1: खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। अरे इस सर में कुछ तो है
0: जी।
1: आपको पता है, लोग जब उनके सर में दर्द होता है बार बार हाथ सर पर मारते हैं,
0: जैसे कि ऐसे। जी हाँ, क्यों नहीं, मैं खुद भी अब सर पर अपने हाथ मारने वाला था।
1: ये देखने के लिए मारते हैं कि इस सर में कुछ है या नहीं।
0: आप खामोश रहिए, आपके कपड़े बहुत ढीले डाले।
1: खूबसूरत तो नजर आ रहा हूं ना? शुक्रिया।
0: मैंने जवाब नहीं दिया और आपने शुक्रिया।

0: अरे जनाब, ये इंसानियत का तकाजा है।
1: मगर मैं तो ऐसा नहीं करता।
0: कोई बात नहीं,
1: बिल्कुल नहीं करता।
0: कोई बात नहीं,
1: बिल्कुल नहीं करता।
0: अपने रास्ते पर चलते रहिए। आप कह रहे थे मेरे कपड़े बहुत ढीले ढाले।
1: अच्छा, आपके कपड़े बहुत ढीले ढाले ढकले जी।
0: कैसे मालूम हो रहे हैं
1: जी? अरे इस बार मेरे जवाब से पहले शुक्रिया ना कह दीजिएगा।
0: जी नहीं, शुक्र
1: जी। ठहरिए ठहरिए, आपने पूछा है कि आपके कपड़े कैसे लग रहे हैं।
0: जी हाँ,
1: ऐसा मालूम होता है जनाब के खूंटी से लटक रहे हैं। अरे और ये आपने अपने दोनों हाथों में दो किताबें क्यों पकड़ रखी हैं? अरे लाइए दोनों किताबें, मुझे दे दीजिए।
0: ये किताबें मैं आपको नहीं दिखा सकता।
1: अरे साहब, अरे जी देखने के लिए दे दीजिए, मैं ले नहीं रहा हूँ।
0: नहीं दे सकता।
1: क्यों नहीं?
0: अगर मैं आपको ये दोनों किताबें दे दूं तो
1: सिर्फ देखने के लिए।
0: जी हाँ जी हाँ, सिर्फ देखने के लिए भी आपको अपने दोनों हाथों की किताबें दे दूं तो
1: क्या मतलब?
0: तो मेरे दोनों हाथ कोट की आस्तीनों के अंदर चले जाएंगे और आस्तीनें बाहर आ जाएंगी।
1: अब समझा। तो ये बात है।
0: जी हाँ, ये बात है।
1: खैर जनाब, वक्त वक्त की बात है। आपके बड़े भाई साहब, हाय हाय हाय हाय हाय, क्या क्या आदमी थे। किस कदर उम्दा कपड़े पहनते थे, कैसा जामा जेब आदमी थे। आह कैसे नफीस सूट। वाह वाह,
0: मेरे बड़े भाई।
1: जी जी जी,
0: आप उनके कपड़ों की तारीफ करते हैं और मेरे कपड़ों की नहीं।
1: बिल्कुल नहीं, ये कपड़े आपके ढीले ढाले कैसे आदमी। अरे अरे अरे, अरे हंस रहे हैं आप, क्या रो रहे हैं?
0: अरे मेरे बड़े भाई जो कपड़े पहनते हैं आप उनकी तारीफ करते हैं और इनकी नहीं।
1: जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: अरे ये उन्हीं के तो कपड़े हैं, मैं समझ गया।
1: एक मिनट, क्या मेरा मतलब है, आप क्या समझ गए?
0: दरअसल आप मुझसे जलते हैं।
1: क्यों?
0: क्या मेरी अक्ल की वजह से, मेरी सलाहियतों की वजह से?
1: छोड़िए छोड़िए छोड़िए छोड़िए छोड़िए, गोली मारी है, फुजूल बातें छोड़िए। क्या
0: क्या मेरी अक्ल को, मेरी सलाहियतों को आप फुजूल बातें कहते हैं?
1: जी हाँ बिल्कुल।
0: शुक्रिया। ठहरिए, मैं आपको अपनी एक नई सलाहियत से वाकिफ करवाता हूँ।
1: जनाबे वाला, शायद ये इंसानियत से हटकर है।
0: जी हाँ, शुक्रिया।
1: हटकर
0: तो मेरी वो सलाहियत है।
1: क्या?
0: अच्छा ये बताइए, आपको खबर है मैं पिछले हफ्ते क्या करता रहा हूँ?
1: आप पिछले हफ्ते क्या करते रहे हैं? पता नहीं, किसी नई चोरी की खबर तो मैंने नहीं पढ़ी किसी अखबार में। कहीं चोरी की है आपने?
0: अरे जनाब, मैं पिछले हफ्ते गाना सीखता रहा हूँ। गाना?
1: क्या कहा आपने? क्या सीखते रहे आप?
0: अरे भाई, गाना गाना गाना गाना
1: गाना।
0: क्यों, आपको यकीन नहीं आ रहा?
1: नहीं, यानी कि यानी गा गा गा।
0: अरे भाई, पिछला सारा हफ्ता मैंने संगीत के सीखने में गुजारा है।
1: संगीत?
0: जी हाँ। अरे
1: संगीत?
0: अरे तो इसमें हंसने की क्या? अरे जनाब सुनिए। अरे भाई आप हंस क्यों रहे? अरे अरे सुनिए भाई, आप क्यों हंस रहे हैं आप? ठहरिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या सीखा।
1: खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दीजिए।
0: क्यों, फिर गाना किसको सुनाऊंगा?
1: देखिए, दीवार के पीछे कुछ लोग रहते हैं, उनको सुनाइए जाइए।
0: देखिए, ये स्पिरिट के खिलाफ है।
1: कौन सी स्पिरिट के खिलाफ है?
0: ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है।
1: भाई देखिए, ये देखिए, मैं इसलिए यहाँ से भागना चाहता हूँ कि आपको साफ बात बता दूं, जब आप गाना शुरू करेंगे आप
0: बिल्कुल,
1: जैसे आप गाना शुरू करेंगे और दीवार की दूसरी तरफ के लोग समझेंगे कि मैं आपको पीट रहा हूँ, इसलिए मैं जी जी जी जी मैं जाना चाहता हूँ।
0: फुजूल सलाहियतों को छोड़िए, पहले सुनिए।
1: एक मिनट जनाब, जरा जरा जरा जरा शुरू पकड़ के।
0: अरे आप सुनिए ना पहले, आपको क्या मालूम कि संगीत क्या होता है? वो हम बताते हैं।
1: अच्छा,
0: कुछ फूल तेरे, अरे कुछ फूल तेरे प्यार के गुलशन से आ

0: है जनाब, वो तो
1: जाहिर है। पहले गजल सुनिए, आप बहुत जल्दी करते हैं।
0: इतना बुरा इम्तिहान मत लीजिए, मेरे सब्र का है, देखिए फिर फैसला करेंगे। क्यों?
2: जी हाँ, पहले सुनिए। अरे कुछ

0: नजरों से आए हैं तेरी चिलमन से आए हैं। चिलमन समझते हैं?
1: चिलमन चिलमन भी समझते हैं, गुलशन भी समझते हैं, अब फूल भी समझते हैं, लेकिन आपका गाना अब बिल्कुल नहीं समझते।
0: और नजर
1: जी वो भी समझते हैं, अब रहने दीजिए, खुदा के लिए रहने दीजिए।
0: एक हफ्ते के मैंने 700 रुपए दिए हैं, जब जाकर ये कमाल हासिल हुआ है।
1: इसे आप कमाल कहते हैं?
0: फिर और क्या
1: जनाब, इतवार को आपके पैसे मैं आपको वापस दिला दूँ।
0: बेकार बातें न कीजिए, सुनिए कुछ फूल तेरे प्यार के, अरे गुलशन से आए हैं। ये क्या गिरा? अरे ये कैसी आवाज थी
1: जी? फूल है जनाब, फूल गिर रहे।
0: अरे नहीं जी, फूलों की इस कदर भारी आवाज,
1: तो फिर फूलों का गमला होगा।
0: ओहो, जरा उधर जाकर देखिए ना, दीवार के पीछे से क्या आया है। आप बड़े कायल हैं।
1: कायल मैं? अभी देखता हूँ।
0: क्या है बताइए, बताइए क्या है?
1: आप इसे नहीं पहचानते? जूता है, जूता। किसी ने आपके गाने की तारीफ में भेजा है, उधर से, यानी कि दीवार के पीछे से।
0: भेजा है या फेंका है?
1: अम्मा एक ही बात है, जूता वैसे उम्दा है।
0: एक पैर का होगा?
1: अरे यार कुछ भी हो, ये मेरे पैर के बराबर भी है। गो गो गो गो फौरन गो।
0: अजीब नामा कुल आदमी है।
1: जल्दी गाओ यार।
0: अरे अभी आप कह रहे थे कि मत गाओ।
1: अरे भाई मगर ये जूता मेरे पैर के बराबर है ना। अच्छा आप पहन कर देख लीजिए, अगर आपके पाँव में आता है तो आप ले ले।
0: नहीं
1: नहीं, अरे गाइए भाई साहब, फिर से गाइए।
0: जूता बहुत?
1: अरे हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि गाना शुरू कीजिए फौरन। अरे
2: बहुत दिनों बाद
1: क्या?
2: बहुत दिनों बाद अपने फल का फल मिला। मगर
1: क्या जनाब, फल तो मिला ना।
2: जूता बहुत उम्दा है।
1: अरे
2: जूता बहुत?
1: अरे मगर जनाब गाना तो सुनाइए, आप चले जा रहे हैं, मुझे दूसरे जूते का इंतजार है ताकि जोड़ा बन जाए। चला गया। हाय हाय हाय।

बड़े दिनों बाद अभी आपने ये नाटिका सुनी। इसके लेखक और निर्देशक अजहर अफसर। हैदराबाद केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार

0: प्रेम कथा
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर

नमस्कार, चित्रलोक कार्यक्रम में आप सबका बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मैं वापस आऊंगा इस फिल्म के गाने के साथ, इरशाद कामिल के बोल, हीरल विरादिया का संगीत और आवाज है दीपाली सहाय की।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।

0: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

विविध भारती देश की सुरीली धड़कन पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लेकर हम दीवाना दिल। इस फिल्म से आप सुन रहे हैं जॉनिता गांधी और हृदय गटानी की आवाज में ये गाना, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, ए आर रहमान का संगीत।

चंडीगढ़ करे आशिकी से सुन रहे हैं सचिन जिगर और प्रिया सराय की आवाज में ये गाना। इस गाने को लिखा है प्रिया सराय ने और इसको कंपोज किया है सचिन जिगर ने।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: गुड न्यूज, इस फिल्म से आप सुन रहे हैं ये गाना रोचक कोहली और अकासा की आवाजों में इनका साथ दिया है लव ने। इसके लिरिक्स लिखे हैं गुरप्रीत साहिनी ने और म्यूजिक है रोचक कोहली और लव का।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं
1: हाँ जी
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं
2: हाँ जी हाँ
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया
2: नहीं नहीं अभी नहीं
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा
3: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को
4: इसी के साथ आज का रात्रि चित्रलोक संपन्न होता है आठ बजकर 45 मिनट होने वाले हैं कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार।
1: संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। मतदाता सूची से कथित नाम हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय वायुसेना के लिए संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र खरीदे।

0: करेंगे। सरकार ने पहली नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया। सेंसेक्स 2% से अधिक बढ़कर 74,316 पर बंद हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। कहा, देश वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसकी विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नई प्रौद्योगिकियों को सीखने के अवसर और दूसरे शहरों में निर्भरता कम करने पर ध्यान दिया जा रहा है।
1: यहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, नई टेक्नोलॉजी सीखने का अवसर मिले और उन्हें दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। लेह में इसलिए एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सलेंस बन रहा है। आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू के सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इनसे उच्च शिक्षा, रिसर्च और नई स्किल्स के लिए लद्दाख के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉरपीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। GSAT-7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित ये उपग्रह भारतीय वायुसेना की सुरक्षित और निर्बाध संचार क्षमता मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। सरकार ने पहली नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूर संचार विभाग ने सभी दूर संचार सेवा प्रदाताओं को पहली नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP सेवा शुरू करने का निर्देश दिया। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूर संचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वाले के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। दूर संचार विभाग ने बताया कि सेवा प्रदाता 4G और इससे आगे के वायरलेस नेटवर्क पर इस सेवा का परीक्षण कर चुके हैं। विभाग ने कहा कि 2G और 3G तकनीक वाले वायरलेस नेटवर्क तथा सार्वजनिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क पर CNAP सेवा शुरू करने के बारे में अलग से विचार किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की है कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस याचिका को पहले से लंबित मामलों के साथ संलग्न किया जाएगा। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से संबंधित अन्य याचिकाओं पर भी केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। ये सुनवाई SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग के बीच हुई है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सोमवार को अपनी याचिका दायर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च निकाला था। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से भी SIR से कथित नाम हटाने पर जवाब मांगा है। सरकार ने कहा है कि शुल्क संबंधी बाधाओं के बावजूद इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के दौरान अमेरिका को भारत का वस्तु निर्यात बढ़कर करीब $51 अरब हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष इसी अवधि में यह निर्यात $45 अरब था। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायनों और कृषि उत्पादों के अधिक निर्यात से इस वृद्धि को समर्थन मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है।
1: न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते 20 अक्टूबर को यानी दशहरे के दिन से लागू हो जाएगा। वहीं 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता फरवरी या मार्च 2027 तक लागू होने की उम्मीद है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय रणनीतिक व्यापार कमान केंद्र का शुभारंभ किया। यह केंद्र भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निगरानी, विश्लेषण और प्रबंधन मजबूत करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस केंद्र को वरिष्ठ नीति निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों को भारत के व्यापार प्रदर्शन, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं, नियामक मंजूरियों, आवेदनों के निपटारे और अन्य कामकाज की एकीकृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि गिव इट अप अभियान जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया जा रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में गिव इट अप अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत लोगों से स्वेच्छा से LPG गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई थी। इस अभियान के तहत 1,13,00,000 से अधिक LPG उपभोक्ताओं ने अपनी गैस सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ दी। इससे हुई बचत से गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। इस योजना से खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं को लाभ हुआ, जो पहले खाना पकाने के लिए लकड़ी और गोबर के उपलों का इस्तेमाल करती थी। सरकार ने देश भर में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को अब तक 10,56,00,000 से अधिक मुफ्त LPG कनेक्शन दिए हैं। वर्ष 2015 में दिल्ली इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गिव इट अप अभियान ने लोगों को एकजुट होकर गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया।
3: We introduce the Give It Up campaign seeking the cooperation of the public in voluntarily giving up cooking gas subsidies. We promise that for every connection given up, one poor family currently without gas would be given a connection. This will enable us to liberate many poor women from the health hazards of using firewood. This brings me to an achievement that I think even our worst critics do not dispute. This is the change in the levels of corruption.

0: उत्तर प्रदेश की रहने वाली संजू देवी ने बताया कि गैस चूल्हे से खाना बनाना काफी आसान हो गया है और उन्हें अब खाना बनाते समय धुएं का सामना भी नहीं करना पड़ता।
1: पहले जब चूल्हे पे खाना बनाया करती थी मैं तो मेरे धुएं से चेहरे पे एलर्जी हो जाती थी। अब मुझे इतनी सुविधाएं मिल गई हैं कि अब आराम से खाना बना लेती। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी।
0: गिव इट अप अभियान ने लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया है, साथ ही हर परिवार तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने के सरकार के प्रयासों को मजबूती दी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है।
3: हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है और खासकर हमारी महिला हॉकी टीम, आपने तो गोल्ड लाकर 44 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है और जहां पंच वहां परमेश्वर। शूटिंग में शानदार प्रदर्शन 1982 के बाद मैराथन में भारत को मिली सफलता, ये वाकई बहुत सुखद है।
2: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1534 अंक उछलकर 74316 पर पहुंच गया। निफ्टी 375 अंक की तेजी के साथ 22997 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले 10 पैसे की मजबूती के साथ 95.05 पर बंद हुआ।
2: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी और निचले तथा मैदानी इलाकों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है।
5: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू के रोहतांग दर्रे सहित ऊंची चोटियों पर आज सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। वहीं कांगड़ा, मंडी, चंबा और शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्रों में वर्षा हुई है। रोहतांग दर्रे से अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल तक अब यातायात सुबह 6 बजे से 5:30 बजे तक ही चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों को रोहतांग दर्रे पर जाने से पहले ताज़ा आधिकारिक निर्देशों की जानकारी लेने को कहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के 4 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में अंधड़, आसमानी बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता। सर्वोच्च न्यायालय ने SIR के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। मतदाता सूची से कथित नाम हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने 1 नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। वक्त हो चला है कार्यक्रम आपके लिए। संघर्ष फिल्म से आप सुन रहे हैं रेमो फर्नांडिस और जसपिंदर नरूला की आवाज में ये गाना समीर के बोल जतिन ललित।

कार्यक्रम का अगला गाना आइए सुनते हैं लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म से। विनोद राठौर की आवाज में स्वानंद किरकिरे के बोल शांतनु मोइत्रा का संगीत।

मीनाक्षी फिल्म से आप सुन रहे हैं सुखविंदर सिंह की आवाज में ये गाना। इस गाने को लिखा भी है सुखविंदर सिंह ने और इसका म्यूजिक तैयार किया है ए आर रहमान ने।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: दस फिल्म से शान और केगी की आवाज, पंची जलनोवी का के बोल हैं और विशाल शेखर का संगीत।

प्लफ मास्टर फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना। इस गाने के लिरिक्स और म्यूजिक विशाल और शेखर के। वायु का लिखा और सचिन जिगर का कंपोज किया ये गाना आप सुन रहे हैं एश किंग और जिगर सरैया की आवाजों में, अ जेंटलमैन फिल्म से।

0: मेरा ब्रो
1: ऐश किंग और जिगर सरैया के साथ आप सुन रहे थे रफ्तार की आवाज में रैप। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।

मैं हूं अमरकांत, आज के फनकार। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के संगीतकार शंकर के बारे में।

गीत चाहे कोई भी हो, जब वो शंकर जयकिशन के साजों स्वर लहरियों पर सवार हुआ तो सीधे सुनने वालों के दिलों तक पहुंच गया और फिर वो श्रोता श्रोता नहीं आशिक बन गया।

आज हम याद कर रहे हैं संगीतकार शंकर को, जिनका जन्म हुआ 15 अक्टूबर सन 1922 को हैदराबाद स्टेट के दक्षिणी हैदराबाद में, जो कि अब तेलंगाना राज्य में है। संगीतकार शंकर का पूरा नाम था शंकर सिंह राम सिंह रघु।

0: संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो।
1: संगीतकार शंकर की शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद में हुई और फिर शंकर ने बाबा नासिर खान साहिब की देखरेख में तबला वादन की शिक्षा लेना शुरू कर दी। कुछ वर्षों के बाद शंकर ख्वाजा खुर्शीद अनवर के शागिर्द बन गए और फिर उन्हीं के ऑर्केस्ट्रा में रम गए।

सत्यनारायण और हेमावती का एक थिएटर ग्रुप हुआ करता था, जिससे शंकर जुड़ गए और थोड़े ही दिनों के बाद पृथ्वीराज कपूर द्वारा स्थापित पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए। यहाँ वो संगीतकार हुसन लाल भगतराम के सहायक के रूप में काम करते।

बात उन दिनों की है जबकि शंकर पृथ्वी थिएटर में काम किया करते थे। तब स्वतंत्र संगीतकार के रूप में काम की तलाश में वो कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के यहाँ स्ट्रगल के लिए जाया करते थे। उन्हीं में से एक थे गुजराती फिल्मों के निर्देशक चंद्रवदन भट्ट। शंकर इनके यहाँ नियमित रूप से जाते थे। चंद्रवदन भट्ट ने भी शंकर से वादा किया था कि जब कभी भी वो खुद कोई फिल्म प्रोड्यूस करेंगे तो उन्हें संगीतकार के रूप में साइन जरूर करेंगे। इस बात का जिक्र मैं इसलिए यहां कर रहा हूं क्योंकि यहीं पर शंकर की मुलाकात अक्सर एक युवक से होती थी जो कि बहुत अच्छा हारमोनियम बजाया करता था। तो एक दिन जबकि शंकर को पृथ्वी थिएटर में एक अच्छे हारमोनियम प्लेयर की जरूरत पड़ी तो उन्हें उसी युवक की याद आई और वो जाकर उसे अपने साथ ले आए और पापा जी यानी पृथ्वीराज कपूर से पूछे बगैर उन्होंने इस युवक को पृथ्वी थिएटर में काम पर रख लिया। अब जब पापा जी ने उस युवक को हारमोनियम बजाते सुना

0: जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना।
1: हाँ, तो हम बात कर रहे थे हारमोनियम बजाने वाले उस युवक की, जिसे शंकर ने अपने साथ पृथ्वी थिएटर में काम दिला दिया। दोनों साथ काम करने लगे, दोनों के बीच बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। जहां भी जाते दोनों साथ जाते। अब पृथ्वी थिएटर में उस समय होने वाले नाटकों में संगीत के अलावा दोनों छोटे मोटे रोल्स भी करने लगे। लोगों ने इनकी दोस्ती को देखते हुए इन्हें राम लक्ष्मण की जोड़ी का नाम भी दे दिया। अब ये जरूरी हो जाता है दोस्तों कि मैं उस युवक का नाम आपको बता दूं। वैसे ये कोई रहस्य नहीं है, आप जानते भी हैं। जी हाँ, जय किशन पांचाल।
2: मुड़ मुड़

तो शंकर जयकिशन की जोड़ी यहीं बन चुकी थी। अब यहीं यानी पृथ्वी थिएटर में दोनों की मुलाकात हुई पापा जी के बेटे राज कपूर से, जो कि उस समय निर्देशक केदार शर्मा के सहायक के रूप में काम कर रहे थे। राज कपूर ने जब खुद फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा तो अपनी पहली फिल्म आग के लिए उन्होंने बतौर संगीतकार राम गांगुली को साइन किया। फिल्म रिलीज हुई, संगीत भी लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन फिल्म के रिलीज होते होते राज कपूर और संगीतकार राम गांगुली के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गए। और फिर जब राज कपूर ने अपनी अगली फिल्म प्लान की तो संगीत के लिए उन्होंने चुना शंकर जयकिशन को, और फिल्म थी बरसात।

यहाँ से शुरू हुई सुरीले गीत संगीत की वो बरसात जिसने संगीत प्रेमियों को बार बार अपने सरगमी छींटों से भिगोया। राज कपूर और शंकर जयकिशन के बीच एक ऐसा सुरीला रिश्ता बन गया जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। मिल

शंकर जयकिशन के बीच के सुरीले साथ ने एक के बाद एक कई ऐसी फिल्में दी जिन्हें आज भी सिने संगीत के रसिया याद करते हैं। आवारा, बादल, पूनम, नगीना, औरत, पर्वत, काली घटा, आह, पतिता, शिकस्त, बादशाह, मयूर पंख, नया घर, सीमा, श्री 420, बसंत बहार, हलाकू, राजहट, कठपुतली, अनाड़ी, चोरी चोरी, यहूदी, लव मैरिज, उजाला और न जाने कितनी। अगर मैं सिर्फ नाम ही बताता रहूं तो शायद मुझे दो या तीन प्रोग्राम

साथियों, शंकर जयकिशन की ये जोड़ी 12 सितंबर 1971 को अचानक टूट गई, जबकि महज 41 वर्ष की उम्र में जयकिशन का देहांत हो गया।

अब खेल में जय किशन नहीं थे, लेकिन संगीतकार शंकर ने उनके नाम को अपने से अलग नहीं किया। जब तक वो रहे, शंकर जय किशन के नाम से ही संगीत देते रहे।

और आखिर 26 अप्रैल 1987 को शंकर ने भी अपनी तमाम धुनों और साजों को अकेला छोड़ दिया और इस दुनिया से विदा ले ली, और पीछे उन्हें भी अकेला छोड़ दिया जो उनके सुरों के मुरीद थे, जो उनकी

0: संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के संगीतकार शंकर पर केंद्रित आज के फनकार प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर रमेश गोखले, शोध आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। तेरी यादों की तपिश में हर शाम ढलती है, तेरे बिना ये जिंदगी तन्हा सी लगती है। चांद से पूछूं तेरा पता, तारों से तेरा नाम, हर आहट में ढूंढूं तुझे, हर पल रहे तेरा ही ख्याल। कब आओगे लौट कर मेरी चाहत तुझसे पूछती है, तेरी याद में मेरी अखियां रात भर जलती है।

भीगी भीगी रात है और तेरा ख्याल है, बूंदों की हर आहट में बस तेरा ही सवाल है। खिड़की से आती हवा तेरी खुशबू ले आई, चांद ने भी जान ली मेरी तन्हाई। तू पास नहीं फिर भी तेरे होने का एहसास है, ये भीगी भीगी रात और दिल में एक अबुझ प्यार।

चढ़ता यौवन है दिल में उठते अरमान है नींदें भी रूठी हैं बेचैन से एहसास है चांदनी रात है और दिल में लगी आग है किसी के इश्क का शायद ये पहला खुमार है करवटें बदल बदल कर कटती नहीं रात है अब तुम ही बताओ आखिर ये क्या राज है

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। रात के ख्वाबों में एक मासूम कली आई थी, चांद सी सूरत होठों पे मुस्कान लाई थी। सुबह आंख खुली तो लगा कोई करिश्मा हुआ है, वो ख्वाबों का चेहरा हकीकत में सामने आया है। अब क्या कहूँ इस मुकद्दर की मेहरबानी को, ख्वाब में देखा था जिसे, सुबह

दिल में जो बात है वो लफ्जों में आ नहीं रही, छुपाना चाहते हैं जिसे वो नजरों से छुप ही नहीं रही। अजीब कश्मकश है इस खामोश रात में, दिल बेचैन है किसी अनकही सी बात में। कह दे तो शायद कुछ रिश्ते बदल जाएं, पर होती है कुछ रातें ऐसी भी जो दिल में उतर जाएं।

भीगी भीगी रात, बादलों का पहरा, तेरी मेरी धड़कन और चांद का चेहरा, बूंदों की सरगम, सांसों में खुमार, तेरी नजदीकियों में सिमटा संसार, लबों पे खामोशी, आंखों में बात, इश्क की खुशबू में लिपटी वो भीगी

0: आज के छाया गीत में बस इतना ही। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही वीको टर्मरिक क्रीम, मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: ये आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz ते। श्रोतियों हुण पेश ने मुख प्रादेशिक खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिंडां दीआं औरतां दे आर्थिक सशक्तिकरण ते जोर दिता। हरियाणा दे खेतीबाड़ी मंत्री श्याम सिंह राणा ने केंद्र अते राज सरकारां द्वारा एक विशेष पहलकदमी दे हिस्से वजों शाहबाद विच किसानां नूं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दीआं पॉलिसियां वंडियां। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारत अते स्वीडन विचकार नवीनता कारोबार सिख्या अते उद्योगिक सहयोग नूं मजबूत करन ते जोर दिता। हरियाणा दी राज पदरी सूचना तकनालोजी स्टीयरिंग कमेटी ने साइबर सुरक्षा प्रणालियां नूं आधुनिक बनाउण अते डिजिटल शासन बुनियादी ढांचे नूं होर सुरक्षित बनाउण लई लगभग 738 करोड़ रुपए दे दो वड्डे प्रोजैक्टां नूं मंजूरी दित्ती। हरियाणा सरकार ने नागरिकां नूं राष्ट्रीय राजधानी खेतर नूं प्रदूषण मुक्त बनाउण लई अपने पुराने वाहनां नूं स्क्रैप कराउण दी अपील कीती। भारतीय खेतीबाड़ी खोज परिषद के महानिदेशक डॉ ML जाट ने कहा है कि करनाल विच होने वाले नवोदित विज्ञान तकनालोजी और नवीनता सम्मेलन 2026 विच खेती तकनीक भोजन प्रणालियां और पोषण से विशेष फोकस रहेगा। हरियाणा के मुख चोण अधिकारी ने कहा है कि हरियाणा के सारे विधानसभा हल्कों विच एक विशेष मुहिम चलाई जाएगी ताजो वोटर सूची

0: ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿਚੋਲੀਆ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਜਾਨੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ 10,38,52,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਨ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
1: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
2: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
1: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
2: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
3: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
0: आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो हुण पेश है पंजाबी गीतां नाल सजिया प्रोग्राम सुरसांझ। ते अज प्रोग्राम विच तुहाडे नाल है तुहाडी रेडियो दोस्त रमन। सारे स्रोतियां दा प्रोग्राम विच स्वागत है। आओ प्रोग्राम दा आगाज़ करदे हां मलकीत सिंह दी आवाज़ विच इस गीत दे नाल।

0: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। GSAT-7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम

0: प्राप्त करने वालों के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है, उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने जाने और अनियमितताओं के आरोप को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SIR करने का निर्देश दिया है। इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के कनॉट प्लेस क्षेत्र में कल प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लागू की हैं। नई दिल्ली में आज आयोजित प्रेस वार्ता में DCP नेहा यादव ने प्रदर्शनकारियों और आम जनता से अपील की कि वे ऐसे किसी भी भीड़ में शामिल न हो जो धारा 163 के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया है कि प्रशासनिक कारणों से सेंट्रल पार्क अगले 2 दिनों तक बंद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों ने 140 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz ते। श्रोतियों 11:05 हो चुके ने ते हुन साडे केंद्र तो अज दी सभा दे प्रोग्राम दा प्रसारण इत्थे खत्म हुंदा है। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 5:55 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੈ ਹਿੰਦ।